0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 819 किलोहर्ट्ज पर, ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस,
2: रेडियो मॉरिशस।

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।
2: कड़ी मिलानी जी, सवेरे के 6 बज रहे।

0: पूनम श्रोताओं को भी नमस्कार। राज्यसभा में कल क्रिमिनल कोड अमेंडमेंट बिल पर बहसें चली और कल शाम इसे पारित किया गया। ये विधेयक हाल ही में पारित हुए डोमेस्टिक अब्यूज बिल के बाद कानून में संशोधन प्रस्तावित करता है। इसके अंतर्गत महिलाओं की हत्या और वैवाहिक बलात्कार के लिए सजा और सख्त किए जाने का प्रावधान है। इसके साथ अब कोई आरोपी अपने विवाहित होने या धार्मिक स्थिति को बचाव के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकेगा। जनवरी 2021 से 15 जुलाई 2026 के बीच पुलिस ने चाकू, तलवार या अन्य धारदार हथियारों से जुड़े 731 अपराधों की सूचना दर्ज की। राज्यसभा में कल प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान प्रधानमंत्री ने ये जानकारी दी। कमिश्नर ऑफ पुलिस की तरफ से उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों में इन घटनाओं में 697 लोग घायल हुए और 40 लोगों की मौत हुई। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान पर हमला अभी पूरा नहीं हुआ है। ये तनाव तब और बढ़ गया जब तेहरान ने गल्फ देशों पर हमले किए और उसके सहयोगी हूती गुट ने सऊदी अरब के बंदरगाहों की घेराबंदी करने की धमकी दी। ये तनाव अमेरिका के नए हमलों, सेना को हो रहे नुकसान और मीडिएटर्स के जरिए लगातार जारी कूटनीतिक बातचीत के बीच बढ़ा है। आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत, हमारे इलाके पर हल्की हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज सुबह आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। दिन के दौरान उत्तर पूर्व में बादल घिरा सकते हैं और रह रहकर हल्की बारिश हो सकती है। अन्य जगहों पर आसमान साफ रहेगा। रात के दौरान हल्के बादल घिरे रह सकते हैं। हवा दक्षिण की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाल रेखा के परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिणी समंदर में 2 मीटर तक की लहरें उठेंगी। तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा रहेगा। सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों पर न्यूनतम 19 से 21, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:44 पर सूर्योदय, शाम को 5:49 पर सूर्यास्त होगा।
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته یہ RM3 ہے پرویزہ کا ساتھ ہے اردو تشریحات بنام سبا الخیر لے کر आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल व करम और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आप तमाम सामीन खैरियत और आफियत से होंगे। रोशनियों, रहमतों और बरकतों से सजी इससे खूबसूरत नशरियात में आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। मज़े सामीन, ये वो लम्हात है जब दिल ज़िक्र इलाही से मुनव्वर होते हैं, रूह को सुकून मिलता है और ईमान को ताजगी नसीब होती है। तो आइए मज़े सामीन इससे रूह परवर महफिल का आगाज़ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बाबरकत कलाम से, जो सरापा हिदायत और सरापा नूर है। बग़ौर व बाअदब समात फरमाइए तिलावत कुरान पाक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करें और मुल्क में फसाद करने को दौड़ते फिरें, उनकी यही सजा है कि बुरी तरह कत्ल कर दिए जाएं या सूली चढ़ा दिए जाएं या उनके एक एक तरफ के हाथ और एक एक तरफ के पांव काट दिए जाएं या मुल्क से गायब कर दिए जाएं। ये तो दुनिया में उनकी रुसवाई है और आखिरत में उनके लिए बड़ा भारी अजाब तैयार है। हाँ, जिन लोगों ने इससे पेशतर कि तुम्हारे काबू आ जाएं तौबा कर ली, तो जान रखो कि अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है।

जो लोग काफिर हैं अगर उनके पास रूए जमीन का सब मालूमता हो और उसके साथ उसी कदर और भी हो ताकि कयामत के रोज अजाब से बचने का बदला दें तो उनसे कबूल नहीं किया जाएगा और उनको दर्द देने वाला अजाब होगा। वो चाहेंगे कि आग से निकल जाएं मगर उससे नहीं निकल सकेंगे और उनके लिए हमेशा का अजाब है।

और चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरत, उनका एक एक हाथ काट दो। ये उनके करतूतों की सजा और अल्लाह की तरफ से इबरत के तौर पर है, और अल्लाह जबरदस्त है, साहिब हिकमत है। फिर जो शख्स गुनाह के बाद तौबा कर ले और नेकुकार हो जाए तो अल्लाह उसको मुआफ कर देगा। कुछ शक नहीं कि अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। क्या तुमको मालूम नहीं कि आसमानों और जमीन में अल्लाह ही की सल्तनत है, जिसको चाहे अजाब करे और जिसे चाहे बख्श दे, और अल्लाह हर चीज पर पूरी तरह कादिर है।

कुफ्र में जल्दी करते हैं, कुछ तो उन लोगों में से वो हैं जो मुंह से कहते हैं कि हम मोमिन हैं लेकिन उनके दिल मोमिन नहीं हैं, और कुछ उनमें से जो यहूदी हैं उनकी वजह से गमनाक न होना। ये लोग झूठी बातें बनाने के लिए जासूसी करते फिरते हैं और उन दूसरे लोगों के लिए जासूस बने हैं जो अभी तुम्हारे पास नहीं आए, बातों को उनके मकामात में साबित होने के बाद दूर ले जाते हैं। लोगों से कहते हैं कि अगर तुमको यही हुक्म मिले तो इसे कबूल कर लेना और अगर ये ना मिले तो इससे बचना, और जिसको अल्लाह गुमराह करना चाहे तो उसके लिए तुम अल्लाह की तरफ से हिदायत का कुछ भी इख्तियार नहीं रखते। ये वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने पाक करना नहीं चाहा, उनके लिए दुनिया में जिल्लत है और आखिरत में बड़ा अजाब है।

ये झूठी बातें बनाने के लिए जासूसी करने वाले और रिश्वत का हराम माल खाने वाले हैं। अगर ये तुम्हारे पास कोई मुकदमा फैसल कराने को आए तो तुम इनमें फैसला कर देना या रूगर्दानी कर लेना, और अगर इनसे रूगर्दानी करोगे तो वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। और अगर फैसला करना चाहो तो इंसाफ का फैसला करना कि अल्लाह इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। और ये तुमसे अपने मुकदमात क्यों कर फैसल कराएंगे जबकि खुद इनके पास तौरात मौजूद है जिसमें अल्लाह का हुक्म लिखा हुआ है, ये इसे जानते हैं, फिर उसके बाद इससे फिर जाते हैं, और ये लोग ईमान ही नहीं रखते हैं।

बेशक हमने तौरात नाजिल फरमाई जिसमें हिदायत और रोशनी है, उसी के मुताबिक अंबिया जो अल्लाह के फरमाबरदार थे यहूदियों को हुक्म देते रहे हैं और मुशायख और उलमा भी, क्योंकि वो अल्लाह की किताब के निगहबान मुकर्रर किए गए थे और उस पर गवाह थे, यानी हुक्म इलाही का यकीन रखते थे। सो तुम लोगों से मत डरना और मुझी से डरते रहना और मेरी आयतों के बदले थोड़ी सी कीमत न लेना, और जो अल्लाह के नाजिल फरमाए हुए अहकाम के मुताबिक हुक्म न दे तो ऐसे ही लोग काफिर हैं।

और हमने उन लोगों के लिए तौरात में यह हुक्म लिख दिया था कि जान के बदले जान और आंख के बदले आंख और नाक के बदले नाक और कान के बदले कान और दांत के बदले दांत और सब जख्मों का इसी तरह बदला है। अब जो शख्स बदला मुआफ कर दे वो उसके लिए कफारा होगा। और जो अल्लाह के नाजिल फरमाए हुए अहकाम के मुताबिक

और उन पैगंबरों के बाद उन्हीं के कदमों पर हमने ईसा इब्न मरियम को भेजा जो अपने से पहले की किताब तौरात की तस्दीक करते थे और उनको इंजील इनायत की जिसमें हिदायत और नूर है, और तौरात की जो इससे पहली किताब है तस्दीक करती है और परहेजगारों को राह बताती और नसीहत करती है, और अहले इंजील को चाहिए कि जो अहकाम अल्लाह ने उसमें नाजिल फरमाए हैं उसके मुताबिक हुक्म दिया करें, और जो अल्लाह के नाजिल किए हुए अहकाम के मुताबिक हुक्म न देगा तो ऐसे लोग नाफरमान हैं।

पैगंबर, हमने तुम पर सच्ची किताब नाजिल की है जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करती है और उन सब पर निगहबान है, तो जो हुक्म अल्लाह ने नाजिल फरमाया है उसके मुताबिक उनके दरमियान फैसला करना, और हक जो तुम्हारे पास आ चुका है उसको छोड़कर उनकी ख्वाहिशों की पैरवी न करना। हमने तुम में से हर एक मिल्लत के लिए एक दस्तूर और एक तरीका मुकर्रर किया है, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही शरीयत पर कर देता, मगर जो हुक्म उसने तुमको दिए हैं उनमें वो तुम्हारी आजमाइश करना चाहता है। सो नेक कामों में आगे बढ़ो, तुम सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है, फिर जिन बातों में तुमको इख्तिलाफ था वो तुमको बता देगा।

हम फिर ताकीद करते हैं कि जो हुक्म अल्लाह ने नाजिल फरमाया है उसी के मुताबिक उनमें फैसला करना और उनकी ख्वाहिशों की पैरवी न करना और उनसे मोहतात रहना कि किसी हुक्म से जो अल्लाह ने तुम पर नाजिल फरमाया है ये कहीं तुमको बहका ना दें। अब अगर ये न माने तो जान लो कि अल्लाह चाहता है कि उनके बाज़ गुनाहों के सबब उन पर मुसीबत नाजिल करे और अक्सर लोग तो नाफरमान हैं ही। बस क्या

0: ये जमाने जाहिलियत के से फैसले के ख्वाहिशमंद हैं, और जो लोग यकीन रखते हैं उनके लिए अल्लाह से अच्छा फैसला किसका होगा।
1: सदकल्लाहुल अज़ीम। सामईन मोहतरम, अभी अभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो पाकीज़ा कलाम हमारे कानों से टकराया जिसकी हर आयत दिलों को ज़िंदगी, रूहों को सुकून और फ़िक्र को रोशनी अता करती है। जब क़ुरान बोलता है तो दुनिया की हर आवाज़ खामोश हो जाती है, क्योंकि ये वो पैगाम है जो बंदे को उसके अल्लाह से जोड़ देता है। क़ुरान के मुबारक आयात के बाद आइए अपने दिलों को मज़ीद अकीदत और मोहब्बत से लबरेज़ करते हुए इसी रब करीम की बारगाह में हम्द के नजराने पेश करते हैं। उस ज़ात की हम्द जिसने हमें वजूद बख्शा, ईमान अता फरमाया और क़ुरान जैसी लाजवाल नेमत से सरफराज किया। तो आइए आदत, मोहब्बत और शुक्र के जज्बात के साथ सुनते हैं एक हम्द बारे ताला।

0: तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमी बनाई, कैसा आसमां बनाया, सूरज बनाया जिसने रोशन किया जमाना, चांद और सितारों से हर शब को जगमगाया। ये और एम्फ्री है परवीज़ा के साथ है उर्दू नशरियात सबल खैर में दिन के 7 बजे तक। बिलयकीन मज़ीसामीन इस हम्द सना के हर लफ्ज से बंदगी की खुशबू आती है। जब बंदा अपने खालिक की अजमत के सामने झुकता है तो उसके दिल में सब्र, शुक्र और वफा के चिराग रोशन हो जाते हैं और यही वो सफ़ात हैं जो हमें करबला के मैदान तक ले जाती हैं, जहां बंदगी ने वफा का रूप धारा, जहां सब्र ने इस्तिकामत का लिबास पहना और जहां रज़ा इलाही के लिए हर आजमाइश को खुंदा पेशानी से कबूल किया गया। तो आइए मज़ीद सामीन पेश खिदमत हैं वह अज़ीम दास्तान सब्र वफा जो 14 सदियों से दिलों को ईमान की हरारत अता कर रही है। समाअत फरमाइए।
1: अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद यजीद, उबैदुल्ला बिन जियाद और अमर बिन साद के दिमागों में ये चल रहा था कि अब हम बड़ी बड़ी सल्तनतों के मालिक होंगे, आलम इस्लाम पर हमारी हुकूमत होगी, हर जगह हमारा हुक्म चलेगा। और उनकी इसी हुकूमत की लालच ने इन्हें तारीख के बदतरीन जुर्म पर उभारा था। इनके माइंड में यह था कि सिर्फ इमाम अली मकाम की शख्सियत ही इनके गोल को अचीव करने में इनके लिए सबसे बड़ी रुकावट थी। अब ये बैरियर हट चुका है तो अब जमीन पर इनकी हुकूमत होगी और लंबे पीरियड्स तक ये सुकून से हुकूमत करते रहेंगे। मगर इन्हें मालूम नहीं था कि शुहदाए करबला की कुर्बानियां जरूर रंग लाएंगी और इनके जुर्म की इमारतों पर बनाई गई सल्तनतों के पुर्जे उड़ जाएंगे और एक एक शख्स जो कत्ले इमाम में शरीक हुआ वो तरह तरह की तकलीफ में मुबतला होकर हलाक होगा। ये नहीं जानते थे कि इन पर भी कुछ लोग मुसल्लत किए जाएंगे जो इनके जिस्मों को अपने घोड़े से रौंदेंगे, इनकी जमातों की कसरत इनके किसी काम ना आएगी, कैसी कैसी सजाएं इन्हें दी जाएंगी, सूलियों पर चढ़ाया जाएगा, इनकी लाशों को भी लोग नापसंद करेंगे, दुनिया में हर शख्स इन पर मलामत करेगा, लानत भेजेगा, इनकी हलाकत

दुनिया के लिए इबरत का सामान बनेगी और इन्हें अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। यजीद के इबरतनाक अंजाम के बारे में तो हमने सुन ही लिया था कि वो पेट के दर्द और इंटेस्टाइन के जख्मों की वजह से शदीद तकलीफ और अजियत की हालत में हलाक हुआ था और मरने के बाद इसकी बॉडी में इंतहाई गलीज किस्म की बदबू पड़ गई थी। तारीख की किताबों से ये भी पता चलता है कि बनू अब्बास के जमाने में जब यजीद की कब्र खोदी गई तो उसकी हड्डियां जलकर ब्लैक हो गई थी। हम उन दीगर अफराद के अंजाम के बारे में सुनेंगे जो कत्ल इमाम में शरीक हुए। चुनाचे यजीदियों की बाकायदा हलाकतों का सिलसिला सन 65 हिजरी में अब्दुल मलिक के दौर से हुआ, जब कूफा में ये ऐलान किया गया कि जिन बदबख्तों ने नवासे रसूल इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला और उनकी औलाद और दीगर अजीजो अकारिब और रुफका व अहबाब पर करबला में जुल्म किए हैं और उनको बेदर्दी के साथ शहीद किया है, अब वो उसकी सजा के लिए तैयार हो जाएं। चुनाचे कूफा में ये अनाउंसमेंट कर दी गई कि अहले बैत के कातिलों पर पनाहगाह का दरवाजा बंद कर दिया गया है। जो भी आले रसूल के दुश्मनों को अपने घर में पना देगा उसे दहकती हुई आग में डाल दिया जाएगा। रात भर हुकूमती जासूस और सिपाही चुन चुन कर कातिलों को गिरफ्तार करते रहे। सुबह के टाइम पर कातिलों का पहला दस्ता हाकिम कूफा के सामने पेश किया गया। इन यजीदियों ने अपने जुर्म की जस्टिफिकेशन देते हुए कहा कि हम तो इब्ने साद और इब्ने जियाद के हुक्म की वजह से मजबूर थे। इन पर चीखते हुए जवाब दिया गया और हम बेगुनाह शहजादों के खून ना हक का इंतकाम लेने के लिए खुदा और रसूल के आगे मजबूर हैं। ये कहते हुए जल्लाद को हुक्म दिया गया कि इन्हें खूब तड़पा तड़पा कर कत्ल करो ताकि इन्हें औलाद बतूल की तकलीफों का एहसास हो सके। इसके बाद इसी तरह शाम तक कातिलों के गिरफ्तार दस्ते पेश होते रहे और कूफा की जमीन इन नापाक खून से सैराब होती रही। इब्ने ज़ियाद के बारे में मालूम हुआ कि वो मुख्तसर सा लश्कर लेकर जंगल की तरफ भाग गया है। ये खबर मिलते ही फौरन इब्राहिम बिन मालिक अश्तर ने एक लश्कर के साथ उसका मुकाबला करते हुए रवाना हुआ। मौसल के करीब इब्राहिम के लश्कर ने इसे पा लिया। दोनों तरफ मुकाबला हुआ और बिलाखिर इब्ने ज़ियाद को शिकस्त हुई और वो जख्मी होकर मैदान में गिर पड़ा। इब्राहिम नाराय तकबीर बुलंद करता हुआ उसके सीने पर चढ़ गया और उससे कहा, आज तूने देख लिया कि खुदा जालिमों से किस तरह इंतकाम लेता है। ये कहकर उसने अपना खंजर निकाला और उसके सीने से आर पार कर दिया। तड़प तड़प कर जब उसकी लाश ठंडी हो गई तो उसका सर काट कर हाकिम के सामने पेश किया गया। दारुल अमारात कूफा को आरास्ता यानी सजाया गया और अहले कूफा को जमा करके इब्ने ज़ियाद का सर उसी जगह रखवाया गया जिस जगह उस जालिम ने इमाम हुसैन इमाम अली मकाम का सर मुबारक रखा था। ये मकाम इबरत है कि कूफे के उस दारुल खिलाफा में जहां कल शहजादा रसूल का सर रखा गया था और इब्ने ज़ियाद होंठों पर छड़ी मार कर गुस्ताखी कर रहा था, आज उसी जगह इब्ने ज़ियाद का सर रखा हुआ था और लोग उसके चेहरे पर लानत बरसा रहे थे। कूफा वालों से कहा गया, ए अहले कूफा, देख लो, इमाम हुसैन के खून ना हक ने इब्ने ज़ियाद को ना छोड़ा। आज इस नामुराद का सर इस जिल्लत और रुसवाई के साथ यहाँ रखा हुआ है। 6 साल हुए हैं, वही तारीख है, वही जगह है। खुदावंदे आलम ने इस मगरूर फिरौन को ऐसी जिल्लत और रुसवाई के साथ हलाक किया कि उसी कूफा और उसी दारुल अमारात में इस बेदीन के कत्ल पर जश्न मनाया जा रहा है। हदीस शरीफ में आता है, तिर्मिजी की हदीस है कि जिस वक्त इब्ने ज़ियाद और उसके सरदारों के सर रखे गए तो कहीं से एक बहुत बड़ा सांप जाहिर हुआ जिसकी हैबत से वहां मौजूद तमाम लोग डर गए। वो सांप तमाम सरों पर फिरा। जब इब्ने ज़ियाद के सर के पास आया तो उसके नथने में घुस गया और फिर थोड़ी देर ठहर कर उसके मुंह से निकला। इस तरह 3 बार उस सांप ने सर के अंदर दाखिल हुआ और फिर गायब हो गया। वाकई करबला के बड़े जालिमों में जिस शख्स का अगला नाम आता है वो अमर बिन साद है। ये वही बदबख्त है जिसकी 10 उंगलियां आले अली के खून में डूबी हुई हैं, जिसकी कमांड में करबला का खूनी वाकिया पेश आया और खानदान रिसालत के अफराद खून में आलूदा हुए। मुल्क के रे की लालच में इस जालिम ने बीबी बतूल का हरा भरा चमन वीरान कर दिया। जब यजीदी कातिलों का कत्ले आम शुरू हुआ तो इब्ने साद अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा, लेकिन जाबाज सिपाहियों ने अपनी सलाहियतों से इसको पकड़ लिया। जिस वक्त इब्ने साद सामने आया तो उससे कहा गया, ओ दुश्मन रसूल, बता तुझे क्या सजा दी जाए जिससे दुनिया इस्लाम के कलेजों की वो आग ठंडी हो जाए जो तेरे नापाक हाथों ने करबला में लगाई है। इब्ने साद ने जवाब दिया, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने तो सिर्फ हुक्म को पूरा किया था। उसे गुस्से से जवाब दिया गया, ए दुश्मन इस्लाम, सच बता, यजीद अगर तेरी औलाद के खून का हुक्म देता तो क्या उसको मानता? इसी दौरान एक खबर मिली कि इब्ने साद का बेटा हफ्स जो करबला में

इमाम अली मकाम के खिलाफ अपने बाप की मदद कर रहा था, वो भी गिरफ्तार करके लाया गया है। जब सामने आया तो जल्लाद से कहा गया कि इब्ने साद की आंखों के सामने इसके बेटे का सर तन से जुदा कर दो ताकि इसे मालूम हो जाए कि हजरत अली अकबर और हजरत अली असगर की तड़पती लाश देखकर इमाम अली मकाम के दिल पर क्या गुजरी होगी। जल्लाद ने आगे बढ़कर जो ही हफ्स की गर्दन पर तलवार मारी तो इब्ने साद चीख पड़ा। अभी वो अपना सर पीट ही रहा था कि इशारा पाते ही जल्लाद ने इब्ने साद की गर्दन भी उड़ा दी। इसी तरह ये दुनिया एक और जालिम जाबिर शख्स के वजूद से पाक और साफ हो गई। इब्ने साद के कत्ल से फारिग होकर शिमर को सामने खड़ा किया गया। ये वही खबीस शख्स है जिसने जिगर गोशाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पर तलवार चलाई थी और फातिमा के चांद को खाक और खून में डुबोया था। ये खौफ के मारे दहशत से थर थर कांपने लगा था। इसे भी डांट कर कहा गया, जालिम तुझे जरा भी गैरत नहीं आई कि तूने अपने हाथों से काबे की दीवार ढा दी, ऊंट और बकरी की तरह फातिमा के लाल को ज़िबा किया। अफसोस, हरम का चिराग तूने फूंकों से बुझा दिया। तेरा जुल्म इतना बड़ा है कि अगर तेरा जिंदा जिस्म जलाकर उसकी राख हवाओं में उड़ा दी जाए तब भी हुसैन के खून का बदला नहीं हो सकेगा। फिर जैसे ही तलवार उठाई गई शिमर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं प्यास से तड़प रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक घूंट पानी पिला दिया जाए। जवाब दिया गया, शिमर वो वक्त याद कर जब तेरी फौज ने फुरात की लहरों पर 22,000 तलवारों का पहरा बिठा दिया था और अहले बैत के बच्चे और पर्दादार खवातीन 3 दिनों तक पानी के एक एक कतरे को तरस गई थी। तुझे पानी नहीं मिलेगा, जहन्नम का तकलीफ दे पानी तेरे इंतजार में है, अब वहीं जाके पानी पीना। शिमर कुछ कहना ही चाहता था कि जल्लाद ने आगे बढ़कर उसका सर तन से जुदा कर दिया। शिमर की लाश के बारे में आता है कि इसकी लाश को घोड़ों की टापों से रून दिया गया और कुत्तों के लिए फेंक दिया गया। करबला के वाकये में जिन बड़े बदबख्तों का नाम आता है उसमें एक खुली बिन यजीद था। ये वो जालिम और बेरहम इंसान है जिसने सिबते रसूल के कलेजे में बुरछा मारा था और सर को नेजे पे चढ़ाकर खुशी में नाचता था। इसे जब लाया गया तो अपनी मौत के डर से ये खौफ के मारे कांपने लगा। जल्लाद ने इसके दोनों हाथ काट डाले, फिर दोनों पांव काटने का हुक्म दिया। तकलीफ की शिद्दत से वो जमीन पर उछलने लगा। उसे कहा गया, जब्त से काम ले, तेरा जुर्म तो इतना संगीन है कि तेरे कत्ल के बाद भी तेरी लगाई हुई आग मुसलमानों के सीनों में भड़कती रहेगी। ये सजा तेरे आमाल के बदले काफी नहीं है, तू जिस दर्दनाक अजाब को डिजर्व करता है उसका सिलसिला तेरी आखिरी हिचकियों के बाद शुरू होगा, यानी तेरे मरने के बाद शुरू होगा। हकीम बिन तुफैल अत्ताई वो बदनसीब इंसान था जिसने करबला में हजरत अब्बास अलमदार को शहीद करके उनके लिबास और असलहे पर कब्जा कर लिया था और आपके मशकीजे पर तीरों की बारिश करके उसे शहीद कर दिया था, जिससे तमाम पानी गिर गया था। अब्दुल्ला नामी सिपाही चंद सिपाहियों के साथ उसे गिरफ्तार करने गया। उसने हकीम को पकड़ा और दरबार की तरफ ले जाने के लिए चल पड़ा। हकीम के घर वालों को जब पता चला कि हकीम पकड़ा गया है तो उन्होंने किसी जरिए से सिफारिश भिजवाई कि हकीम कत्ले हुसैन में मुलव्विस नहीं था, लिहाजा उसे मारा ना जाए। हकीम कूफा कन्विंस हो गया और उसने फैसला किया कि सिपाहियों के हकीम को लाने के बाद वो इसे रिहा कर देगा। उधर सिपाहियों को रास्ते में यह बात मालूम हुई कि हकीम के लिए सिफारिश की गई है और अब वो आज़ाद कर दिया जाएगा, लिहाजा उन्होंने अपने हेड अब्दुल्ला से कहा कि ये बदबख्त सिफारिश की वजह से बच जाएगा, हालांकि हम सब इसके जुर्म से बखूबी वाकिफ हैं, लिहाजा बेहतर यही है कि हम इसे रास्ते में ही कत्ल कर दें। अब्दुल्ला को बात समझ आ गई, लिहाजा उसने हकीम को कत्ल करने की इजाजत दे दी। सिपाही हकीम को एक घर में ले गए, उसे एक जगह खड़ा किया, उसके हाथ बांध दिए और कहा, तूने हजरत अब्बास बिन अली को शहीद किया था और इमाम अली मकाम को तीर मारा था, हम भी तुझे तीरों का निशाना बनाते हैं। ये कहकर उन्होंने उस पर पे दर पे तीरों की बरसात करके उसे हलाक कर दिया। बदबख्त यजीदियों में से एक शख्स था जिसका नाम था उमूद बिन सबीह। ये वाकये करबला के बाद लोगों से कहा करता था कि मैंने हुसैन के साथियों को तीर से जख्मी किया है मगर किसी को कत्ल नहीं किया है। तो जिन दिनों यजीदियों को चुन चुन कर मारा जा रहा था, एक दिन सब लोगों के सो जाने के बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए सिपाहियों को रवाना किया गया। जब सिपाही इब्ने सबी के मकान पर पहुंचे तो वो अपनी छत पर बेखबर सुकून की नींद सो रहा था। सिपाहियों ने सोते हुए ही उसकी तलवार जो उसके सिरहाने रखी हुई थी उसे उससे दूर करके उसे गिरफ्तार कर ली। पूरी रात उसे कैद खाने में रखा गया और सुबह के वक्त जब बहुत से लोग दरबार में जमा हो गए तो इब्ने सबी को हाकिम कूफा के सामने पेश किया गया।
इब्ने सभी दरबार में सबके सामने बड़ाइयां और

डेंगिया मारने लगा कि ए घरो कफ्फार और फुजार, अगर इस वक्त मेरे हाथ में तलवार होती तो तुम जान जाते कि मैं मुजदिल और कमजोर नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हारे अलावा किसी और के हाथ कत्ल किया जाता तो ये मेरे लिए खुशी की बात होती, इसलिए कि मैं तुमको बदतरीन मखलूक समझता हूँ। ए काश इस वक्त मेरे हाथ में तलवार होती, मैं थोड़ी देर तुम्हारा मुकाबला करता। ये जुमला कहने के बाद इब्ने सबी ने हाकिम कूफा के एक मोतमद सिपाही अब्दुल्ला की आंख पर एक घूंसा मारा, जिस पर अब्दुल्ला हंसा और उसने इब्ने सबी का हाथ पकड़ा और कहा, ये शख्स कहता है कि मैंने अहले बैत रिसालत को तीरों से जख्मी किया है, तो अब इसके बारे में हमें क्या हुक्म देते हैं? हुक्म दिया गया कि नेजा लाओ और उसे नेजों से मारो। चुनाचे उसी वक्त उस पर नेजे मारे गए जब तक इसके जिस्म से जान नहीं निकल गई। एक शख्स जिसका नाम जैद बिन रकात था, उस बदबख्त ने हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील को तीर मारा था जो इनकी पेशानी में लगा था। उन्होंने पेशानी को बचाने के लिए हाथ आगे रखा था, मगर तीर इतना तेज था कि वो हाथ से पेशानी के साथ पेवस्त हो गया, और जब कोशिश के बावजूद उनका हाथ पेशानी से जुदा नहीं हो पाया तो उन्होंने बारगाह इलाही में दुआ किया, अल्लाह या रब्बुल आलमीन, हमारे दुश्मनों ने जैसे हमें जलील किया है तू भी इनको ऐसा ही जलील कर, और जिस तरह इन्होंने हमें कत्ल किया है तू भी इनको कत्ल कर। और जब कोशिश के बावजूद उनका हाथ पेशानी से जुदा नहीं हो पाया तो उन्होंने बारगाह इलाही में दुआ की, या रब्बुल आलमीन, हमारे दुश्मनों ने जैसे हमें जलील किया है तू भी इनको ऐसे ही जलील कर, और जिस तरह इन्होंने हमें कत्ल किया है तू भी इनको कत्ल कर। फिर जैद ने उनके पेट में एक तीर मारा जिससे वो शहीद हो गए। इब्ने रकात कहा करता था कि उनके पेट का तीर तो मैंने आसानी से निकाल लिया, मगर जो तीर पेशानी पर लगा कोशिश के बावजूद नहीं निकल सका। हाकिम कूफा ने अब्दुल्ला को इसकी गिरफ्तारी के लिए रवाना किया। अब्दुल्ला सिपाहियों के साथ पहुंचकर उस पर टूट पड़ा। वो भी एक बड़ा बहादुर आदमी था। वो अपनी तलवार से उनका मुकाबला करने लगा। अब्दुल्ला ने जब उसकी तलवारबाजी देखी तो अपने सिपाहियों से कहा कि इसे नेजे और तलवार से हलाक ना करो बल्कि तीर और पत्थर मारो। ये अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील की दुआ की कबूलियत थी कि ये अल्लाह जिस तरह इन्होंने हमें कत्ल किया है तू भी इन्हें कत्ल कर। इसके बाद सिपाहियों ने पे दर पे इस पर तीर और पत्थर फेंके जिसकी ताब ना लाते हुए वो जमीन पर गिर गया। अब्दुल्ला ने अपने सिपाहियों से कहा कि देखो अगर इस बदबख्त की जान बाकी है तो इसे बाहर लाओ। जब इसे बाहर लाया गया थोड़ी सी जान इसमें बाकी थी, चुनाचे अब्दुल्ला ने इसे अजियतनाक तरीके से मारकर इसे इसके अंजाम तक पहुंचा दिया। इस बदबख्त यजीदियों में एक और शख्स भी था जिसका नाम हरमला बिन काहल था। ये जालिम और सिफाक यजीदी है जिसने शीर ख्वार हजरत अली असगर रदी अल्लाह तआला अन्हु के फूल जैसे नरम और नाजुक हल्क पर तीर चलाया था। बागे रिसालत का वो प्यारा सा खुशबूदार फूल एक दम में मुरझा गया था। जब इस बदबख्त को सामने लाया गया तो जल्लाद को हुक्म दिया गया कि हरमला के गले पर तीरों की बारिश की जाए और नजा के वक्त आखिरी तीर गले के आर पार होना चाहिए। चुनाचे ऐसा ही हुआ और इसी तरह तड़प तड़प कर हरमला अपने अंजाम को पहुंच गया। इमाम अली मकाम की शहादत के बाद जिबार बिन यजीद आपका इमामा शरीफ मजाक उड़ाने के इरादे से अपने नापाक सर पर रख लिया था उसने। उस जुर्म की वजह से वो कुछ दिनों बाद पागल हो गया और फौलाद की जंजीरों से टकरा टकरा कर जिल्लत की मौत मरा। एक शख्स अब्दुर्रहमान बिन हुसैन नामी गुस्ताख और बेअदब था जिसने खैमा मुबारक से इमाम अली मकाम का लिबास मुबारक लूट कर पहना था। उस गुस्ताखी से उसे ये सजा मिली कि वो बर्स की बीमारी में मुबतला हो गया जिसकी वजह से कोई उसके करीब नहीं जाता था, कुत्तों की तरह उसे दाना दिया जाता था। मरते वक्त उसका चेहरा मस्क हो गया था। यजीदी फौज का एक सिपाही अस्वद बिन हंजला ने इमाम अली मकाम की तलवार अपने कब्जे में कर ली थी। इस बेअदबी की सजा उसे ये मिली थी कि वो जिजाम की बीमारी में मुबतला हो गया था। सारा बदन उसका फूट फूट कर बहने लगा था। हजरत अबू शेख फरमाते हैं कि एक मजलिस में लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल में जिस किसी ने भी किसी तरह कोई मदद की है वो मरने से पहले किसी न किसी अजाब में ज़रूर मुबतला हुआ है। उसी मजलिस में एक बूढ़ा बैठा हुआ था, उसने कहा मैंने भी मदद की थी मगर मैं किसी अजाब में मुबतला नहीं हुआ। इतने में वो चराग दुरुस्त करने के लिए उठा तो उस चराग की आग ने उस बूढ़े को पकड़ लिया जिससे उसका पूरा बदन जलने लगा। वो आग आग चिल्लाता हुआ दरियाए फुरात में कूद पड़ा मगर वो आग नहीं बुझी और इसी तरह जलते हुए सिसकते हुए वो भयानक मौत मर गया। इसी तरह के और भी वाकियात किताबों में मिलते हैं। एक वाकया ये बयान हुआ है कि एक बूढ़ा शख्स इमाम अली मकाम के कत्ल में शरीक हुआ तो वो अंधा हो गया। उससे अंधेपन का सबब

0: पूछा गया तो उसने बताया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि आप आस्तीन मुबारक चढ़ाते हुए और हाथ शरीफ में नंगी तलवार लिए खड़े हैं। आपके सामने एक चमड़ा बिछा हुआ है और 10 कातिलाने इमाम हुसैन ज़िबा किए हुए पड़े हैं। जब आपकी निगाह मुझ पर पड़ी तो आपने मुझे बहुत मलामत की और एक सिलाई खून में डिबो कर मेरी आंखों में फेर दी। उसी वक्त से मैं अंधा हो गया। हजरत अल्लामा इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह तहरीर करते हैं कि यजीद के लश्कर का एक सिपाही जिसने हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक को अपने घोड़े की गर्दन में लटकाया था, कुछ दिनों बाद उसका चेहरा काला हो गया था। इसी तरह रिवायत है कि एक बूढ़े ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि आपके सामने एक ट्रे रखी हुई है जो खून से भरी हुई है और लोग आपके सामने पेश किए जा रहे हैं और आप इस खून को उनकी आंखों में लगा रहे हैं, यहाँ तक कि मैं भी उनके सामने हाजिर किया गया। तो मैंने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो कत्ले हुसैन के वक्त मौजूद नहीं था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू इसकी तमन्ना रखता था कि हुसैन कत्ल हो। फिर आपने मेरी तरफ अपनी उंगली का इशारा किया तो मैं अंधा हो गया। यहाँ तो हम उन जालिमों के हवाले से सुन रहे हैं जिनका ताल्लुक वाकई करबला से है, लेकिन इसके अलावा भी जो लोग प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के लिए अजियत का सबब बनते हैं उनका भी बहुत बुरा अंजाम होता है। अल्लामा बारजी हजरत मंसूर से रिवायत करते हैं कि उन्होंने मुल्क शाम में एक ऐसे शख्स को देखा जिसका मुंह सुअर यानी पिग जैसा था। उन्होंने उससे उसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि वो रोजाना हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु और उनकी औलाद पर 1000 मरतबा और जुम्मे के दिन 4000 मरतबा लानत भेजा करता था माजल्ला। एक रात उसने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और एक लंबा ख्वाब उसने बताया जिसमें एक बात यह भी थी कि हजरत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी लानत भेजने की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शिकायत की तो आपने उस पर लानत फरमाई और उसके मुंह पर थूक दिया तो उसका मुंह सुअर जैसा हो गया और लोगों के लिए एक इबरत का निशान बन गया। मैदान करबला में मौजूद एक यजीदी के बारे में तारीख की किताबों में ये भी आया है कि उसके पेट की तरफ एक ऐसी सख्त गर्मी पैदा हुई कि गोया आग लगी हुई है और पीठ की तरफ बैक साइड पर ऐसी सर्दी कि अल्लाह की पनाह। इस कंडीशन में उसके पेट पर पानी छिड़कते, बर्फ रखते और किसी भी तरह उसे ठंडा रखने की कोशिश करते मगर ठंडक पैदा नहीं होती और पीठ की तरफ आग जलाकर गर्मी पहुंचाने की कोशिश करते मगर उससे भी कुछ फायदा ना होता और वो हर वक्त प्यास प्यास चिल्लाता रहता तो उसके लिए सत्तू पानी और दूध लाया जाता लेकिन 5 मटके भी उसको पिलाए जाते तो भी पी जाता और इसके बावजूद प्यास प्यास करके चिल्लाता यानी उसकी प्यास नहीं बुझ रही थी। इसी तरह वो मुस्तकिल अजियत में रहा जब तक पीते पीते उसका पेट फट नहीं गया। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि शहादत हुसैन के बाद कूफा में 1 साल चीचक की एक ऐसी बीमारी फैली कि जो लोग इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने के लिए गए थे उनकी 1500 औलाद चीचक से अंधी हो गई। आज हमने जाना कि जिसने इमाम हुसैन की शान में बेअदबी गुस्ताखी की सब अपनी सजा को पहुंचे। मरते वक्त किसी का मुंह सुअर की तरह हो गया, कोई पागल कुत्ते की नमानिंद भोंकता फिरता। बहरहाल वाकये करबला के बाद खुदा ने अपनी शान एक कहारी के जो नमूने दिखाए इन्हें डिटेल के साथ बयान करने के लिए एक लंबा वक्त दरकार है। आपसे नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: शामिल महतरम, गुज़िश्ता 2 हफ्तों से आप मुसलसल करबला के बाद के ईमान अफरोज और दिलसोज वाकयात पर मुश्तमिल इस खुसूसी सिलसिले बयान को समाप्त फरमा रहे हैं और आज इसकी तीसरी किस्त भी अपने इख्तिताम को पहुंची। मज़ीसामीन, हर किस्त ने हमें ये एहसास दिलाया कि करबला का पैगाम सिर्फ एक तारीखी वाकयात नहीं बल्कि सब्र, इस्तेकामत, वफादारी, हक गोई और रज़ा इलाही की एक जिंदा तफसीर हैं जो हर दौर के इंसान को अपने किरदार का मुहासिबा करने की दावतें देती हैं। इंशाअल्लाह ताला आइंदा हफ्ते हम इससे बयान का इख्तितामी हिस्सा आपकी खिदमत में पेश करेंगे जहां अजीम दास्तान के आखिरी मराहिल और उसके अबदी पैगाम पर रोशनी डाली जाएगी।

सामईन कराम, जब बंदा अपने अल्लाह की किबरियाई रहमत और कुदरत का एतराफ़ करता है तो दिलों में खुशू पैदा होता है, और यही खुशू हमें करबला के उस अजीम पैगाम को समझने के काबिल बनाता है कि अल्लाह की रज़ा के लिए हर कुर्बानी छोटी है। मज़ीद सामीन, उस काफिलाए वफा ने बंदगी इलाही को ऐसी मिसाल कायम की जो क़यामत तक इंसानियत के लिए चिराग़ राह रहेगी। या अल्लाह, हम सब की ज़िंदगियों को अपने फ़ज़ल व करम, रहमत और बरकतों से मालामाल फरमा। हमारे दिलों को ईमान की रोशनी, सब्र की कुव्वत और ज़िक्र इलाही की मिठास अता फरमा। हमारे घरों में सुकून, मोहब्बत, इत्तिफाक और आफियत कायम रख, और हर आने वाले दिन हमारे लिए खैर, आसानी और कामयाबी का पैगाम।

बना। या अल्लाह जो बीमार है उन्हें कामिल शिफा अता फरमा। या अल्लाह हमारे तमाम मरहूमीन की कामिल मग़फ़िरत फरमा। उनकी कब्रों को जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा बना दे। उन पर अपनी बेपाया रहमतों का नुज़ूल फरमा और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में अपने मुकर्रब बंदों के साथ आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह उनके लवाहिकीन अहले खाना को सब्र जमील अजर अजीम और अपनी खास रहमत और तसल्ली अता फरमा। आमीन। हमें भी अपनी दुआओं में शामिल करें। तकनीकी मदद अंजू की रही है, मशकूर और ममनून है हम। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक परवीज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

0: ஆர்ஜே சுந்தரம்
1: Your request.

0: 94.96 98.2 आप सुन रहे हैं और M3
1: 94.96 98.2 तमें सांभळी रह्या छो RM3 रेडियो
2: Time check, it's 10 a.m.
3: दर रोज 10 થી 11 आवो अमारी साथे
4: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
5: RM3 Manoranjan Radio.
3: आवो अमारी साथे

You're listening to RM3 Radio Manoranjan. आवो अमारी साथे श्रोता मित्रों, ईश्वर नी दीधेली देन छे संबंधो, बस निभावानी रीतो मां थोड़ो थोड़ो फेर बनी जाय छे। कोई प्रेम थी निभावे छे तो कोई स्वार्थ थी। स्वार्थ पूरो, संबंध पूरो। સોનુ નિગમે ગાયેલું આ ગીત બહેરૂપીઓ ફિલ્મમાંથી લેવામાં આવેલું।

लांबो डगलो मुछो बांकड़ी सिरे पाघड़ी राती अरे लांबो डगलो मुछो बांकड़ी सिरे पाघड़ी राती अरे बोल बोल तो थोड़ी थोड़ी खेल सभी लो गुजराती अरे तन छोटू पर मन मोटू अरे तन छोटू पर मन मोटू छे खमीर बनती जाती अरे भले लाग तो घोड़ो तू खेल सभी लो गुजराती भाई खेल सभी लो गुजराती।

नमस्कार प्रिय श्रोताओं, एमबीसी रेडियो पर आप सबका अभिवादन है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन के साथ और एम फ्री रेडियो, और इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति में शक्ति कार्यक्रम। आज बुधवार 22 जुलाई 2026 और इस कार्यक्रम में साथ देने के लिए मैं उषा कौर यहाँ पर। जी हाँ, ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 11:30 बजे तक। और भक्ति में शक्ति श्रोताओं, भक्ति केवल पूजा या वंदन का नाम नहीं है, भक्ति वे भाव है जहाँ मन पूर्ण रूप से परमात्मा में समा जाता है। जब हृदय निर्मल हो, विचार पवित्र हो और हर स्वस्थ में प्रभु का स्मरण हो, तब जीवन धन्य बन जाता है। लेते हैं गणेश जी का नाम और इस कार्यक्रम का

तो जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन जो भक्ति का मार्ग अपनाता है वह कभी अकेला नहीं होता। भगवान हर कदम पर उसका मार्गदर्शन करते हैं। भक्ति से मन को शांति मिलती है, बुद्धि को प्रकाश मिलता है और जीवन को सही दिशा मिलती है। और प्रभु के द्वार पर किया गया एक सच्चा नमस्कार भी अनेक शब्दों से अधिक मूल्यवान होता है। और भगवान को धन, वैभव या कुछ भी नहीं चाहिए, बल्कि निर्मल हृदय और सच्ची श्रद्धा प्रिय होती है।

जी हाँ श्रोताओ, 11:09 हुए हैं और आप सुन रहे हैं भक्ति में शक्ति कार्यक्रम। श्रोताओ, एक गांव में एक गरीब दादी रोज मंदिर जाती थी। उनके पास चढ़ाने के लिए केवल फूल होता था और लोग उनका मजाक उड़ाते थे, परंतु वो हमेशा मुस्कुराकर भगवान का नाम लेती थी। एक दिन पंडित जी बोले, भगवान को महंगी चीज़ें नहीं, सच्चे दिल की भक्ति पसंद है। उस दिन सबको समझ आ गया कि असली भक्ति दिल से होती है, दिखावे से नहीं। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भक्ति का जो अर्थ है वो केवल मंदिर जाना नहीं, हर काम को सच्चे हृदय और धन्यवाद के साथ करना ही असली भक्ति।

11 बजकर 19 मिनट हुए हैं। कहते हैं भक्ति से दिल होती है और दिखावे से नहीं। जहां विश्वास होता है वही भगवान का वास होता है। भगवान को शब्द नहीं सच्चा दिल चाहिए, और भक्ति में शक्ति है, और शक्ति में जीवन की हर मुश्किल का हल है।

11:25 हुए हैं श्रोताओं, ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आपने साथ दिया, बहुत धन्यवाद। उषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ दिन।

0: दिन के 12 बजे हैं।
1: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे अदिति नमस्कार।
2: नमस्कार नीलमणि, श्रोताओं को भी नमस्कार। राष्ट्रसभा में कल क्रिमिनल कोड अमेंडमेंट बिल पर बहसें चली और कल शाम उसे पारित किया गया। ये विधेयक हाल ही में पारित हुए डोमेस्टिक अब्यूज बिल के बाद कानून में संशोधन प्रस्तावित करता है। इसके अंतर्गत महिलाओं की हत्या और वैवाहिक बलात्कार के लिए सजा और सख्त किए जाने का प्रावधान है। इसके साथ ही अब कोई अपराधी अपने विवाहित होने या धार्मिक स्थिति को बचाव के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकेगा। जनवरी 2021 से जुलाई 2015-2026 के बीच कुल पुलिस ने चाकू, तलवार या अन्य धारदार हथियारों से जुड़े 731 अपराधों की सूचना दर्ज की। राष्ट्रसभा में कल पीएमक्यूटी सत्र के दौरान ये जानकारियां दी गई। कमिश्नर ऑफ पुलिस की तरफ से उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों में इन घटनाओं में 697 लोग घायल हुए और 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने बताया कि कुछ खतरनाक हथियारों के बनाने, बेचने और व्यक्तिगत रूप से रखने पर देश में पहले से ही कानून के तहत रोक या नियम लागू हैं। ज़्यादा आसान और तेज़ होने के कारण ऑनलाइन खरीदारी ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों के बीच लोकप्रिय बनती जा रही है। हालांकि इसको लेकर कई जोखिम पाए जाते हैं। जनता की तरफ से प्राप्त कई शिकायतों, ज़रूरी सावधानियों और सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए कंज्यूमर अफेयर्स यूनिट अब ऑनलाइन खरीदारी के नियमों पर फिर से गौर कर रही है। जनता से ऑनलाइन खरीदते हुए कुछ विशेष सावधानियाँ बरतने की मांग की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान पर हमला अभी भी पूरा नहीं हुआ। ये तनाव तब और बढ़ गया जब तेहरान ने गल्फ देशों पर भी हमले किए। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। एवेन्यू कोर दे गॉड ट्रेफ रोजिल में 81 साल की 81 ईयर्स श्रीमती दयावंती राम तुहल, श्रीमती दयावंती राम तुहल, पिताश्री नाम तूफानी, जो स्वस्ती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे इनके बेटे श्री विनय राम तुहल के मकान एवेन्यू कोर दे गॉड ट्रेफ रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉलिवियर की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट 3 PM। लुई लाजिया गली ओकुले में 92 साल की 92 ईयर्स ओल्ड श्रीमती साबित्रा हीरालाल, जो चाची साबित नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। की अर्थी कल दिन के 2 बजे के बेटे श्री आनंद हीरालाल के मकान लुई लाजिया गली ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए भी कहा कि श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो 2 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
3: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: खाना सफर खाना सफर।
1: हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आप सबों का सुहाना सफ़र प्रोग्राम में, जहां पर हम सफ़र बनकर आप आते हैं, हमारे साथ जुड़ जाते हैं और हमारा सफ़र जो होता है वो एकदम सुहाना बन जाता है। तो आप सबों का वेलकम है, स्वागत है रेडियो मनोरंजन RM3 विदिता के साथ। ये है सुहाना सफ़र, हम आ गए हैं, आप आ गए हैं, तो साथ मिलकर चलिए इस सफ़र को और भी खूबसूरत बनाएंगे आपके कुछ मैसेज के साथ, जो आप हमें लाइव भेज सकते हैं हमारे टिकटॉक पे, हमारे टिकटॉक होता है लाइव, और नहीं तो बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। रेडियो पे आप हमें सुन रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने से आप हमें सुन रहे हैं, बस साथ देते रहिए और हमारे गाने जो हैं गुनगुनाते चलिए।

0: तुम आ गए हो, नूर आ गया है और यहाँ पर इतने सारे हमारे दोस्त आ गए हैं।
1: सुहाना सफर।
0: तो चलिए भाई, जिनके आने से हमारे प्रोग्राम में नूर आता है उनसे मिल लेते हैं। 12:18 हुए हैं और यहाँ पर हमारे साथ हैं अनिल कुमार, केशनी कुमार, आयशा जो भी बस में है अभी, उनको छुट्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो मिल जाएगी, बस कल का दिन है, फिर उसके बाद आराम ही आराम, ठीक है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आराम से प्रोग्राम सुनना। शीला सिधारी, बबीता, इंदिरा, राम कौर, वी हैव रीना, सुल्ताना कांदाय, नजीमा गोवर्धन, शोभा, साहिल हमारे साथ जुड़े हैं। एंड साथ में यहाँ पर गाना होगा आपके लिए राजेश के नाम और प्रकाश के लिए, और गाना होगा आपके लिए, वैसे आपने कहा है कि अनिल जी आप फिजी आइलैंड से हो, ओके।

जी मुझे पता है आपने आपने बोला था। नेहा हमारे साथ हैं एंड कहते हैं कि यार क्या कोइंसिडेंस है, आपका शो और हमारा लंच टाइम एक टाइम पे होता है, ब्रेक लेने का टाइम मिल जाता है और गाने सुनकर मज़ा ही आ जाता है। सो बोन अपेटी टू यू। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट गाना जो होगा हम डेडिकेट करेंगे आपके लिए। आप तो कहते हैं मोगेम्बो खुश हुआ, तो थैंक यू सो मच। हम खुश, आप खुश, सभी हमारे खुश हैं दोस्त। रेहा के ये गाना होगा। दीप्ति गुंदावरी जी नमस्कार, श्यामा महराली कैसे हैं आप। नेक्स्ट गाना आयशा वीना और विकास के लिए, और वहीं पे गाना होगा आपके लिए कविराज मोहन, कैसे हो आप भाई, नमस्कार आपको। और बहन का जन्मदिन है, उसका नाम है प्रतिमा फूलचंद, चलिए उनके नाम भी हमारे प्रोग्राम का नेक्स्ट जो गाना है डेडिकेट करते हैं। और ये गाना ख़ास तौर पे उनके लिए जो इस समय या बस में है, हमें सुन रही हैं, है ना आयशा। चलिए माधुरी जी भी आ गई हैं एक दो तीन करते हुए, तो उनके लिए प्यारा सा ये गाना, हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों के नाम इंतज़ार हैं, बाकी दोस्त जुड़ जाएं। तो परी वेलकम है आपका।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: ये है आपका सुहाना सफर। चलिए गाना जाएगा जोया आनंद, अर्चना डांडा जो न्यूजीलैंड से हमें सुन रही हैं, वो पूजा, विमला लक्ष्मण, सुरेखा, कल्याणी हरी, सुचिता, केमराज, सिवसन, ओके। एंड साथ में यहाँ पर हमारे नेक्स्ट गाना जो होगा डेडिकेट करते हैं अंजीर आमुगम के लिए। पनक्कम अंजी, कैसी हो? प्रवीणा दुर्गा, आपका भी हम स्वागत करते हैं। जी हाँ बिल्कुल। एंड साथ में यहाँ पर हम गाना डेडिकेट करेंगे आप लोगों के लिए जो इस समय ऑफिस में बैठे हैं, और ऑफिस में काम भी हो रहा है लेकिन बैकग्राउंड में हमारा म्यूज़िक भी चल रहा है। तो चलिए जो लोग साथ दे रहे हैं काम पर उनके लिए, यहाँ सुरेखा जी कहती हैं अभी हमारे यहाँ समर है, आप स्कॉटलैंड आ जाओ। मैं हर जगह जाऊँगी लेकिन ये जाने नहीं देंगे ना। हाँ अगर वहीं से लाइव करूँगी तो ठीक है, तब ये लोग खुश रहेंगे। उनको सब कुछ दिखाओ, उनको सब कुछ बताओ, ये बता दो कि हाँ भाई यही है, उनके साथ है। चलो तो आप दुनिया के किसी भी कोने से हमें सुन रहे हैं। सुरेखा जी बाय द वे थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा जानकर। एंड अभी तो हम आसमान के नीचे प्यार का इजहार करेंगे, चलोगे मेरे साथ?

0: का सफर खाना सफर
1: भाई प्यार का जहान तो हम बनाते ही हैं और यहां पर हमारा जो एक महफिल सा यहां पर सज जाता है हमारे सभी लिसनर्स के साथ, हम ये इतना तो कह सकते हैं कि ये वो जगह बन जाती है जहां पर सब आ जाते हैं हमारे साथ, अपने दिल की बात शेयर करते हैं, बस गीतों में ही खो जाते हैं। हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट होता है कि हम कुछ पल के लिए अपनी टेंशन को भूल जाएं, बस खुश रहें। खुश करने के लिए क्या होता है, म्यूजिक होता है, और म्यूजिक हम लेकर आते हैं आपके लिए इन सुहाना सफर। यहां पर हम वेलकम करते हैं मनोज आपका, नमस्ते, स्वागत है आपका। मिस्टर नुरेदीन फ्रॉम फ्रांस, बीना, सरिता, लीना, आशना, पीकू, रामा, साथ में है तीशा, विंती, मोहिनी, दीनू, डिवा गर्ल, एंड वी हैव शिरीन। साथ ही साथ यहां पर हंसवी हमें सुन रही हैं फ्रॉम थाईलैंड, थैंक यू सो मच, थाईलैंड की हमारी पहली लिसनर, एंड आपको बहुत बहुत सारा प्यार है हमारी तरफ से। चलिए इसी के साथ अभी नेक्स्ट गाना हो जाए, फिल्म का नाम है आमने सामने।

0: सिखाना सफर
1: हमसे पूछो हमको पता है उस जालिम का नाम जो हमारा दिल चुराते हैं, जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, जो हमारे सभी प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं और हमें बहुत सारा प्यार देते हैं। थैंक यू टू ऑल माय लिसनर्स जो हमें रेडियो पे सुन रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं अपने टिकटॉक पे हमें फॉलो कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। गाना जाएगा फतिमा, माया भगवान, साथ में धर्मेंद्र राज, निशी गंगू, उनके बेटे महवीश रवाना का आज बर्थडे है, रहते हैं वालिदा उनको, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। लवना उनके बेटे शहान के लिए गाना मांग रहे हैं, वहीं पे अभी घरेलू टू निज़ाम बहादुर। गैमी सुरेखा उनके हस्बैंड आनंद के लिए गाना मांग रहे हैं, तभी तो उनको आनंद आएगा। और आशा जोशीवा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। देवीना सनातन, दीपक दीपदयाल, साथ में है नदी, माया रामदोस जी वेलकम है, स्वागत है आपका, कैसी हैं आप। राजेश जूतन, आपका भी हम प्रोग्राम में करते हैं स्वागत। चलिए तो आप जहाँ से भी हमें सुन रही हैं, चाहे आप मॉरिशस में हो, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, वेलकम, स्वागत है आपका। मैं हूँ विदिता और आप सुन रही हैं मॉरिशस का ये बेस्ट रेडियो स्टेशन, रेडियो मनोरंजन RM3, जहाँ पे चल रहा है पुराने गाने और प्रोग्राम है सुहाना सफ़र।

सुहाना सफर सुहाना सफर भाई हमारे प्रोग्राम में तो मजा ही आ जाता है। यहाँ पर जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं, नॉर्मली यहाँ पर हमारा जब टिकटॉक लाइव चलता है तो दुनिया के कोने कोने से, आप बादल की बात करें, हम परदेश की बात करें, वो वहाँ से निकल कर जुड़ जाते हैं हमारे साथ। और यहाँ पर हमारे साथ है रेखा गोपोल एंड वी हैव लिलियन गिरदारी फ्रॉम नेदरलैंड्स, हाई। हमारे साथ है मिली एंड न्यूजीलैंड वेलिंगटन से हमारे साथ है, उनका नाम है, व्हाट अ कोइंसिडेंस है, उनका नाम है मनोरंजन। तो वो हमारे साथ अभी इस समय जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि भाई ओरिजिनली मैं तो फिजी से हूँ, वैसे जहाँ से आपके एंसेस्टर्स आए थे वहीं से हम भी निकले थे, हम फिजी चले गए, कुछ मॉरिशस चले गए, एंड थैंक यू सो मच। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे इतने सारे दोस्त हैं जो हमें अपना मानते हैं, और फिजी में तो मुझे पता है वहाँ पर भोजपुरी भी बोलते हैं, हमारे यहाँ भी बोलते हैं। सो नाइस मीटिंग यू मनोरंजन ऑन रेडियो मनोरंजन। ऑलराइट, यहाँ पर हमारे साथ हैं लैला एंड सुनीता देवी भी फिजी आइलैंड से हमें सुन रही हैं, थैंक यू सो मच। वी हैव जोशीवा फ्रॉम नेदरलैंड्स, हेलो, एंड उमा, सुबिता कौतिक, राधिका, सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका स्वागत है। सन स्वेनल, थैंक यू सो मच, और गाना होगा आपके लिए विशाल लोचन। एंड सुरेखा जी कहते हैं कि भाई मेरे हस्बैंड आपको हेलो बोल रहे हैं स्कॉटलैंड से, थैंक यू सो मच। चलिए जी, आपको भी हमारी ओर से अ बिग हेलो। प्रिया के

कहती है कि हम लोग अभी पॉइंट 20 के बीच में हैं और बीच में है नहीं उसी साइड पे है. एंजॉय योरसेल्फ एंड हमारी ओर से भी थोड़ा स्विम कर लेना, ठीक है. सुबी का हम वेलकम करते हैं और साथ में यहाँ पर मालिनी हमारे साथ जुड़ी हैं. कदीपा मंगर, कैसे हो जी? सलाम आपका, वेलकम, स्वागत है आपका. तो ऐसा करते हैं कि कोई गाना ऐसा चला दें जिससे आपका दिल हैप्पी हो जाए. और हमारे साथ उष्णा बानो मल्हारी भी हैं एंड साथ में यहाँ केमराज जी, आपके लिए ज़रूर गाना होगा. तो उमा जी अगर आप रेडी हैं, आशीष कुमार अगर आप रेडी हैं, तो चलिए. प्रीति दुखितराम वेलकम है, रानी जोशी नमस्ते. और यहाँ पर सुनील मित्तू का करते हैं वेलकम. भाई हमारे पास आपको देने के लिए प्यार के अलावा और कुछ नहीं है, तो बस प्यार ही है अगर आप इस प्यार को अपनाना चाहें तो. और स्वनल कहती हैं उनके सभी कलिग्स के लिए अगर हो सके तो गाना हो जाए. सूर्या कहते हैं हाय फ्रॉम एवरीवन इन फिजी टू यू वेरिता, थैंक यू. बस जितना भी हो सके शेयर करो ताकि फिजी में हम छा जाएं. आई मीन टू से हमारा रेडियो मनोरंजन छा जाए भाई.

0: ना सफर।
1: चलो जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट गाना जो होगा हम डेडिकेट करते हैं आप सभी लिसनर्स के लिए। यहाँ पर हमारे साथ है मनीषा, थैंक यू सो मच, आई एम फाइन एंड हाउ आर यू। चलो गाना होगा रीना टंडन के नाम, निशा भवानी फ्रॉम सूरीनाम, एंड वी ऑल्सो हैव आरती सिंह, अनिता पैतुब, रजनी आज हो रही है 60 ईयर्स ओल्ड की, सो आपको मैं बोलूँगी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको हैप्पी बर्थडे हमारी पूरी रेडियो मनोरंजन टीम की तरफ से। एंड बबीता यहाँ पर कहती हैं कि नेक्स्ट गाना फॉर माई फैमिली, स्पेशली फॉर माई डैड, ओके। एंड यहाँ पर किशोरदा का गाना सुन के साथ बहुत हैप्पी हो गए, अच्छी बात है। हमारे साथ रजनी के साथ फी जुड़ी हुई है, एंड साथ में छोटे भाई पदम, कैसे हो, सब बढ़िया, सब गुड। वी हैव काजल, रीता देवी, सिद, सिद्रोना, सिदोयाल एंड लजनी जो कि हमारे साथ अभी गाने एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, हमारे खूबसूरत गीतों की लिस्ट में एक और प्यारा सा गाना आ रहा है, एंड गाना होगा यहाँ पर आपके लिए रफ़ी साहब की आवाज़ में। ये गाना सरस्वती के लिए, राम राम सरस्वती, कैसे हो आप।

0: चलो जी, खूबसूरत सा गाना है और यहाँ पर गाना किसके नाम डेडिकेट करें। शालिनी रवि नीरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवी जी नमस्कार, स्वागत है। एंड रीना क्या बात है आप, विदुषी हमें वॉच कर रही है फ्रॉम आयरलैंड, हाय। चलो स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं आपका। एंड यहाँ पर हम गाना डेडिकेट करेंगे आपके लिए देवीस, ओके। एंड देवी जी कैसे हो आप? चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट गाना डेडिकेट करते हैं आपके नाम, फिल्म का नाम है आशिक।
1: RM3 रेडियो।

0: चलिए अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे विधिमा नमस्कार।
1: नमस्कार निर्मणि, सभी सुनने वालों को नमस्कार। 28 साल के एक व्यक्ति का दावा है कि कई लोगों ने उसका अपहरण किया, उसके साथ मारपीट की और बंदूक से डराया, धमकी दी। मंगलवार सुबह पुलिस को दी गई शिकायत में पाल्मा का ट्रबोन के रहने वाले एक नाविक ने बताया कि ये घटना सोमवार रात करीब 9 बजे घटी। उसके अनुसार दो लोगों ने उसे ज़बरदस्ती एक काली BMW गाड़ी में 3 अन्य लोगों के साथ बिठा लिया था। उसका दावा है कि जब मैं दीदाम की तरफ जा रहे थे तब उसके साथ मारपीट की गई। संदिग्धों ने उससे ड्रग्स ले जाने के लिए कहा जिसके उसने इनकार कर दिया और इसके बाद उसका मोबाइल फ़ोन छीन लिया। पोएटो साबल पहुंचने पर उसने 2 बंदूकें देखने की बात कही। संदिग्धों में से एक ने हवा में 2 गोलियां चलाई और उसे धमकी दी। शिकायतकर्ता के अनुसार उसने अपनी रिहाई के लिए 3 लाख रुपए देने की पेशकश की थी। इसके बाद संदिग्ध उसे उसके घर वापस ले गए जहां वो भागने में सफल रहा। घायल अवस्था में उसे कौंदस के विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज किया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। देविंद सीतानंद मामले की जांच अभी भी रुकी हुई है। कल क्यूपिप जिला अदालत में सेंट्रल CID के इंस्पेक्टर सिबालक ने बताया कि पुलिस फोन कॉल रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए अभी भी जजेस ऑर्डर का इंतजार कर रही है। मेनलो पार्क कहे जाने वाले मामले में देविंद सीतानंद पर ICTA के तहत एक अस्थायी आरोप दर्ज है। पिछले साल जनवरी में DPP के कार्यालय में दायर किया गया यह अनुरोध अभी भी लंबित है। जांच की प्रगति की समीक्षा के लिए इस मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को तय की गई है। राज्यसभा में कल क्रिमिनल कोड अमेंडमेंट बिल पर बहस हुई। शाम को पारित किए गए इस विधेयक में हाल ही में डोमेस्टिक अब्यूज बिल के पारित होने के बाद कानूनों में संशोधन किए गए हैं। इसमें विशेष रूप से महिला हत्या और वैवाहिक बलात्कार के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। कोई भी आरोपी अब बचाव पक्ष के रूप में ये दलील नहीं दे पाएगा कि उसका नागरिक या धार्मिक रूप से विवाह हुआ है। और विदेश में यूक्रेनी ड्रोनों ने रूस के सबसे बड़े ऑनलाइन रिटेलर के गोदामों को एक बार फिर निशाना बनाया है, जिसमें 15 लोग घायल हो गए हैं। कीव का दावा है कि इन गोदामों का इस्तेमाल रूस के ड्रोन और नेविगेशन उपकरण बनाने के लिए पुर्जे सप्लाई करने के वास्ते किया जाता रहा है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही 1 बजे के संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। एवेन्यू कोदिगा ट्रैफल रोज हिल में 81 साल की 81 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती दयावंती राम तोहल, पैदायशी नाम तूफानी और जसवस्ती नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर 3 बजे उनके बेटे विनय राम तोहल के घर एवेन्यू कोदिगा ट्रैफल रोज हिल से उठाकर कॉलोव्यू की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टूडे 3 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है।
2: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. You're listening to RM3 Radio. Mana.

0: सारा जमाना हसीनों का दीवाना और हम
1: सुहाना सफर
0: में हम सफर बना के एक दूसरे को साथ चल रहे हैं। चलिए यहाँ पर हम गाना डेडिकेट करते हैं अपने तमाम दोस्तों के लिए। हमारे सेकंड आवर में आपका स्वागत करते हैं। दिन के 1:07 हुए हैं और आप विनीता का साथ दे रहे हैं इन सुहाना सफर। चलिए तो यहाँ पर जो अगला गाना होगा हम डेडिकेट करेंगे वीर सिंह, सरोज, साहिल के उनके बॉस अनिल के नाम जो साथ दे रहे हैं। वहीं आप कविता, सुनीता, लैला मोदरन, दुर्गा जी आपका वेलकम है, महेंद्र जी कहते हैं उनको फीवर हुआ है, घर पे हैं, लेकिन ये जो गाने हैं ना ये मैजिक का काम कर रहे हैं। ही इज़ फीलिंग सो गुड। सो महेंद्र जी हमारे लिए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और कुछ हो नहीं सकता। थैंक यू सो मच। एंड चलिए यहाँ पर बबीता बुलाकी के लिए गाना होगा बीना पेंचिया, कविता, मोहन, अंबिका, रेखा भी कहते हैं कि एक महीने की छुट्टी क्या करोगे है, चलो मिलने आ जाना हमसे। यहाँ पर रचना मन वैदेही प्रिया जो कि मेलबर्न से साथ दे रही है, हेलो, थैंक यू सो मच। कहती हैं कि यहाँ मॉरिशस के बड़े याद आ रही हैं। मुझे लगता है प्रिया आपको आ जाना चाहिए छुट्टी बनाने के लिए और हमसे मिलना भी चाहिए। हेमा शंकर सुधा गायत्री के लिए गाना मांग रही हैं। वहीं पे प्रेमनाथ रामखिलावन जी अपने फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड रेशमा के लिए गाना मांग रही हैं। एंड साथ में यहाँ पर गाना होगा आपके लिए प्रिया, थैंक यू प्रिया, लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो चलिए यहाँ पर हम गाना डेडिकेट करेंगे प्रीति के लिए ऑफ पोर्ट लुइस। उनके हस्बैंड 60 इयर्स ओल्ड के हुए हैं, क्या बात है। हैप्पी बर्थडे एंड स्काली डे, थैंक यू सो मच। सबिता रुकचया आपका भी हम वेलकम करते हैं, नमस्ते। और साथ में यहाँ पर गाना होगा विदुषी आपके लिए, थैंक यू सो मच। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला गाना जो होगा हम डेडिकेट करेंगे दिलीज फिल्म का गाना है, शायद बहुत दिन हुए आपने सुना नहीं होगा।

सुहाना सफर सुहाना सफर प्रोग्राम है सुहाना सफर विनीता का साथ दे रहे हैं आप लोग और चलिए यहाँ पर हम अगला गाना जो होगा आपके लिए लेकर आए हैं और ये गाना हमने लिया है फ्रॉम द मूवी शान और ये गाना आपको मुझे पता है बहुत बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगा बहुत ही खूबसूरत सा गाना है एंड यही गाना हम डेडिकेट करेंगे हमारे इन दोस्तों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी और आप में यहाँ पर कितने सारे लोग हैं जिनके बहुत सारे फरमाइशें आती हैं और मैंने जैसे कहा था आपको कि अभी हम फरमाइश गाने नहीं चलाते हम चलाते हैं आपके लिए गाने वो गाने जो हमारे लिस्ट में हैं एंड वी हैव साधना तैयब भोला रेशमा राम किशोर नंदा तोहाल अभिषेक समिति और साथ में है सीता श्वेता देवांश मंजू

0: कैसी हो मंजू। चलो गाना होगा बिंता के लिए, सुधा गायत्री के लिए गाना मांग रही है, सैपिया के जितने भी लोग सुन रहे हैं हमें, इंदिरा और शाम के लिए सुरेखा, एंड वी हैव शाम स्टाइल सुन रहे हैं हमें, नाम नैना, सरिता, मीला रामा और अनुराधा पुनीत हमारे साथ है, नमस्कार जी। एंड यहाँ पर सुरीनाम से मोहम्मद गैगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हेलो जी कैसे हो, हाय ललिता, हेलो विद्यालक्ष्मी, पूनम त्रियोले से साथ दे रहे हैं हमारे, चलिए आपका भी हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और साथ में यहाँ पर हम वेलकम करते हैं आपका सुरेखा जी एक बार फिर, स्कॉटलैंड से जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सब के लिए। तो ऐसा करते हैं, श्रेया के लिए गाना हम डेडिकेट करते हैं, और विश्वनाथ प्रयाग हमारे साथ ट्रिनिदाद से जुड़े हुए हैं, करें हमारे लाइव को, दीप्ति जी थैंक यू वंस अगेन, अवनीश बोल बच्चा कैसा है तू, चल गाना होगा इनके लिए, एंड गाना होगा आपके लिए, गुचीना जो साथ दे रहे हैं, एंड साथ में ये गाना जाएगा उनके लिए जो हमारे साथ हैं, जैसे अनिल, राजन, कुंजन जी नमस्कार, अंजू, प्रेम आपका भी, थिया वेलकम आपका।
1: RM3 Radio.

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: चलिए सुहाना सफर प्रोग्राम को आगे ले चलते हैं। हमारे जो दोस्त हैं अब्दुल रिशाद, साम, आरती, सदा सीवन, मोहम्मद यासिन, एदू कहते हैं कि अम्मी को ये गाने बड़े पसंद हैं। ओ माय गॉड, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। रुकैया सुदन हमारे साथ गजवी से जुड़ी हुई हैं और वो रोज़ हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ी रहती हैं, थैंक यू सो मच। यहाँ पर दे दनादन जोर का झटका हम दे रहे हैं गीतों के साथ, मज़ा आ रहा है। तो ऐसा करते हैं कि हम उन्हीं गीतों को आगे ले चलते हैं। हाय एल्विन, हेलो जी, कैसे हो? कविता अनु, स्वागत है। एंड साथ में यहाँ पर गाना जो होगा हम डेडिकेट करेंगे आयशा के लिए, घर पहुंच गई होगी, खाना खा लिया होगा, डिज़र्ट खा रही होगी। तो इससे पहले कि तू दिमाग मेरा खाए, तू गाना सुन और एंजॉय कर।
2: RL Free Radio Radio Radio
1: ये गाना हम रुख बहार के नाम भी डेडिकेट करना चाहेंगे जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अभी।

0: तोहफा भी हम लेकर आते हैं आपके लिए, यानी कि गाने लेकर आते हैं। मुका में तो सर्दी है लेकिन पोर्ट्रेस में बहुत गर्मी है, ये भी यही बता रहे हैं। रेशमा माधु आपका हम स्वागत करते हैं। एंड यहाँ पर परी कहते हैं कि मैं जया बन जाऊँ और साड़ी पहन के आऊँ, फिर डांस करेंगे, मज़ा आएगा। चले तो यहाँ पर यहाँ गाना जो होगा हम डेडिकेट करते हैं आपके लिए। किन के लिए भाई? उनके लिए जो साथ दे रहे हैं और गाने इन्जॉय कर रहे हैं। तो गर्मी हो या सर्दी, हमें तो बस गाने से मतलब है, है ना?
1: RM3 Radio.

0: जाने क्या बात है कि हमारा भी दिल कहीं कहीं इधर से निकल कर उधर, कहीं उधर से निकल कर इधर, यानी कि जहां जहां आप जा रहे हैं वहां वहां आप तक पहुंच रहे हैं ना।
1: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
0: चलिए तो गाना हम डेडिकेट करते हैं आप सभी लिसनर्स के नाम, और यहाँ पर गाना होगा प्रतिमा आपके नाम, और अ बिग शाउट आउट टू माय कलीग रवि, थैंक यू सो मच साथ देने के लिए। रेशमा जी कैसे हो आप? कहते हैं कि गाना बड़ा कमाल का है, और हाँ ऑफ कोर्स गाने तो ऐसे होने चाहिए ना जहाँ पर सुनकर दिल हैप्पी, दिल खुश हो जाए। जितन दुलवा नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोग्राम में, और साथ में ये गाना हम सुरेखा जी आपके हस्बैंड आनंद के नाम डेडिकेट करते हैं, आपको गाना बहुत अच्छा लगा। सलाम फ्रॉम यूके, ये हैं तनवीर खालिद, कैसे हो मियां? सब ठीक, सब बढ़िया। प्रतिमा जी गाना नेक्स्ट गाना आपके लिए होगा, ठीक है। जिम्मी जिम्मी जिम्मी आपके लिए भी नेक्स्ट गाना हम डेडिकेट करते हैं, एंड साथ में ये गाना हम यवदिश के नाम डेडिकेट करते हैं, बड़े प्यार से उन्होंने मैसेज भेजा है। और यहाँ पर गाना होगा फॉर गुलशन जो हमें सुन रहे हैं, हेलो ब्रो कैसे हो, एंड देविका, सीता पदारत, संगीता सुकारी, इंद्राणी बीगू, फौजी साक्स हैं, वी हैव शिरीन, और शिरीन के साथ साथ रेशमा, श्रेया, प्रतिमा, रवि, एंड स्पेशली ये जो हमारा नेक्स्ट गाना होगा इसे हम डेडिकेट करेंगे हमारे कुछ ऐसे दोस्तों के लिए जो अभी लंबे सफ़र में निकले हैं, है ना, और ये गाना होगा स्पेशली मौसमी दी के लिए, फौसरी रूपा एंड निराधिदा, और ये है हमारी प्यारी सी सुमी के नाम। लाइफ होती है एंजॉय करने के लिए, और जिंदगी में कल क्या हो क्या पता, है ना। सो एंजॉय कीजिए अपने लाइफ के हर एक लम्हे, हर एक पल को हमारे गीतों के साथ।

हमारा भी मन करता है हम रुक जाएं, लेकिन क्या करें, अब तो हमारे जाने का भी समय हो गया है। चलते चलते विकास नीला कपड़े के लिए गाना होगा, और चलिए जितने भी लोग साथ दे रहे हैं

चलिए इसी के साथ अब मेरे जाने का टाइम हो गया है. थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े रहे. अब आपसे मुलाकात करेंगे हम बिल्कुल कल 12 बजे. ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे.

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें,

0: रांची सुनते संक्षिप्त समाचार आपसे सुमेरा नमस्कार।
1: नमस्कार आदाब। इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन एक्ट की धारा 3(9) के तहत आज सत्यव्यास फुगु ने गणराज्य के राष्ट्रपति के सामने इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण की है। उनकी कार्यवधि 4 सालों की होगी। आपको बता दें कि विपक्ष नेता और प्रधानमंत्री की सलाह पर इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन एक्ट की धारा 3(5) और 3(6) के तहत उनकी नियुक्ति की गई है। कल राष्ट्रसभा में क्रिमिनल कोड अमेंडमेंट बिल पर बहस की गई। रात को इस विधेयक को पारित किया गया जिसका मकसद डोमेस्टिक अब्यूज बिल के पारित किए जाने के बाद कानून में बदलाव लाना है। क्रिमिनल कोड अमेंडमेंट बिल में महिलाओं के कत्ल और मैरिटल रेप जैसे जुर्मों के लिए ज्यादा सख्त सजाएं दी जाएंगी। अब से एक अपराधी अपने डिफेंस में ये नहीं कह सकता कि उसने सिविल मैरिज या फिर धार्मिक विवाह किया है, इसीलिए उसे ऐसा करने का अधिकार है। मोजाम्बिक से बैलों के आयात के सिलसिले में मिशन अधिकारी दक्षिण अफ्रीका की प्रयोगशाला के गहरे अध्ययन के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। एक सख्त स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के तहत गए शनिवार को बैल मॉरिशस पहुंचे। उन्हें लाशोमिया में निगरानी में रखा गया। कल एक प्रेस सम्मेलन के दौरान कृषि उद्योग मंत्री डॉ अरविंद बुलेल ने दोबारा पुष्टि की कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और पशुओं की भलाई के लिए स्वास्थ्य कदमों का बारीकी से पालन किया जा रहा है। विदेश में फ्रांस ने जनवरी 2027 से 15 साल से कम उम्र वाले लोगों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाने का कानून पारित किया। इन प्लेटफॉर्म्स पर नौजवानों को ब्लॉक करने वाला वो पहला यूरोपीय देश बन गया है। इस कानून के तहत सोशल मीडिया पर एक्सेस पाने के लिए फ्रांस में बसने वाले सभी लोगों को अपनी उम्र बतानी पड़ेगी। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इस कदम का स्वागत किया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
3: RM3 Radio, Radio.
4: धरोहर के सरोवर साप्ताहिक प्रोग्राम महात्मा गांधी संस्थान के सहयोग से तो आवा भोजपुरी सीखा धरोहर के सरोवर संगे।
5: नमस्ते, धरोहर के सरोवर कार्यक्रम में आप सब लोग के स्वागत बा। हमें अरविंद साथ में हमनी के तकनीकी सहयोगी संजू तुकुगी। आज हमनी के कार्यक्रम तैयार करे में हमनी के सहयोग दुआ थुआ बहुत स्वागत बात लोग के। और जैसे जनबे करेला हमने के जो कार्यक्रम है धरोहर के सरोवर ई मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और महात्मा गांधी संस्थान के भोजपुरी लोक विभाग दिने से तैयार करल जात बा। तो लोग के बोली रजा फिर से बोला थी जा कि मॉरिशस में भोजपुरी के पढ़ाई हुआ था। कहां पर ही हुआ था इतो लोग के बताए ना जा। देखा अभी हम के बैठका लोग में लड़का लोग के भोजपुरी सिखावल जात बा। और हमनी महात्मा गांधी संस्थान देने से कोशिश कर लजा कि जो सामग्री चाहेला वो सामग्री तो लोग के तो लोग तक सकब जा पहुंचाई। अये जाहे जा परी अध्यापक लोग अध्यापिका लोग तो लोग के सकब जा ई सामग्री दे तो अपन लड़का लोग के सकब जा सुनाए सकब जा पढ़ाए ताकि तनी तनी तनी लोग भोजपुरी सीखबे करी। अब ये देखा हमारे हाथ में भी एगो पुस्तक चलाल। ई पुस्तक के नाम है भोजपुरी टीचर्स हैंडबुक स्टैंडर्ड वन। तो स्टैंडर्ड वन यानी ग्रेड वन के लड़का लोग खातिर ई पुस्तक तैयार करल गल बा जो तो लोग के लड़का लोग खातिर बहुत काम आए। ई चलते हम धन्यवाद देव ई सब टीम के जो लोग ई पुस्तक तैयार करे में हमने के सहयोग दिल हुआ जा। जैसे कोऑर्डिनेटर हम और दाऊ सिंह जी रहलन जय गणेश हमी के पैनल में रहलन जा डॉक्टर मिसिस भगत राम याद गौतमी डॉक्टर हेमराज सुंदर डॉक्टर लाल

Yari Jaichand, Dr. Sandhya Ancharaz, फिर साथ में श्रीमती जिंगन योगेश्वरी, लोडा ब्रिजलाल जी रहल, चंद्रदेव ओबिलक, लालधन सिबुआ जी रलंजा, ये सब मिलके एक पुस्तक तैयार कर रहल बा। और एकर में जो उद्देश्य बा कि लैका लोग के धला भोजपुरी से अवगत

प्याली गल टूट मामा गल रूट प्याली लेलन औरू मामा ऐलन दौर एगो गीत बा साथ में एगो लोरी भी बा इत जनबे करेला रे चंदा मामा आरे आव पारे आव नदिया किनारे आव सोने के कटोरिया में दूध भात ले ले आव बबुआ के मुआ में घुटूक सोजा बाबू सोजा सोजा बाबू सोजा इत चलो के बोलत है जा एकर हमनी ऑडियो भी तैयार कर ले जा एकर ऑडियो जन लड़का लोग कैसे बजा सिखाए सुनाए और एकर कैसे बजा जाए संजो कर कराओके उकर खाली उकर म्यूजिक रहे उकर संगीत रही त लड़का लोग सकेंजा गाय तैसे वार्षिक उत्सव रही कोनो ऐसा कार्यक्रम रही त सब बजा ई लड़का लोग के ई सुनाए ई गवाए त ई आज हमी के कार्यक्रम लगभग ई पर केंद्रित करब जा की कौन सी सकब जा हम ये अपन लड़का लोग के पढ़ाए जब भोजपुरी पढ़ावत है जा कार्यक्रम के आगे बढ़ाब जा गीत सुनब जा फिर मुलाकात हुई फिर से।

0: RM3 Radio.
1: तब अभी चर्चा कर रहे थे भोजपुरी पर हाई के लड़का लोग के खास तौर पर कम उम्र के लड़का लोग के तो ये जो पुस्तक महात्मा गांधी संस्थान में तैयार होल बा एकर में एक दुगो कहानी भी बा सिंह और चूहा के कहानी साथ साथ में एक दुगो कविता एक दुगो एगो सुन ला जाए जा ई लड़का लोग के धला जब बताए खोज बा शरीर के अलग अलग अंग कोची है तो एक में एगो बा चलक हिले सुन सुन तक ऐसे होला सुन सुन सुन कान से सुन तई जब लड़का लोग के जब ई बुलबा दोहराए के तो लोग के बुलबा लोग के कान पकड़े के तो लोग जानी कि कान माने हमनी के कान फिर बुलबा देख देख देख कुछ से देख संजू कुछ से देख बा आंख से देख देख देख देख आंख से देख बोल बोल बोल मुंह से बोल गिन गिन गिन कुछ से गिनबा उंगली से कैलकुलेटरी से नहीं गिन गिन गिन उंगली से गिन दे दे दे हाथ से दे चल चल चल गोर से चल तो ई सब लड़का लोग जाने गोर को चीह हाथ को चीह उंगली को चीह मुंह को चीह आंख को चीह नाक को चीह तो ऐसे लड़का लोग सकेंदा सीखे थे ई कविता बा ई पुस्तक में हयू में वो खेल के वो गीत बा हाथ ल हाथ द ई सकबजा लड़का लोग के धला लोग के अलग अलग तीन चार गो लड़का लोग रही वो लोग के बोल बोल के हाथ लेके से हाथ ल हाथ द आवा घेरा बना हुआ आवा घेरा बना हुआ घेरा माने ऐसे गोल करके तो घेरा शब्द जान जी अंजा आवा घेरा बनाए बना हुआ नाच गाव खुशी मनाव हाथ खोला हाथ छोड़ा जोर जोर से ताली बजावा देखो खेल हो गल लड़का लोग की बोलबा आव हाथ में हाथ आव घेरा बनाव नाच गावा

0: खुशी मनावा, हाथ खेला, हाथ खोला, हाथ छोरा, जोर जोर से ताली बजावा, ताली बजावा। इसे के कुनल हिरीलाल के गीत या चला ताली मार, नहीं कहो खुशी रह लाई गीत ताली मार। तो हमने आज चर्चा कर थी जा ई पुस्तक पर जो लैका लोग खातिन बनावल गलबा भोजपुरी के, इकर में चंगन मैंगन के गीत भी बाजाने ला। चंगन मैंगन पानी भरे पानी नहीं बा, भला बाम्बू में डिगरी डाले पानी नहीं बा, चंगन मैंगन पानी भरे पानी नहीं बा।
1: धरोहर के सरोवर साप्ताहिक प्रोग्राम महात्मा गांधी संस्थान के सहयोग से, तो आओ भोजपुरी सीखा धरोहर के सरोवर संगे।

0: RM3 Radio.
1: ते जोन गीत सुनना जा चंगन मेंगन पानी भरे ई भोजपुरी इंस्टीट्यूट देने से तैयार करल गरहल और जब हम के ई पुस्तक तैयार करल गल लैका लोग के तो एकर में एक गीत शामिल करल गल ई इरादा से कि ई गीत आप लैका लोग के सुनाई बजा एकर में ढेर कुछ सकी हुई धला लैका लोग के जे खुजत हुआ पानी के महत्व के प्रति सतर्क करके तो है गीत वसक सुनाए और खेल खेल में बहुत कुछ सकी हुई तम के धरोहर के सरोवर कार्यक्रम में इभर सक कोशिश करब जाकि लैका लोग हथिन नौजवान लोग हथिन तनी तनी भोजपुरी से संबंधित बहुत कुछ अंते रह जा तो इसने महात्मा गांधी संस्थान में ई एगो पुस्तक तैयार करल गल बा मॉरिशस के भोजपुरी कविता संग्रह एन एंथ्रोपोलॉजी ऑफ भोजपुरी पोएम्स ऑफ मॉरिशस गैल हलाइकर में से एक दुगो कविता ले रहे जा आज भी एक दुगो कविता ले जा प्रसिद्ध कवि मॉरिशस के जो महात्मा गांधी संस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर रहलन डॉक्टर हेमराज सुंदर और जो हमके भोजपुरी पैनल में भी रहलन उनका तीन गो कविता बा है, है पुस्तक में है कविता संग्रह में सुनिए जाए कविता कविता के शीर्षक है बोल बोल के भोजपुरी आली लोग को सब चिनवा बोले भोजपुरी आली लोग को सब चिनवा बोले भोजपुरी ना त उ लोग के दुकान ना चली ये तो सच बात बा आली लोग को दुगो चिनुआ उ लोग भी भोजपुरी बोलत रंजा नहीं बोलते ना लोग के बुतिक नहीं चलत फ्रीमैन फ्री में सिखलक ई बोली फ्रीमैन नागाव के चर्चा करत हुन फ्रीमैन फ्री में सिखलक ई बोली जीरो से हीरो बनलन गा गा के गीत भोजपुरी माने पहले उकरा ढेर कोई नहीं जानत लन ई गीत जब गैलन तब बहुत ही लोकप्रिय होइलन डॉक्टर हेमराज सुंदर आगे लिखले हवन सोना रंभा हरी सब घूमलन जा देश परदेश गा गा के गीत भोजपुरी रेडियो टीवी हो या पॉलिटिकल रैली सब में सुने के मिलत बा भोजपुरी बोली बोल बोल के ही भोजपुरी बोली मिलल बा हमनी के आजादी बड़ी सुंदर कविता ई डॉक्टर हेमराज सुंदर लिखले हुवन ई कविता संग्रह में उनकर एगो और कविता बा तू कौन खेत के मूली चिनुआ बोले भोजपुरी मौला बोले भोजपुरी क्रिश्चियन बोले भोजपुरी हिंदू बोले भोजपुरी सब के सब बोले भोजपुरी तू काहे बोले ले नई भोजपुरी तू कौन खेत के मूली बहुत सुंदर बा और एगो एगो भोजपुरी शनिका डॉक्टर हेमराज सुंदर के भोजपुरी कविता सब कोई सुनलक न कोई थपरी बजैलक न कोई देलक दाद बांदर का जानी भला अदरक के स्वाद हेमराज सुंदर जी के लिखल ई तीन गो कविता और साथ में एगो शनिका तो देखला कितना सुंदर सुंदर कविता बनेला भोजपुरी संगे भोजपुरी साहित्य ही के लिए बहुत मॉरिशस में ई बहुत ही लोकप्रिय बा वैसे हमनी के जो लैका लोग सर्टिफिकेट इन भोजपुरी स्टडीज करेलन जा या महात्मा गांधी संस्थान में वो लोग के दुगो मौजूद है एगो भोजपुरी साहित्य के इतिहास और एगो मॉरिशसीय भोजपुरी साहित्य कार्यक्रम के आगे बढ़ा जा एगो गीत के

0: RM3 Radio.
1: प्रेम नागा बहुत ही लोकप्रिय भोजपुरी गायक भोजपुरी में गीत गए हूँ बहुत बड़ा बात है लाली लाली कान पौतल सीमा में मकई भोजपुरी के वो खूबसूरती ई भी है जे वो दूसर शब्द के अपन शब्द बना लेवेला

0: एकरा जैसे बोला से पिजिन बोला जाए एकरा एगो धला भाषा के जब खिचड़ी बनेला तो एक दुगो शब्द चलावेला इधर जैसे प्लांतल प्लांतल शब्द जनबे करेला प्लांतल बोला प्लांटे के और ई प्लांटे शब्द से निकलल बा टू प्लांट इन अंग्रेजी में एकरा बोले जा तो भोजपुरी ओकरा प्लांतल बना देलक दम्बोर दम्बोर दम्बोर दम्बोर एगो बात बोल जाना कि मोताई के दम्बोर दम्बोर पीमा प्लांतल बा भोजपुरी बतिया नहीं पर एक में ऐसा ढेर शब्द बा जो क्रियोल भाषा से आल बा पर ओकरा भोजपुरी में मिला दे ले जा यह भाषा के खूबसूरती और धरोहर के सरोवर कार्यक्रम में जन्मे करेला हमने भोजपुरी के कोनो ना कोनो चीज देके आए ले जा तो लोग के वो कविता के रूप में हो वो कहानी के रूप में हो जैसे भी चला ई लगे हाथ एगो छोटा सुन भोजपुरी किस्सा सुन ले जा
1: एगो देश में एगो राजा रहल उ राजा के सात गो रानी रहल धन दौलत बहुत रहल ओकर एको बाल बच्चा नहीं रहल त जब आवे दान देवे सब भिकमंगा लोग के बात बोली दान दे के का करब हमरा सात गो रानी बा एको बाल बच्चा नहीं बा भीख मंगवा लोग के बड़ी चोट लगल ओकर दिल दुखागल हमनी गरीब दुखिया आदमी भीख मांग के जिही लासे तब वो भीख मंगवा वन में गल साधु के खोजे जब साधु सुनलक बात ऐसे ऐसे बा कौन दिशा में वो रजुआ बा हम रजुआ के जाय भेंट करे तब साधु आल आके जय मनैलक सब रानी लोग निकलल तब राजा के बोलन स उ आल बा ओकरा दान देवे के साधु के बाद बोले लगल कि हमरा घर में बाल बच्चा नहीं बा हम दान देके कौन ची करब तब साधु बोललक नहीं तर कासे हुआ कोनो चिंता के बात नहीं बा बाल बच्चा होई तब बोललक जा तोहर बगीचा में एगो गाछी बा आम फरल बा जा अमवा तोड़ के ले अन्य राजा जा के अमवा तोड़ के अनलक तब साधु बोललक है अमवा ले के सातो रानी के दे के कि उ बाट के खा ले सातो रानी के आम मिलल खाए की ई में छ गो रानी निमन से अमवा खैलन स अपन में बाट लेलन स छोटकी रानी के नई मिलल तब पूछलक अमुआ कहाँ बा उ लोग बोलन सा हमनी खा लेली सा लापो फेकल बा घूरा में गांव में सर्द के मौसम में आग जलावे खातिर इकट्ठा करल गल खर पत्ता सालते छोटकी रानी जाके घूरा में से उठा के बैठ के उ लापो खैलक अब साधु बाबा ता चल गल इतना बोल के अब नई आवब तोहर महल संतान चल आए तो अब भारी गोर से हो गल छोटकी रानी राजा दूर में काम काज करेला राजपात चलावेला अब सोना के और चांदी के घंटी टंगावल गल और बजावल गल जमे जब बाबा होई तो दौड़ल आए राजा हकासल प्यासल दौड़ल आए राजा कि हमर रानी के बाबा होई तब उनकर छो रनिया बहुत दुख देवे लगलन सा छोटकी रानी पूछलक कि बाबा कैसे होई उ लोग बोलन सा कि ओखरी मुसर में मुरिया ढुकैब त बाबा हो जाए छोटकी रानी के तब एगो बेटा और बेटी होल ई छो गो रानी लड़कवन के मरमिट में भर के ले जा के घूरा में फेंक दिलन सा त एगो ईंट एगो पत्थर उठा के रमास के आन के लपेट के रख दिलन सा और घंटा बजा दिलन सा अब घंटा बजल राजा दौरल आए तब बोलन सा तोहर रानी छोटकी रानी के एगो ईट पत्थर होल बा तब राजा बोले उफ ईट पत्थर होल बा ओकर सब बार मुनली कर द और ओके विदा कर द चिराए लखेदे के

हार कारो में होइजे मरई में रही। तब छोटकी रानी कौवा हकनी बन गए, चिड़ई के लेखा दे और होजे खाय उई के ले जाके देवत रहलन स। तब एगो कुम्हार और कुम्हारिन अइलन स माटी खोने। माटी खोदलन स त देखत वन स दू गो लड़का घूरा में रोवता। उठा पुठा के ले गइलन स त पोसे लगलन स। माँ बाप उ लोग हो गइलन स कुम्हार और कुम्हारिन। पोसते पोसते धरल होइलन स 7-8-9 बरिस। अब सीमा में खेलत होवन स लैकवन। तब सीमा पर है 6 रानी लोग पासे होत रहलन स। तब छोकरिया बोललक सुपली मौनी चाउर फटके। तब रनियन लोग गारी देलन स कि सुपली मौनी चाउर फटके कब। तब लैकवन बोललन स त रानी के ईंट पत्थर बियाला। उ लोग के ई बात बड़ी करा लगल। जान गइलन स कि ई लोग छोटकी रानी के लड़का हवन स। तब अब जाके खटवास फटवास लेलन स। न खात हवन स न पियत हवन स। त अब राजा पूछता का भल कोनो चीज लेबा काहे नहीं खात हव जा। हमनी नहीं चाही बोलन स। हमनी नहीं चाही। कुम्हार और कुम्हारिन लगे दू गो लड़का बा। ओकर करेजा निकाल के आन देबा त ओकर से नेहा के अच्छा हो जाब स। तब राजा कुम्हार कुम्हारिन लगे सिपाही के भेजलन। बोललक जल्दी से लड़का लेके आय के। तब लड़का लेके अइलन स। राजा बोललक हमरा चाहे दूनो लड़का। तू लोग जा जा। अब जल्लाद के बोललक जा ई लोग के लड़कवन के मार के करेजा आन के 6 रानी के दे देवे के। जल्लाद लोग लड़कवन के लेके गइलन स जान मारे। दूर नहीं ले गइलन स जहाँ राजा के तखत बा सामना सामनी में जान मारे के। जमे लौकी कहाँ मार के तोपल गइल बा। तब एगो बाएं और एगो दाएं और लड़कवन के सुतैलन स। तब दोनों के जान मार के उ लोग के करेजा लियान के देलन स। रानी लोग उ पानी से नहैलन स। त राम राम कर के उठलन स 6 रानी अच्छा हो गइलन स। त अब हुआ जहाँ लैकवन के गारल गइल बा दोनों एक एक गो फूल गइलन स। अब हुआ जहाँ लैकवन के गारल गए रहल दोनों एक एक गो फूल हो गइलन स। ऐसन महकता गमकता दूर ले रोज राजा आय ताके बैठी। तब बहुत सुंदर फूल के गमक आवी। सब सिपाही लोग के भेजलक खोजे के कि कहाँ से ई फूल के गमक आवता जाके तोड़ के आने के। अब तुरे गइलन स। अब गइलन स फूल तुरे। तब फूलवा अब दोनों बतियाता

0: ना।
1: गांव के जितना आदमी बा सब के राजा बोललक फूल आने के, जे आनी आधा राजपात ओके दे देव अब। तब सब कोई गांव में के फूल लोरे जाता। तब कुम्हार और कुम्हारिन गए।

राजा के ऐसे बुझाल कि ओकर गोर भीरी लगे अइलन स जैसे बुझाता कि गोदी में लेलक लैकवन के त लैकवन उड़ गइलन स तब चल गइलन स तब राजा बोले जा सिपाही लोग कौवा हकनी के बोला के आने की तब कौवा हकनी बोले काहे हमके बुलावत वन स त राजा बोले बा तोहरा हाली से आवे के तब राजा लगे गए त राजा ओके बोललक तोहरा हाली से आवे के जा फूलवा लोरे फूलवा गमता फूलवा लोर के ले आना अब गए कौवा हकनी फूल लोरे।

0: ना।
1: दारे पाते अपन माँ के गोदी में समा गयलन स। तब हौजे से राजा बम्बू कनात तनैलक अपन घर महल तक ले। सभा लोगन अयलक, सब आलम जुट गल और देखलक। अब सात परात के तवा बंधाल उ लोग के माँ के छाती पर कि ओकरे लैका होवन स कि नहीं। नहीं होय त जानाई, उ होय त छतिया परे ओकर दुधवा उ तवा के पेड़ से कर के लैकवन के मुंह में जाए। तब दुधवा उ पार कर के धनाधन लैकवन पीलन स। तब राजा पतियाल की ओकरे लैका होवन स। तब कौवा हकनी अपन महल में गयल। तब राजा जल्लाद के बोलक, तब छओ रानी के बार मुंड के दही उझिल के घर में से निकाल देलक। साधु के देवल फल रहल त छओ रानी मुआ दिलन स। त कहाँ मरी साधु जानता कि का होकी। जय राम जी की।

धरोहर के सरोवर कार्यक्रम सुनत हुआ जा महात्मा गांधी संस्थान और एमबीसी के मिलल जुलल सहयोग से तैयारी कार्यक्रम आज हमें अरविंद और साथ साथ में हमने के सहयोगी संजू साथ देवत हुआ त भोजपुरी के ई प्रक्रिया में आज फिर से इतलो के हमी के जो स्वर्गीय दीमराला मोहित जी के पुस्तक बाग वो शब्द कोश तैयार कले हुन हीरा मोती भोजपुरी हिंदी अंग्रेजी शब्द कोश एकर में से एक दुगो शब्द लुअब जा और आप जनबा इस शब्द के अर्थ कौन ची है त अ से ही शुरू कही ले जा अ त एकर में एगो शब्द आलबा अंकलक अंकलक अंकलक यानी कलंक लगाए के दोषी ठहराए के एक्विजेशन कभी कोई बोले अंगना जात है शौचालय जाना शौचालय संजू कभी कोई बोली अंग्रता कौन सी अर्थ निकलेगा हमार गोर अंग्रता दुखाता हाँ दुखाता अंग्रता तो टू मच पेन दुखाता ई डॉक्टर लोग के इस शब्द चाहना बोले के डॉक्टर नर्स लोग के कहे कि कब हमी के दादा दादी लोग जालन जा कबू अस्पताल में डिस्पेंसरी में तब बोली रन जाले हमार गोर अंग्रता बिता डॉक्टर बेटा जानी अंग्रत तब न जानी कुछ करी नहीं तो जी नहीं जानी गोर कुछ तो कपार में लगी दवाई दे दे को कपार की तो जरूरी है ये सब जो भोजपुरी शब्द है डॉक्टर लोग के नर्स लोग के चाहना जाने की अंग्रता ई सुन लो ही बा अंचितले में तुझ स्वीत हाँ अच्छा बोल लक अंचितले में माने झट से एकाएक सडनली अंचितले में वो होता से निकल गल हाली से निकल गल अंगोरा यानी फायरबॉल फुटबॉल में कब बोला जाना कब एगो टीम एगो दूसर टीम के ऊपर पर चार पांच को गोल डालता तो बोले जा अंगोरा फेंकदवा अंजोर शब्द जनबे कहला फजीर के बोले जा अंजोर होगल उजाला होगल लाइट अंजोरिया चांद के जो प्रकाश बा मून लाइट अंजोरिया रात वो बोले जा ऐसा रात जहां पर ही

चांद के ऊपर प्रकाश मिलला अंजूरिया अंटी अंटी यानी समाएगा विल इट एंटर एकर में और एक दो शब्द ले जा अंटकल अंटकल टू ब्लॉक या फिर अटकगल बुझ सकते बोले अटकगल ओकर गला में ओकर गला में मच्छी के कंटा अटकगल मच्छी के कंटा हो कभी राजा कंटा हो जोन हाउ ए जो नहीं खा जाला क्रियोली में क्या बोले जाओ करा हाँ ओकर पीकां मच्छी के पीकां मच्छी के कंटा गला में अटक गल फिर एगो और शब्द ले जा अनबन अनबन बा यानी दूजना में अनबन मान एक दूजना के बात नहीं मानत हो जा अन के बन अन के बन कोई के नाम हम अन के बन कब कोई इधर उधर बचियाला तो ओकर नाम डाल दिया जा अन के बन हम जानी रहे जना के ओकर नाम अन के बन अभी सुनत हुई तो ओकरा नमस्ते बोल दिला प्यार से बोलन जा ओकरा प्यार से अंड भंड कर दिलक यानी तहस नहस अन भन या फिर ई भी बोला वो अन भन बचाता अन भन बचाता अन भन माने वो कोनो मतलब नहीं नॉनसेंस बचाता अन भन बचाता इस शब्द सुने अंदर अंदर बोले घर के अंदर बाऊ तो आरो को अर्थ अंदर दूसर का अर्थ जाने ला अंदर एगो अंदर तहा जिसे घर के अंदर बा हाँ जो बाहर के उकर उका विलोम है अंदर तो औरो को भोजपुरी में उको अर्थ अंदर के अंदर महकता जब कोनो चीज सर जला तो कैसे महकेला अंदर अंदर महकेला अंदर हाँ दुर्गंध बैड स्मेल अवे और अंतराल अंतराल यानी मध्यांतर इंटरवल कोई बेला वो अंटी करता अंटी यानी जानबूझ के कुछ करता अंधरा अंधरा हाँ अंधरा एगो जो न जो कि नहीं रोकेला अंधार तो जन भी कहला अंधार जब रात के अंधकार होला तो अंधार अंधुआ अंधुआ हरबरी में होला हरबरी में होना टेक क्विकली अंधेरिया अंधेरिया अंधेरिया अंधेरिया लुग अर्थ है व्यर्थ विदाउट रीजन या फिर अंधेरिया रात ऐसे अकज बकज अकज बकज एकरा दुगो अर्थ में कब्जा ले जे कोई बोली अकज बकज नहीं खाइए जो चीज आई खाते नहीं जाइए इधर उधर की चीजें अकज बकज या फिर भी कब्जा बोले अकज बकज बचाता नहीं था कुछ बचाता अकज बकज बचाता अगबका गई ले अगबका गई ले यानी नहीं जाना था कुछ हो नई आशा करत हल कि ओकर संगे ई हो तो अगबका गल तनिको नहीं जानता कुछ करी और वह अकेले दुकेले अकेले दुकेले माने अपने अखा अखा अखा मॉरिशस जाने लंजा कि धरोहर के सरोवर कार्यक्रम के तैयार करे में हमने के संजू भाई सहायता देवे लंजा अखा होल अखियान अखियान निरखना टू एडमायर अगरम बगरम है हम सुन ले हैं

चालो के ददालो के शब्द के प्रयोग करे, अग्रम बग्रम तरह तरह के, अग्रम बग्रम के खाए के हो जा रखल बा, अग्रम बग्रम के अग्रम बग्रम के बुला ले बा। चौथारी में बोले बोले बीस बीस जना आई तो ऊ एक बीस आदमी आन दिलक अग्रम बग्रम के लेके चला। अंग्राता अंग्राता अंग्रता अंग्रता यानी बहुत दुलार से बिगाड़ना, अंग्राता। अगम जानी इधर कोई है, अगम जानी फोटेल जो नागे से बोले बोलन जहाई होई हाउ होई अगम जानी। अगाड़ी अगाड़ी आगे आगे अग्याल बा, उत अग्याल बा आग उगलता, अग्याल बा माने टू बी एंग्री क्रोधित होना। अगोरे की अगोरे देखे के साथ बैठना। अटक गल अटक गए ये बोली सा नहीं अटक गए। अट अट करता अट अट अट अट ये बहुत प्रयोग हो भाई जब धला कुछ नहीं जान कुछ करब तो अट अट अट अट नहीं कर सीधे काम काम पे आओ वो कर संगे अट अट नहीं कर लग। फिर अदब से यानी इज्जत से अदब से अधीन में, अधीन में यानी वश में उकर अधीन में चलालबा, उ छोकरा उ छोकरी के अधीन में चलालबा, अंडर वन्स थंब। अन के कन बना देलक, अन के कन बना देलक यानी उकरा बिगाड़ देलक। तेकरे संगे धरोहर के सरोवर कार्यक्रम के हेजा परी पूरा करब जा, सब कोई के धन्यवाद देव जा जितना कोई हमके कार्यक्रम सुनला जा और सीखला जा बहुत कुछ। हमने के सहयोगी संजू के धन्यवाद। फिर मिलब जाए गो नवा कार्यक्रम लेके धरोहर के सरोवर, तबले भोजपुरी बोलते रहिया, भोजपुरी सीखते रहिया। RM3 रेडियो।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमेरा अकबर अली। आपको नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार और आदाब। इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन एक्ट की धारा 39 के तहत आज सत्य व्यास फोगू ने इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन के नए अध्यक्ष की हैसियत से गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल के सामने स्टेट हाउस रेजी में शपथ ली है। प्रधानमंत्री और विपक्ष नेता की सलाह पर उनकी नियुक्ति की गई। उनकी कार्यावधि 4 सालों की रहेगी। मोजाम्बिक से बैलों के आयात के सिलसिले में मिशन अधिकारी दक्षिण अफ्रीका की प्रयोगशाला के गहरे अध्ययन के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। एक सख्त स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के तहत गए शनिवार को बैल मॉरिशस पहुंचे। उन्हें लाशुमिया में निगरानी में रखा गया। कल एक प्रेस सम्मेलन के दौरान कृषि उद्योग मंत्री डॉ अरविंद बुलेल ने दोबारा पुष्टि की कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और पशुओं की भलाई के वास्ते स्वास्थ्य कदमों पर बारीकी से अमल किया जा रहा है। मुसन्निफ यानी लेखक मुंशी प्रेमचंद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हिंदी स्पीकिंग यूनियन ने प्रेमचंद दिवस मनाया। मौके पर सेयर्ज कॉन्स्टेंटिन थिएटर वाकवा में मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी बूढ़ी काकी को पेश किया गया। अवसर पर प्रेमचंद के परस्तार और हिंदी प्रेमी उपस्थित थे। विदेश में चिली में मूसलाधार बारिश की वजह से कम 13 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय इलाके में जोरदार सैलाब भी उतर आया है। सड़कों को बंद किया गया। कई घर तबाहकुन हैं। राष्ट्रपति जोसे अंतोनियो कास्ते ने प्रभावित इलाकों में आपात स्थिति की घोषणा की है। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। रॉयल रोड अभियाजुपस्ट में 38 साल के 38 ईयर्स ओल्ड श्री नितिन चौधरी जो नीतीश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 10 बजे इनके पिता धर्मानंद चौधरी के घर रॉयल रोड अभियाजुपस्ट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोंगाबू अभियाजुपस्ट की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है।
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: जुलाई बुधवार का दिन। आज की चर्चा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं हूं रत्ना, आप पहुंची हूं आज के इस कार्यक्रम को लेकर। बुधवार के दिन हम लेकर आते हैं एक स्वास्थ्य की ऐसी समस्या जो आए दिन हम में से कईयों को ये भुगतना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, 28 जुलाई को मनाया जाएगा वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। इसी पर आधारित आज का ये कार्यक्रम। और आज हमारे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय से डॉक्टर त्रिलोक गुलाब जी, जो हमारे साथ जुड़ेंगे और हमें इस विषय पर ज़्यादा जानकारी देंगे। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर गुलाब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार आप सभी लोगों को।
0: तो आइए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर आधारित इस कार्यक्रम के साथ। और डॉक्टर जी, हम पहले तो यही जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो 28 जुलाई को मनाया जाएगा, तो ये क्यों मनाया जाता है और इसका विशेष महत्व क्या है?
1: जैसे सब लोग जानते हैं, हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। तो उस दिन एक अमेरिकन साइंटिस्ट जिसका नाम था बारूच ब्लूमबर्ग, उसका जन्मदिन हुआ था। ये वही आदमी है जिसने हेपेटाइटिस को डिस्कवर किया था और उसके वैक्सीन के क्रिएशन में बहुत योगदान था उसका। तो उस दिन के उसके जन्मदिन मनाने के अवसर पर तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस दिन
0: मनाया जाता है। तो हाँ जी,
1: इस दिन का उद्देश्य है लोगों में हेपेटाइटिस के प्रति जागरूकता बढ़ाना, समय पर जांच करवाना, वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना और हेपेटाइटिस से होने वाली मौत को

0: कम करना. मॉरिशस में अभी एक कैंपेन चल रहा है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के सहयोग से हो रहा है. उसका जो है हेपेटाइटिस सी को 2030 तक एलिमिनेशन प्रोग्राम चल रहा है. तो हेपेटाइटिस सी एलिमिनेशन प्रोग्राम जो है वो अभी चल रहा है हमारे चार पांचों हॉस्पिटल में. तो इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का बहुत सहयोग हो रहा है.
1: बहुत ही बड़ा योगदान है. ओके, तो यानी ऐसा एक माना जाता है कि 2030 तक उसे इराडिकेट
0: करना.
1: तो बिल्कुल ये एक बहुत ही बड़ा योगदान है और बहुत ही बड़ा कार्य है जिसमें हमारा बिल्कुल हमारी स्वास्थ्य मंत्रालय जुड़ी हुई है. हमारे डॉक्टर्स, हमारे विशेषज्ञ इस पर बहुत कार्य कर रहे हैं. और बिल्कुल चलिए जानते हैं हेपेटाइटिस जो है वो कौन सा रोग है, किस अंग से जुड़ा हुआ रोग है और इसका मतलब क्या है.
0: हेपेटाइटिस का मतलब है लीवर में सूजन होना, इन्फ्लेमेशन होना. इसके पांच मुख्य प्रकार होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई. इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सब इम्पोर्टेंट हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो खतरनाक होते हैं वो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी होते हैं.
1: और इसके कारण क्यों है, क्या है डॉक्टर जी?
0: इसका कारण है क्योंकि ये दोनों क्रॉनिक हो जाते हैं, उसके लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होना चाहिए. जैसे हेपेटाइटिस बी होता है, उसे जो लोग पीड़ित होते हैं उन्हें उम्र भर एक मेडिकेशन लेना चाहिए हर रोज़. और जो हेपेटाइटिस सी है, अभी जैसे मैंने बताया पहले, उसका एलिमिनेशन प्रोग्राम चल रहा है तो इसका अभी इलाज हो रहा है.
1: अच्छा.
0: लेकिन कुछ लोग हैं जो उनके कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं.
1: अच्छा.
0: तो उन्हें ज़्यादातर ये बीमारी जब लगते हैं तो हमें बाद में पता चलता है. तो कॉम्प्लिकेशन से पता चलता है,
1: मतलब वो बहुत धीरे धीरे करते हुए
0: बढ़ता है.
1: तो डॉक्टर जी, जब शुरुआत में हेपेटाइटिस होता है तो उसके लक्षण क्या है, पता कैसे चलता है कि एक व्यक्ति को हेपेटाइटिस हुआ है?
0: हेपेटाइटिस भी एक इसे साइलेंट किलर करते हैं.
1: अच्छा.
0: क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके लक्षण बहुत कम होते हैं.
1: अच्छा.
0: पता चलता है जब कॉम्प्लिकेशन
1: बढ़ने लगते हैं.
0: तो बीमारी होती है जैसे फैटीग होता है, पुआ पेटाइट होता है, फीवर होता है जो अनएक्सप्लेन होता है. फीवर होता है, आता है, जाता है, एक हफ्ते में 2-3 बार आता है. आप डॉक्टर दिखाते हैं, वो कहते हैं जुकाम है, कुछ है, दवाई देते हैं लेकिन कम नहीं होता है. जांच करने पर तब पता चलता है कि हेपेटाइटिस हो जाता है,
1: यानी कंटिन्यूअसली वो बढ़ता जाता
0: और एक,
1: है.
0: हाँ, और एक विशेष जो साइंस होता है वो है आंखों का पीलापन होना, जिसे जॉन्डिस कहते हैं. तो ये लोग जब जॉन्डिस होते हैं तो पता चलता है कि हाँ, लीवर में अभी सूजन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है.
1: अच्छा.
0: तो देखना चाहिए किस प्रकार, क्यों हो रहा है. तो ऐसे चलता है.
1: ओके. और डॉक्टर जी, यहाँ मॉरिशस में सबसे ज्यादा अधिक कौन से हेपेटाइटिस पाए जाते हैं?
0: मॉरिशस में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ज्यादा पाया जाता है. तो अगर स्टैटिस्टिक करें तो मॉरिशस में लगभग 10,000 से 15,000 लोगों को ये बीमारी होती है.
1: 10,000 से 15,000
0: होते हैं. और जो लोग होते हैं जो हेपेटाइटिस बी होते हैं पेशेंट, उनको जैसे मैंने बताया था पहले, उनको उम्र भर ये एक दवाई लेना चाहिए. कुछ लोग होते हैं जो बीमारी को जानते हैं, सिवेरिटी को जानते हैं और समझ जाते हैं कि उनको दवाई लेना पड़ेगा क्योंकि उसका ताकि कॉम्प्लिकेशन ना हो. लेकिन कुछ लोग होते हैं जो शुरू करते हैं लेकिन बाद में छोड़ देते हैं. हाँ, अभी जब से मैंने शुरू में बताया था हेपेटाइटिस सी में जो कैंपेन चल रहा है, तो हम जगह जगह जाते हैं, उसका अवेयरनेस करते हैं, बताते हैं लोगों को जांच करो. ज़्यादातर IVDA में ये पाया जाता है. तो हम क्या कहते हैं, हम जाते हैं लोगों को बताते हैं कि टेस्ट करो. अभी रैपिड टेस्ट भी हो रहा है.
1: Okay.
0: हम मेथाडोन सेंटर्स में जाते हैं, हम प्रिजन वार्ड में जाते हैं, हम डिटेंशन सेल में जाते हैं, वहाँ पर भी जांच कराते हैं।
1: तो एक तरह से ये एक तरह से नियंत्रण लाने के लिए कि ये फैले नहीं, ये जैसे रुक जाए बीच में ही, और जैसे आपने बताया कि ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है, तो बिल्कुल डॉक्टर जी हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि हेपेटाइटिस का जो रोग है वो फैलता कैसे है।
0: ये संक्रमित खून, असुरक्षित शारीरिक संबंध, संक्रमित सुई, और जो लोग जिन लोगों ने 1997 से पहले खून लगाया था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया था, ये माँ से बच्चों तक भी हो सकता है।
1: मतलब माँ से ट्रांसमिट होता
0: है, पीड़ित है तो बच्चों में भी जा सकता है,
1: मतलब ये ट्रांसमिट होता है,
0: ट्रांसमिट होता है।
1: ओके, तो ये एक तरह से देखा जाए तो काफी खतरनाक भी हो सकता है। तो डॉक्टर जी यहाँ पर ये भी मैं पूछना चाहूंगी, आजकल हम मॉडर्नाइजेशन के साथ और आजकल ट्रेंड है टैटू लगाने का, और जैसे इंजेक्ट करते हैं कुछ लोग जो नशाखोरी करते हैं वे लोग सुइयों का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये भी एक तरह से ये रोग फैलाने में कोई
0: ये रोग, अगर सुई या टैटू के उपकरण संक्रमित हों या असुरक्षित शारीरिक संबंध बनाने जाएं तो ये हो सकते हैं।
1: अच्छा,
0: तो अगर मैं जैसे मैं बताऊंगा, अगर एक आदमी जाता है, मैंने पहले बताया था कि ये रोग पता नहीं चलता है अगर जांच नहीं करो, अगर वो एक आदमी जो पहले से इन्फेक्टेड था वो गया वहाँ पर, उन्होंने टैटू किया लेकिन उसको पता नहीं था कि वो संक्रमित है, तो अगर ये अच्छी तरह उसका सुई जो इस्तेमाल किया अगर फिर से एक दूसरे आदमी पर इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि वो पीड़ित हो जाए,
1: मतलब उनको लग सके, उनको ट्रांसमिट हो सके। यानी मतलब जो लोग टैटू करवाने जाते हैं ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ करवाते हैं, और जैसे जो टैटू करते हैं, जो लोग टैटू करते हैं उन लोगों को भी इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब वे किसी का टैटू करते हैं। तो डॉक्टर जी क्या ऐसा हो सकता है कि जो लोग टैटू करते हैं या जिनके स्टूडियोज़ हैं टैटू के लिए, तो क्या उनको या जो लोग आते हैं उनको पूछना ज़रूरी हो जाता है?
0: पूछना ज़रूरी है, और ध्यान दें कि वो जब टैटू लगा रहे हैं तो वो सुई उसका जो जब तोड़ते हैं
1: है, हाँ
0: जब तोड़ते हैं जो देखना चाहिए कि वो नई सुई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो स्टेराइज करने के बाद जो सुई वो ठीक नहीं
1: होते, वो कई बार उसमें भी
0: स्टेराइजेशन जो है वो 100%
1: निकाल नहीं सकते, मतलब उसके माइक्रोब जो है
0: जो है वो 30 या 1 घंटे तक स्टेराइज करना चाहिए, लेकिन जो लोग करते हैं वहाँ तो वो अच्छी तरह से
1: हो सकता है कि अगर कहीं पर भी आपने ढील दे दी तो ये किसी और को लग सकता है। और बिल्कुल जो इंसान को हेपेटाइटिस की बीमारी नहीं है पर टैटू लगवाया तो चांसेस ज्यादा है कि आपको हेपेटाइटिस हो सकता है, अगर उससे पहले अगर किसी को हेपेटाइटिस रहा हो वही सुई का इस्तेमाल अगर आप पर किया जाए तो हो सकता है। और जैसे डॉक्टर जी ने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि सिम्टम्स ना भी दिखाई दे, वो बहुत धीरे धीरे डेवलप होते हैं, और अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर जी ने बताया कि साइलेंट किलर है, तो डॉक्टर जी हेपेटाइटिस सी को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है?
0: साइलेंट किलर इसे कहते हैं क्योंकि जब पता चलता है तो बहुत देर हो जाता है।
1: अच्छा।
0: ये 5 या 10 साल पहले हो चुके होते हैं,
1: मतलब इतने टाइम के बाद आपको पता चलता है।
0: तो कॉम्प्लिकेशन से जाना जाता है।
1: ओके।
0: उसके बाद जांच किया, अगर एक आदमी हॉस्पिटल में आया तो उसका जो सर्जरी चल रहा है तो अभी टेस्ट किया फिर पता चलता है उसको हेपेटाइटिस सी है, तो अभी उसका वायरल लोड सब करना अभी शुरू करेंगे उसका ट्रीटमेंट तो देर हो जाता है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो हेमाटेमेसिस के भी आते हैं जो उल्टी करते हैं खून के, तो उसके बाद हम करते हैं गास्ट्रोस्कोपी करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एसोफेजियल वायरसेस हैं, क्यों है अभी जांच लगाते हैं तो पता चलता है हाँ उसका हेपेटाइटिस सी हो रहा
1: तो
0: है,
1: जैसे वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर आ जाते हैं।
0: तो कुछ लोग हैं जो लिवर सिरोसिस हो जाते हैं, लिवर फेलियर हो जाते हैं, लिवर कैंसर भी हो जाते हैं, तो उसके बाद पता चलता है कि उसका जो प्राइमरी था वो हेपेटाइटिस सी था।
1: तो
0: इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर कुछ है आपको कुछ संकेत है, आपको डाउट है, तो आप आए, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जांच कराएं, कुछ
1: कोई भी डाउट है तो आप उसे ढील ना दें, बिल्कुल,
0: क्योंकि जब जैसे कहते हैं तो ज़्यादा अच्छा है कि अगर शुरुआत में आपको दवाई देंगे ये ठीक हो सकते हैं।

0: ठीक नहीं होंगे लेकिन कंटेन हो सकता है,
1: कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, तो जैसे डॉक्टर जी आप बता रहे हो तो हम ये समझ सकते हैं कि हेपेटाइटिस को अगर हमने इग्नोर किया या बहुत लेट पता चला तो क्या ये जानलेवा भी हो सकता है?
0: जानलेवा है ज्यादातर, क्योंकि जब लीवर सिरोसिस हो जाता है ना, सूजन पहले होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, आप दवाई नहीं लेंगे तो ये वो जो सेल्स हैं लीवर में वो मर जाते हैं, तो लीवर सिरोसिस हो जाता है। लीवर सिरोसिस के बाद कुछ तो बदल जाते हैं, वो लीवर कैंसर में
1: तब्दील हो जाते हैं। तो डॉक्टर जी, जब इन्फ्लेमेशन, मान लीजिए इन्फ्लेमेशन अगर आपको है तो क्या पेन फील होता है? मतलब मान लीजिए अगर किसी को लिवर पर सूजन आ गई है तो क्या पेन फील होता है इनिशियल स्टेज पर?
0: पेन फील हो सकता है लेकिन ज़्यादातर लोगों में पेन नहीं होता। पेन जब तब फील होगा जब ये लीवर जो है वो बड़ा हो जाता है।
1: अच्छा,
0: तो लीवर हेपाटोमेगाली हो जाता है तब वो फील करेगा।
1: ओके।
0: लेकिन अगर लीवर हेपाटोमेगाली नहीं होगा तो उसमें फील नहीं होगा।
1: अच्छा।
0: कुछ होगा लेकिन वो गास्ट्राइटिस बताएगा, वो बताएगा कि पेट में कुछ दर्द है, वो जाएगा डॉक्टर के पास, थोड़ा सा दवाई लेके ठीक हो जाएगा। पैरासिटामोल भी ले सकते हैं वो,
1: लेकिन वो डॉक्टर को दिखाने के बाद आप ले। और डॉक्टर जी मान लीजिए अगर किसी को सूजन है, दैट इज इनिशियल स्टेज पर सूजन है और ये अभी बहुत एडवांस नहीं पहुंचा है या बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं हुआ है तो क्या
0: इसे कंट्रोल कर सकते हैं? अभी मिनिस्ट्री में बहुत सी दवाई है, हमने बहुत बहुत इफोर्ट किया है मिनिस्ट्री ने पहले से भी, लेकिन 2019 से एक एसोसिएशन किया था एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, तो यहाँ में फ्री ऑफ चार्ज हेपेटाइटिस सी का जो मेडिकेशन है हमें मिला है, उसका 5,000 डोज मिला था। लेकिन आपको बताएं ये 2019 में हुआ था, अभी हम 2026 बता रहे हैं, 5,000 डोज मिला था अभी। स्टैटिस्टिक तो सिर्फ 4,000 लोग का हेपेटाइटिस सी इरेडिकेट हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोग हैं। हम बताते हैं आप आओ मेडिकेशन लो, वो आते हैं मेडिकेशन लेते हैं फिर
1: बीच में छोड़ देते हैं तो जो हेल्दी नहीं है,
0: बिल्कुल।
1: तो डॉक्टर जी अभी थोड़ी देर पहले आप ये भी बता रहे थे कि माँ से भी ये ट्रांसमिट होता है बच्चे में, तो कैसे पता चले कि, पहले तो जैसे आप बता रहे हो कि डिटेक्ट करना ही ये सबसे बड़ा चैलेंज है, तो अगर माँ मान लीजिए प्रेगनेंसी से गुजर रही है तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें पता चले कि माँ को हेपेटाइटिस हुआ है?
0: अभी हर जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं तो शुरुआत में जब प्रेग्नेंट होते हैं तो हम जाते हैं एरिया हेल्थ सेंटर में जाते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं, तो हम हेपेटाइटिस प्रोफाइल कर देते हैं।
1: अच्छा।
0: तो हेपेटाइटिस प्रोफाइल करके देखते हैं हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, कुछ है, अगर कुछ है तो दवाई देने शुरू कर देते हैं। और ये जो है मैंने बताया था ये माँ से बच्चे तक फैलता है।
1: अच्छा।
0: तो अगर हेपेटाइटिस बी होगा तो अगर बच्चे जन्म लेता है तो 24 घंटे से के अंदर में उसको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगाना चाहिए, और कुछ बच्चों को हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन भी देना चाहिए। लेकिन दुख की बात ये है भी है कि जो बच्चे हेपेटाइटिस बी माँ से जन्म लेते हैं उनका ये बीमारी चल सकता है, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी
1: लाइफ लॉन्ग हो सकता है,
0: तो उन्हें भी दवाई लेना पड़ेगा।
1: मतलब लाइफ लॉन्ग उनको मेडिकेशन
0: लेना पड़ेगा।
1: okay.
0: ये एक सिर्फ एक पिल है, वन पर डे, लेकिन उन्हें भी लेना पड़ेगा।
1: तो जो इन्फेंट्स होते हैं, जो नवजात शिशु यानी जो अभी अभी पैदा हुए हैं, उनको ये दवाई कैसे दी जाती है?
0: वैक्सीन के माध्यम से। और एक है इम्यूनोग्लोबुलिन जो इन्फ्यूजन लगाते हैं, इंजेक्शन करते हैं। और मैं जैसे मैंने बताया इसलिए कि हर गर्भवती माँ को ये जांच करना चाहिए हेपेटाइटिस है कि नहीं है, अगर है तो ये फैटालिटी नहीं है, अभी दवाई है हम दे रहे हैं, आप दवाई लो, आप जांच करो, दवाई लो, ठीक हो जाएंगे, बच्चे के रिस्क कम हो जाएगा।
1: डॉक्टर जी ऐसा भी क्या हो सकता है कि जो गर्भवती माँ है जब वो गर्भवती हो चुकी यानी अभी बच्चा पल रहा है और माँ को हेपेटाइटिस काफ़ी देर बाद हुआ यानी 9 महीने के अंतराल, तो क्या ऐसा है, हो सकता है कि बच्चे को ना लगे लेकिन माँ को है? ऐसा भी हो सकता है।
0: लेकिन इसीलिए जब बच्चे अगर बाद में

0: हुआ तो कोई नहीं, तो बच्चे जब पैदा हुआ तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो हम कर देते हैं, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगाते हैं, और वो जो इम्यूनोग्लोबुलिन मैंने बताया वो भी अगर ज़रूरत पड़ा तो वो लिवर फंक्शन टेस्ट पर डिपेंड करता है जो है, तो उन्हें भी दे देते हैं ताकि बच्चे सुरक्षित हो जाएं।
1: और क्या ऐसा भी हो सकता है डॉक्टर जी कि जन्म के टाइम पर बच्चे को नहीं था पर कुछ समय के बाद?
0: नहीं था तो नहीं होगा,
1: नहीं होगा,
0: नहीं होगा,
1: okay.
0: बाद में नहीं,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि जो जांच करते हैं वो दिख जाते हैं है
1: उसमें है या नहीं है। तो जी हाँ, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, और जैसे डॉक्टर ने बताया हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो अगर समय पर उसका डिटेक्शन ना किया जाए, समय पर उसको दवाइयाँ ना मिले, तो हो सकता है कि ये सीवियरिटी जो है वो धीरे धीरे करते हुए बढ़ती जाए, और ये भी हो सकता है कि ये एसिम्टोमेटिक यानी आपको उसके कोई लक्षण नज़र नहीं आते, अगर लक्षण नज़र आते भी हैं तो 5 या 10 साल के बाद, यानी वो जब तक वो बहुत ज़्यादा खतरे के जोन में चला जाता है तब आपको नज़र आता है, और ये जानलेवा भी हो सकता है। इसीलिए जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ऐसी बहुत सारी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है जहां पर आप अपने हेल्थ के चेकअप को जारी रख सके, जान सके, और अगर कहीं पर भी आपको ये लक्षण नज़र आते हैं तो अगर समय पर इसका जांच करके इसकी दवाइयां या इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी जाए तो हो सकता है कि ये बीच में ही इस बीमारी को हम रोक सकें। और जैसे 2030 तक मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा और साथ ही साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बीड़ा उठाया है कि इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दें, तो चलिए इसमें हमारा भी बहुत बड़ा योगदान होना बहुत आवश्यक है, और इसी पर आधारित आज का ये कार्यक्रम हमने रखा है। हमारे साथ बने रहें, इस कार्यक्रम को जारी रखते हैं एक गीत के बाद।

0: जी हाँ, आज की चर्चा कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर, और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर गुलाब, जो बात कर रहे हैं इसी पर। और बिल्कुल ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में उठते हैं कि हेपेटाइटिस कैसे होता है, हमें कहाँ ट्रीटमेंट करानी चाहिए, ये डायग्नोस कैसे किया जाता है, क्या इसका इलाज लाइफ लॉन्ग चलता है, क्या ये खतरनाक हो सकता है, ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में इस वक्त आ रहे हैं। और बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम में हम ज़रूर जानेंगे डॉक्टर गुलाब से कि रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, खासकर जब हेपेटाइटिस होना होता है तो किन किन लोगों को इसके चांसेस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर जी से।
1: रिस्क फैक्टर ऐसे होते हैं कि असुरक्षित शारीरिक संबंध, संक्रमित सुई का इस्तेमाल करना, बिना जांच वाला ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो पहले होते थे 1997 से पहले, टैटू लगाना जैसे मैंने बताया था, हेल्थ केयर वर्कर्स में नीडल प्रिक इंजरी होना, और संक्रमित माँ से जन्म लेने वाले बच्चों पर ये रिस्क फैक्टर हो सकते हैं।
0: डॉक्टर जी, मान लीजिए अगर किसी को जॉन्डिस हुआ है, किसी को जॉन्डिस यानी आंखों में पीलापन आ जाना, पीलिया जिसे हम कहते हैं, क्या ये हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो सकता है?
1: जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि अगर हर आदमी को जो जॉन्डिस से सफर कर रहे हैं उसको हेपेटाइटिस हो। उसका अच्छी तरह से जांच करना चाहिए। कुछ तो है कि ऑब्स्ट्रक्टिव हो जाते हैं, जो गॉल स्टोन होते हैं, जो गॉल ब्लैडर का बीमारी होते हैं, कोलेसिस्टाइटिस, उनसे जॉन्डिस हो जाते हैं। जॉन्डिस का जो है उसके हजार कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक हेपेटाइटिस सी होते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ लोगों को कि अगर आपको जॉन्डिस है, ये जरूरी नहीं है कि आपको हेपेटाइटिस सी हो, ये एक वजह हो सकता है।
0: ओके, और जैसे आजकल देखा गया है सोसाइटी में फैटी लिवर, जैसे फैटी लिवर ये शब्द अभी बहुत टाइम से हम सुनने में आ रहा है कि लोगों को फैटी लिवर हो रहा है, तो क्या डॉक्टर फैटी लिवर के कारण भी हेपेटाइटिस हो सकता है?
1: फैटी लिवर के कारण हेपेटाइटिस हो सकता है, लेकिन जो है वो फैटी लिवर वो एक प्री डायबिटीज डिस्पोजिशन होता है, तो वो एक रिस्क फैक्टर होता है। वो अगर एक आदमी को मान लो फैटी लिवर है, उसको हेपेटाइटिस हो जाता है, तो ये बीमारी एक्सेलरेट हो जाता है।
0: अच्छा,
1: तो
0: मतलब स्पीड अप
1: हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं जो आदमी डायबिटीज से सफ़र कर रहे हैं, उनको फैटी लिवर है, तो अगर उन्हें अनफॉर्चुनेटली ये हेपेटाइटिस हो जाता है या हेपेटाइटिस के बीमारी के लक्षण हैं, तो उन्हें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो दवाई लेना, अच्छी तरह से जांच करना, और हर जैसे उनके फिजिशियन या गैस्ट्रोएंटरिस्ट को दिखाना, ताकि वो पूरी तरह से सुरक्षित हो जाए।
0: ओके, और डॉक्टर जी जब हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है?
1: डायग्नोसिस जो होते हैं, हम बेसिक टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट जो करते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, और खून के माध्यम से जांच करते हैं, और उसके एक है जो हेपेटाइटिस वायरस को डिटेक्ट करता है, उसे यूजुअली हेपेटाइटिस प्रोफाइल कहते हैं। लेकिन इसमें स्पेसिफिसिटी होता है, क्योंकि इसमें हेपेटाइटिस ए को जांच करते हैं, हेपेटाइटिस बी को जांच करते हैं, हेपेटाइटिस सी को अलग अलग तरह से
0: जांच किया जाता है।
1: ये सेंट्रल लेबोरेटरी में होता है, विक्टोरिया हॉस्पिटल में। और जो है अभी अगर आप सुबह को खून दें तो शाम तक पता चल सकता है,
0: एक ही दिन के अंदर आपको पता चल जाता है, रिजल्ट आ जाता है।
1: और जैसे मैंने बताया था पहले, हम रैपिड टेस्ट भी कर रहे हैं मेथाडोन यूजर्स के लिए
0: okay.
1: और जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उन्हें हम जांच करते हैं प्रिजन वार्ड में, जहाँ पर डिटेंशन वार्ड में,
0: वहाँ पर भी टेस्ट किए जाते हैं।
1: लेकिन ये कंफर्मेटरी, ये

0: रैपिड टेस्ट करे, अगर डिटेक्ट हो जाता है तो उसका कंफर्मेटरी टेस्ट भी करना पड़ेगा ताकि हम
1: ट्रीटमेंट शुरू करें। तो डॉक्टर जी, मान लीजिए अगर किसी को पता चल गया, ओके टेस्ट कर लिए, पता चल गया कि आपको हेपेटाइटिस है, तो किस डॉक्टर के पास हमें जाना चाहिए?
0: उसको अभी मैं पांचों हॉस्पिटल में ये सुविधा है, हेपेटाइटिस क्लिनिक अभी चल रहा है पांचों हॉस्पिटल में। तो और जो कहते हैं एक जो बुलुक्स हैं जो और जो DCCI कहते हैं उस जगह पर भी सेंटर हैं जहां पर दवाई देते हैं। तो लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर पता चला तो अच्छा है, हमने डिटेक्ट किया, अभी ये हो गया, तो अभी दूसरा परन चल रहा है, तो उसको अभी दवाई लेना चाहिए। दवाई लोगे तो अगर हेपेटाइटिस बी है तो उसका एक ही पिल होगा तो ये लाइफ लॉन्ग चलेगा। उसका अगर हेपेटाइटिस बी सी होगा तो उसका भी दवाई ले रहे दे रहे हैं। उसका जो है अभी मैंने बताया एक दवाई है जो 3 महीने तक लेना चाहिए, हर रोज़ एक दवाई एक गोली 3 महीने के लिए, और ये 98% तक इरेडिकेट हो जाता है और कॉम्प्लिकेशन का जो है
1: चांसेस
0: कम हो जाते हैं।
1: तो जैसे डॉक्टर जी आप बता रहे हो कि हेपेटाइटिस बी और सी कुछ खतरे के लेवल पर आते हैं, अगर मान लीजिए किसी को हेपेटाइटिस ए हुआ है,
0: हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो ज्यादातर सिम्टोमेटिक हो जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट होता है, दवाई देते हैं, वो ज्यादातर 1-2 महीने के बाद
1: ठीक हो जाते हैं, तो उसकी दवाइयां फिर पूरी लाइफ लॉन्ग लेने की जरूरत
0: लेना चाहिए, अगर ठीक हुआ तो हो जाए।
1: और मान लीजिए अगर किसी को हेपेटाइटिस ए हुआ था, ट्रीटमेंट हो चुकी है, ठीक हो चुका है, फ्यूचर में क्या उसे फिर से वो लगने के चांसेस रहते हैं?
0: हाँ, अगर सुरक्षा
1: बिल्कुल ये जो सारी चीजें हैं
0: नहीं लेगा तो हो सकता है,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि
1: बिल्कुल।
0: एक बार हुआ तो हो सकता है
1: अवश्य। और जैसे आप बता रहे थे, तो क्या ये नॉर्मल जो जनरल डॉक्टर होते हैं वही उसे ट्रीट करते हैं या उसके कोई स्पेशलाइज डॉक्टर रहते हैं?
0: ज्यादातर फिजिशियन को दिखाना पड़ता है जो इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट होते हैं और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को दिखाते हैं।
1: ओके, क्योंकि वो लोग उसकी
0: क्योंकि, हाँ, क्योंकि जब दवाई देंगे तो उससे पहले उसका पूरा जांच करना चाहिए, उसका अल्ट्रासाउंड लीवर देखेंगे, उसका स्टेजिंग करेंगे, सिरोजिस है या क्या है, उसका जो फिब्रोस्कान करना है अगर करेंगे, उसका जो है हेपेटाइटिस वायरल लोड देखना पड़ेगा, तो सब देख के फिर अच्छी तरह से शुरू करें और उसको सब सलाह दे के उसको बताना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर दवाई लो जो प्रिकॉशन। हाँ, जो प्रिकॉशन।
1: तो डॉक्टर जी मान लीजिए अगर कोई पर्सनली जैसे मतलब कोई प्राइवेट लेबोरेटरी में जाकर जांच करवाते हैं तो कौन कौन से उसमें टेस्ट जरूरी हो जाते हैं?
0: जो टेस्ट करते हैं तो वो लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, वो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन होता है, वो एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी होते हैं, वो एंटी हेपेटाइटिस बी को एंटीबॉडी होते हैं, वो हेपेटाइटिस बी वायरस का DNA करते हैं, वो हेपेटाइटिस बी का वायरल लोड भी करते हैं, और अल्ट्रासाउंड जैसे मैंने कहा अल्ट्रासाउंड लीवर का अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, और अगर ज़रूरत पड़ा तो फिब्रोस्कान। मैं बताऊंगा क्योंकि एंटीजन क्या दिखाता है, एंटीजन दिखाता है अगर इन्फेक्शन हुआ, सरफेस एंटीबॉडी वो बताता है कि अगर वैक्सीनेशन किया या इम्यूनिटी है उस हेपेटाइटिस के
1: लिए उसमें, यानी ये सारे टेस्ट में पता चल जाता है। तो डॉक्टर जी हम कैसे माने कि मतलब हेपेटाइटिस जिसे हुआ है क्या ये आजीवन रहने वाली बीमारी है?
0: Unfortunately, for हेपेटाइटिस बी के लिए हाँ रहेगा, वो कंट्रोल हो जाएगा कॉम्प्लिकेशन का रिस्क, अगर आप दवाई अच्छी तरह से लें तो वो कम हो जाएगा। हेपेटाइटिस सी का है वो अगर आप दवाई लेंगे 3 महीने के लिए, एक दवाई है जिसका नाम है एपक्लूज़ा अभी है मॉरिशस में, उसका डिफरेंट वेरिएंट आता है लेकिन जो मेन है वही है, लेकिन अगर आप दवाई लेंगे अच्छी तरह से तो वो 98% तक इरेडिकेट हो जाता है और 100% श्योर है कि कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा।
1: तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें ध्यान में रखनी है और ख़ासकर जैसे हेपेटाइटिस सी है और जैसे डॉक्टर जी ने बताया कि मॉरिशस में ये बीमारी पाई जाती है हेपेटाइटिस सी, और हेपेटाइटिस सी जो है वो आजीवन रहने वाली एक ऐसी बीमारी है, पर इसका इलाज अगर

आप समय सर करवाएं तो बिल्कुल आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं और बिल्कुल हेल्दी रहने के लिए आपकी ओर से ये जिम्मेदारी निभाना ये आपका कर्तव्य है। बिल्कुल आना है और आपको दवाइयाँ लेनी है और जिस तरह से डॉक्टर गाइड करते हैं उस तरह से आपको उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। लेते हैं एक गीत का ब्रेक, आते हैं अभी थोड़ी ही देर में।

0: जी हाँ, आज की चर्चा का कार्यक्रम आज हमारे साथ डॉक्टर त्रिलोक गुलाब जी जुड़े हुए हैं, जो स्वास्थ्य मंत्रालय से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और विक्टोरिया हॉस्पिटल में वे अपनी सेवा प्रदान करते हैं। और आज हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर बात कर रहे हैं, तो चलिए जानते हैं डॉक्टर जी से कि हेपेटाइटिस एक बार डायग्नोस हो चुका है, टेस्ट आ चुके हैं, तो इसका इलाज कैसे किया जाता है? डॉक्टर जी, इलाज की शुरुआत कैसे होती है?
1: इलाज शुरू होते हैं तो पहले, जैसे मैंने बताया, तो जांच करते हैं, उसका सिविलिटी जान जाते हैं कि कितना कॉम्प्लिकेशन हुआ, अगर कॉम्प्लिकेशन तो इस बेस पर

0: प्रीति जान जाते हैं कि कितना कितना कॉम्प्लिकेशन हुआ, अगर कॉम्प्लिकेशन तो इस बेस पर वो क्रॉनिक हो जाता है तो लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा। लेकिन वो दवाई एक सिंपल दवाई, जैसे अब आम लोग अभी मॉरिशस में ज़्यादातर डायबिटीज़ पेशेंट हैं, वो एक हर रोज़ पीते हैं ना, तो इनको भी एक दवाई लेंगे तो वो हर रोज़ करेंगे, साल में दो बार या तीन बार उसे हॉस्पिटल में बुलाएंगे, टेस्ट कराएंगे, देखेंगे कि कैसा चल रहा है। रूटीन जो है वो अपॉइंटमेंट होगा, वो जब जाएगा तो फिजिशियन के पास जाएगा, वो फिजिशियन देखेगा कि कैसा चल रहा है, प्रगति हो रही है, कैसा चल रहा है, उसका जो लीवर फंक्शन है टेस्ट है वो अच्छा है, कुछ नहीं है। साल भर में या दो साल में एक अल्ट्रासाउंड करेंगे, जैसे जैसे पेशेंट का जो बीमारी का लेवल है तो देखेंगे कैसा चल रहा है।
1: okay.
0: तो और हेपेटाइटिस सी का जो है वो अभी अगर आप 3 महीने तक दवाई लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। उसका जो है हेपेटाइटिस सी वायरल लोड देखेंगे, जांच करने के समय, दवाई शुरू करने के समय से पहले लेंगे, और उसके बाद जब 3 महीने पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद एक और जांच करेंगे, देखेंगे कि वायरल लोड कितना है, वो कम हो जाता है और जो वो एक नॉर्मल लाइफ
1: जी सकते हैं। तो डॉक्टर जी, क्या ये बीमारी छूने से या फिर हाथ लगाने से फैलती है?
0: नहीं, ये बीमारी छूने से, साथ बैठने से, साथ खाने से नहीं फैलती।
1: क्योंकि कई बार ये एक टैबू बन जाता है कि किसी को अगर मान लीजिए परिवार में ये बीमारी हुई है तो ये एक बहुत ज्यादा मतलब एक जैसे टेंशन वाली एक सिचुएशन बन जाती है।
0: नहीं, ये सिर्फ ध्यान देना चाहिए कि असुरक्षित शारीरिक संबंध न बनाए, और अगर उसको गलती से कुछ चोट लगी, उसका खून जा रहा है तो उसको बंद करके उसका
1: डिस्पोज करना,
0: उसका। और असुरक्षित जैसे मैंने बताया, संक्रमित खून, संक्रमित सुई से उसका रेजर शेयर नहीं करना, क्योंकि अगर उसको चोट पहुंचाए तो
1: वो फैल सकता है। और डॉक्टर जी, जब हम बात करते हैं तो जैसे अल्कोहल लेना, जो लोग कंज्यूम करते हैं अल्कोहल, जो सिगरेट लेते हैं, स्मोक करते हैं, क्या उनके लिए रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं?
0: हाँ, रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं, क्योंकि जैसे आप जानते हो, अगर एक आदमी अल्कोहल ले रहा है तो उसका लीवर जो है उसका सूजन चल रहा है, और सुपर इम्पोज अगर हेपेटाइटिस हो जाता है तो ये एक्सीलरेट हो जाता है, तो ये ठीक नहीं।
1: okay.
0: और आप जानते हो स्मोकिंग भी
1: जैसे कॉम्प्लिकेशंस, बिल्कुल कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाते हैं जी,
0: तो ये भी कॉम्प्लिकेशन को ज्यादा जल्दी लाते
1: बिल्कुल। तो डॉक्टर जी, यहाँ पर जब हम फैमिली वालों का बात करते हैं, फैमिली के सपोर्ट की बात करते हैं, तो मान लीजिए अगर फैमिली में किसी को हेपेटाइटिस हुआ है तो फैमिली का क्या रोल है?
0: फैमिली का बहुत
1: इम्पोर्टेंट
0: रोल होता है, पर परिवार का सहयोग बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। मरीज को हौसला देना, दवा समय पर लेना, उनको फॉलोअप के लिए
1: एनकरेज
0: करना, और ज़रूरत पड़ने पर परिवार के सदस्यों को वैक्सीनेशन भी कराना चाहिए। तो ये जो है उनको ताबू नहीं करना चाहिए, तो उनका हेल्प करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए कि जाओ, मेडिकेशन हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है, तुम जाओ। और ऐसा है कि उनको फिर से पीड़ित जैसे कहते हैं रीइंफेक्शन
1: ना होने के चांसेस हो, इसीलिए
0: एक आदमी उन्होंने 3 महीने तक हेपेटाइटिस सी का जो दवाई लिया ठीक हो गया, तो और अभी वो बोलेगा मैं ओके, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं फिर अगर वो फिर से जाएगा तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।
1: बिल्कुल, इसीलिए यानी उनको एक फॉलोअप करते रहना बहुत जरूरी है, और इसमें परिवार को एनकरेज करना है, क्योंकि कई बार होता है कि हम काम में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि भूल जाते हैं,
0: तो ये लेकिन मैंने बताया तो हर रोज देखना चाहिए कि उन्होंने मेडिकेशन लिया कि नहीं लिया, अगर कुछ है उसको कमजोरी हो रहा है, पुआ पेटाइट हो रहा है, देखना चाहिए उसको, हॉस्पिटल लेके जाए, डॉक्टर को दिखाएं, अगर वो बीमारी बढ़ रहा है, स्टेज चेंज कर रहा है, उसका कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, तो देखना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो ये जैसे अगर परिवार के लोगों का हेल्प होगा तो
1: बिल्कुल। और डॉक्टर जी, इसमें डाइट एक्सरसाइजिंग का क्या रोल है?
0: डाइट और एक्सरसाइजिंग होना चाहिए,

0: क्योंकि एक आदमी अगर वो उसका लीवर जो है वो इन्फ्लेम्ड है तो उसका जो है जितने जैसे आपने बताया था पहले फैटी लीवर हो जाते हैं। अगर वो फैटी लीवर कैसे होता है, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो
1: बैठे रहते हैं, सेडेंटरी
0: लाइफ जो करते हैं, तो अगर आप एक्सरसाइज कर, आपको हेपेटाइटिस होता है तो पहले से ही वहाँ लीवर सूजन होता है, तो उसके फैटी लीवर अगर होगा तो वो अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए अच्छी से खाना खाना, एक्सरसाइज करना, शराब और सिगरेट से दूर रहना, ये
1: बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो डॉक्टर जी, हम ऑलमोस्ट आज के इस प्रोग्राम के एंड तक आ गए हैं, तो हमें लास्ट में हम ज़रूर जानना चाहेंगे किन किन बातों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे।
0: ये बात आती से डरना नहीं चाहिए। अभी मॉरिशस में अच्छी तरह से जांच हो रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, सब हैं, तो आप डरिए मत, आप आ जाए, आप हॉस्पिटल में आ सकते हैं, 5 सेंटर हैं, आप लोकल एरिया हेल्थ सेंटर में भी जा सकते हैं अगर कुछ है, तो वो आपको गाइड कर देंगे, बताएंगे कि क्या है। अगर आपको ये बीमारी का अगर आपको डाउट है, आपको प्रिक लगा, आपने इन्फेक्टेड सुई का इस्तेमाल किया, तो टाटू बनाया पहले, आपको डाउट है क्या था कैसा था, तो आप आए, आप आ जाएं, हम टेस्ट करेंगे। ये टेस्ट सब हॉस्पिटल में फ्री ऑफ चार्ज होता है और ट्रीटमेंट भी फ्री है, तो
1: फायदा उठाना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर मान लीजिए अगर आपने टैटू किया है या आपको कहीं पर भी ऐसा डाउट हो रहा है और ये प्रोग्राम सुनने के बाद आपको लगता है कि एक अगर टेस्ट करवाया जाए तो इसमें कोई हानि नहीं है, और जैसे डॉक्टर जी ने बताया कि ये निःशुल्क है, हर हॉस्पिटल में, हर एरिया हेल्थ सेंटर में बिल्कुल आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सकती है, तो देर ना करें, क्योंकि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे में जहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साथ जुड़ा है और खासकर हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर बहुत काम कर रहा है, और बस उन्होंने प्रण लिया है कि 2030 तक अगर इसे इरेडिकेट किया जा सकता है तो क्यों ना हो, बस हमें कुछ जिम्मेदारी निभानी है और अपनी ओर से हम अगर इसमें अपना सहयोग देते हैं तो ये बहुत बड़ा कदम होगा। तो जी हाँ, आज का प्रोग्राम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर आधारित रहा। हमारे साथ जुड़े डॉक्टर त्रिलोक गुलाब जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी, और बिल्कुल इस कार्यक्रम को आप तक पहुँचाने में सहयोग मिला हमें, तकनीक पर हमारे साथ बने रहे तकनीक पर थे कादेया, हमारे साथ प्रोडक्शन असिस्टेंट रही उरुसा और प्रोड्यूसर रही रत्नमाला मंगरू जी। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में हमारे जितने भी श्रोताओं ने साथ दिया आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। एक पुनः उपस्थित होंगे एक और नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।

0: आइए सुनते हैं समाचार रतिना के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। आज बुधवार दोपहर 2 बजे बंदरगाह में तेल रिसाव को नियंत्रित करने के लिए चलाया गया सफाई अभियान समाप्त हो गया। समुद्र में रिसाव को फैलने से रोकने के लिए 300 मीटर लंबा अवशोषक बैरियर तैनात किया गया और बंदरगाह प्राधिकरण और पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार पानी की सतह पर तैर रहा पूरा भारी ईंधन तेल यानी हैवी फ्यूल ऑयल बरामद कर लिया गया है। इंडियन ऑयल लिमिटेड की एक पाइपलाइन में रिसाव होने के बाद मंगलवार को लगभग 200 लीटर भारी ईंधन तेल समुद्र में फैल गया था। सतीश फगू ने आज स्टेट हाउस में इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। पदभार संभालते ही पूर्व मंत्री और पूर्व अटॉर्नी जनरल ने आंकड़ों के साथ अपनी 4 वर्षीय कार्यकाल की प्राथमिकताएं प्रस्तुत की। सतीश फगू के प्रमुख दायित्वों में से एक पुलिस बल के प्रति जनता का भरोसा बहाल करना होगा। उन्होंने बताया कि ये संस्था हर साल लगभग 750 शिकायतें दर्ज करती है। इनमें से अधिकांश शिकायतें कथित पुलिस अधिकारों के दुरुपयोग से संबंधित होती है। सऊदी प्रतिनिधि मंडल का परिचयात्मक दौरा आज बुधवार को सकारात्मक माहौल के साथ संपन्न हुआ। आज सुबह पोल्ट्री में हुई बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल और पर्यटन मंत्री ऋषभ अग्रवाल ने सऊदी बाजार तथा खाड़ी देशों में मॉरिशस पर्यटन गंतव्य की बढ़ती पहचान और दृश्यता पर गहरा संतोष व्यक्त किया। और विदेश में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ एक समझौते को मंजूरी दी है। इस समझौते से सऊदी अरब को अपने नागरिक परमाणु कार्यक्रम के लिए यूरेनियम संवर्धन की क्षमता मिल सकती है। इस मामले की जानकारी रखने वाले दो लोगों का कहना है कि समझौते की सार्वजनिक घोषणा आज तक हो सकती है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई। हमें आगे आ रही है। नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. You're listening to RM3 Radio.

0: दिल से मिले दिल।
1: जी हाँ दोस्तों, दिल से दिल मिलने का वक्त हो चला है और 4:10 हो गए हैं बुधवार की ये खूबसूरत सी दोपहर, जहाँ पर मैं हूँ परी आपके साथ, लेकर आए हैं 90s के कुछ ब्यूटीफुल गाने आपके इस दोपहर को सजाने के लिए। सो यहाँ पर अगर आपका काम खत्म हो गया है और आप हमारा साथ दे रहे हैं, तो बस कुछ गाने ऐसे जो आपके म्यूजिकल हमसफर बनने वाले हैं ऑन RL3 रेडियो मनोरंजन। और अगर आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं, अगर मैसेजेस डेडिकेशन हम तक पहुंचाना चाहते हैं, 5250-6200-5250-6200 इसी नंबर पर हो रहा है आपका इंतजार। परी का साथ दिल से मिले दिल प्रोग्राम आपके लिए ऑन रेडियो मनोरंजन। तो चलिए अभी के लिए मूड को सेट करने के लिए वी हैव दिस गाना फ्रॉम द फिल्म आर्या पार। वैसे आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों, कहते हैं ना कि म्यूजिक जो होता है वो मूड सेट कर ही देता है, और अभी के लिए तो गुड म्यूजिक की काफी जरूरत है। अगर काम से निकलकर हमारा साथ दे रहे हैं, घर पर पहुंचकर हमारा साथ दे रहे हैं, या फिर ऐसे ही आज मन किया कि आप गानों को एंजॉय करें, तो जहां कहीं से भी ट्यून इन किया है, गुड म्यूजिक आपके लिए ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: सो वेल फ्रेंड्स, बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक आपके लिए और कुछ ऐसे गाने जो आपकी इस दोपहर को सजा रहे हैं, साथ दे रहे हैं आप ऑन रेडियो मनोरंजन। वी हैव दिस ब्यूटीफुल गाना, एंजॉय दिस वन।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: और चलिए दोस्तों, इस लिस्ट में शामिल होता हुआ ये गाना फ्रॉम द फिल्म और प्यार हो गया. नुसरत फतेह अली खान साहब, उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल की आवाज़ें इस वक्त सरिता जी का ट्रिब्यून से साथ दे रही हैं और कहती हैं, तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी लेटे लेटे शो को एंजॉय कर रही हूँ. सो गेट वेल सून विशेज आपके नाम सरिता जी, और उम्मीद करते हैं गानों को सुनकर आपका मूड भी सेट हो जाएगा. अभी के लिए जितने भी लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, दिल से मिले दिल प्रोग्राम परी के साथ ऑन रेडियो मनोरंजन.

0: RM3 Radio. दिल से मिले दिल।
1: और चलिए दोस्तों, अगले गीत के साथ वक्त हो चला है कि मैं परी लूं आपसे अलविदा, और आप भी इतने प्यार से हमारा साथ दे रहे हैं। तो चलिए, ये जो खूबसूरत सा गाना है, इसे हम आपके नाम डेडिकेट कर रहे हैं। एवरीवन जो इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन, परी साइनिंग ऑफ। मुलाकात होगी आपसे जल्द इसी रेडियो स्टेशन पर। तब तक के लिए साथ दीजिए ऑन रेडियो मनोरंजन। कुछ ही देर में सुन पाएंगे प्रोग्राम अनकही एक कहानी। तो चलिए, तब तक के लिए गाना आप सभी के लिए। एंजॉय दिस वन एंड हैव अ ग्रेट आफ्टरनून, हैव अ ग्रेट टाइम रेडियो मनोरंजन के गानों के साथ।

0: उद्धरेद आत्मन आत्मानम नात्मानम अवसादयेत। आत्मैव ह्यात्मनु बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को अपने प्रयासों से स्वयं का उत्थान करना चाहिए, स्वयं को गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। इस श्लोक के माध्यम से महर्षि वेदव्यास सिखाते हैं कि जीवन की दिशा बदलने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपने ज्ञान, पुरुषार्थ और संकल्प पर विश्वास करना चाहिए। एक विद्यार्थी को परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल अपने शिक्षक पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, उसे स्वयं नियमित अध्ययन करना चाहिए, तभी पढ़ाई में सफलता प्राप्त हो सकती है। प्रिय श्रोताओं, एक बार फिर अनकही एक कहानी नामक कार्यक्रम में विश्वानंद आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। अपनी स्वरचित कहानी लेकर प्रोफेसर राजशेखर भी हमसे जुड़ गए हैं, उनका भी हृदय से अभिवादन करते हैं। तो विलंब न करते हुए चलिए सुनते हैं अनकही एक कहानी प्रोफेसर राज की जुबानी।
1: आपका हृदय से आभार गुरु विश्वा। नमस्कार प्रिय श्रोतागण, रेडियो की इन मधुर तरंगों पर गुरु विश्वा के साथ मैं प्रोफेसर राज आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम अनकही एक कहानी में। भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा केवल आध्यात्मिक साधना की परंपरा नहीं है, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और मानव सभ्यता को दिशा देने वाली महान परंपरा भी है। इसी परंपरा ने ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया जिन्होंने अपने ज्ञान से युगों को आलोकित किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य धरोहर छोड़ गए। ऐसे ही एक दिव्य ऋषि थे महर्षि वेदव्यास। उन्होंने केवल वेदों का विभाजन करने वाला ऋषि ही नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा का महान संपादक, दार्शनिक और साहित्यकार माना जाता है। जब उन्होंने अनुभव किया कि समय के साथ मनुष्य की स्मरण शक्ति और अध्ययन क्षमता कम होती जा रही है, तब उन्होंने विशाल वेद ज्ञान को चार भागों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में व्यवस्थित किया, ताकि सामान्य जन भी उस ज्ञान का लाभ उठा सकें।

0: महर्षि वेद व्यास ने केवल वेदों का ही नहीं बल्कि महाभारत, 18 पुराणों और ब्रह्मसूत्र जैसे कालजयी ग्रंथों की रचना कर भारतीय संस्कृति को अमर आधार प्रदान किया। इसलिए उन्हें भारतीय ज्ञान परंपरा का एक महान निर्माता और मानवता का पथ प्रदर्शक माना जाता है। हाँ श्रोतागण, आज की हमारी अनकही कहानी महर्षि वेद व्यास के जीवन की है, एक ऐसे युगद्रष्टा ऋषि की जिन्होंने ज्ञान को सीमित नहीं रहने दिया बल्कि उसे जन जन तक पहुंचाने का महान कार्य किया। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आज अनकही कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक महापुरुष ने अपने ज्ञान, तप और दूरदृष्टि से पूरे विश्व की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखा और मानवता को अमूल्य ज्ञान संपदा प्रदान की। तो ऋषि वेद व्यास की कहानी उनके जीवन की इस प्रकार शुरू होती है। यमुना नदी के बीच एक शांत द्वीप चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। पराशर मुनि और सत्यवती नाव में बैठे थे। पराशर मुनि के आशीर्वाद से सत्यवती का कौमारी भी सुरक्षित रहता है और एक अलौकिक दिव्य बालक का प्रादुर्भाव नदी के एक द्वीप पर होता है। जन्म लेते ही वह बालक सामान्य शिशुओं की तरह रोने के बजाय शांत खड़ा हो जाता है। उसका शरीर श्यामला है पर आँखों में ब्रह्मांड का ज्ञान चमक रहा है। उस बालक को जो कि सत्यवती का पुत्र है आश्चर्य और वात्सल्य से देखते हुए सत्यवती कहती है, हे मुनिवर, यह कैसा चमत्कार है। इस बालक के शरीर का रंग तो बादलों जैसा श्याम है पर इसका तेज सूरज को भी लज्जित कर रहा है। सत्यवती की बात सुनकर पराशर मुनि मुस्कुराते हैं और कहते हैं, देवी सत्यवती, यह कोई साधारण बालक नहीं है। इसका जन्म यमुना के इस द्वीप पर हुआ है इसलिए संसार इसे द्वैपायन कहेगा और इसके इस अलौकिक कृष्ण वर्ण के कारण यह कृष्ण मुनि के नाम से भी जाना जाएगा। दोनों मिलकर इसका नाम कृष्ण द्वैपायन अमर करेंगे। बालक कृष्ण द्वैपायन जन्म लेते ही क्षण भर में एक विवेकशील युवा के रूप में आ जाते हैं और अपनी माता के चरणों में झुक जाते हैं। गंभीर और विनीत स्वर में वे अपनी माता को संबोधित करते हुए कहते हैं,
1: हे माता, मेरा इस संसार में जन्म एक महान उद्देश्य के लिए हुआ है। अब मुझे वेदों के ज्ञान और तपस्या के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा, मुझे आज्ञा दे।
0: पुत्र की बात सुनकर आंखों में आंसू भरकर माता सत्यवती कहती हैं, पुत्र, तुम जन्म लेते ही अपनी माता को छोड़कर जा रहे हो। इस निर्जन द्वीप पर मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। माता के हाथ थामते हुए बहुत ही भावुक होकर बालक कृष्ण द्वैपायन कहते हैं,
1: माता, दुखी न हो। मैं भले ही तपस्या के लिए वन जा रहा हूँ लेकिन आपको एक वचन देता हूँ, जीवन के किसी भी मोड़ पर जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी आप बस सच्चे मन से मुझे स्मरण करना, मैं अचिंत्य शक्ति से तुरंत आपके सामने प्रकट हो जाऊँगा।
0: और पराशर मुनि भी बालक कृष्ण द्वैपायन को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, जाओ पुत्र, संसार तुम्हारे ज्ञान का अहोभाग्य मनाएगा। कृष्ण द्वैपायन माता को प्रणाम कर दृढ़ कदमों से तपस्या की ओर बढ़ जाते हैं और सत्यवती गर्व से अपने दिव्य पुत्र को निहारती रह जाती है। कुछ समय के बाद हिमालय की तलहटी में एक अलौकिक ज्ञान कक्ष में ऋषि कृष्ण द्वैपायन ध्यान मग्न बैठे हैं। अचानक संपूर्ण दिशाएं भो शब्द की दिव्य ध्वनि से प्रतिध्वनित हो उठती हैं और साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट होते हैं। प्रकट होते ही श्री विष्णु कहते हैं, हे विद्वानों और विद्वानों में श्रेष्ठ मुनि कृष्ण द्वैपायन, आंखें खोलो। इस स्वयंभू मनवंतर में तुम्हें एक अत्यंत दुष्कर और

0: युग परिवर्तनकारी कार्य पूर्ण करना है। साक्षात विष्णु को अपने सामने देखकर कृष्ण द्वैपायन मस्तक झुका लेते हैं और हाथ जोड़ते हुए विनय भाव से कहते हैं,
1: प्रभु आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हुआ। मुझे आज्ञा दें इस दास को

0: इस समय आगे बढ़ेगा, मनुष्यों की बुद्धि और स्मरण शक्ति छीन होती जाएगी। वेदों का जो विशाल अनंत ज्ञान एक साथ संकलित है, उसे समझ पाना सामान्य जन के लिए असंभव हो जाएगा। अतः तुम मेरी आज्ञा से ऋक, यजुस और साम आदि श्रुतियों की व्याख्या करो और उन्हें पृथक पृथक वर्गों में विभाजित करो। विष्णु की आज्ञा को मानते हुए और उनकी बात सुनते हुए बहुत ही दृढ़ संकल्पित हो कृष्ण द्वैपायन कहते हैं,
1: जैसी आपकी आज्ञा नारायण, मैं इस महान ज्ञान राशि को सरल और सुलभ बनाने के लिए इसे चार भागों में विभक्त करूंगा।
0: और इस वार्तालाप के कुछ ही दिनों के बाद कृष्ण द्वैपायन ने वेदों को चार संहिताओं में विभाजित कर दिया। एक जिज्ञासु मुनि उनके सम्मुख बैठा हुआ उनसे पूछता है, ऋषिवर, वेदों को इस प्रकार क्रमबद्ध और व्यवस्थित करने के बाद आपका यह अद्भुत रूप साक्षात ब्रह्मा जैसा प्रतीत हो रहा है, अब संसार आपको किस नाम से पुकारेगा? उस जिज्ञासु मुनि की बात सुनकर कृष्ण द्वैपायन बहुत ही शांत भाव से मुस्कुराते हैं और कहते हैं,
1: हे मुनि, नाम और उपाधियां तो केवल कार्य के अधिकार को दर्शाती है, क्योंकि मैंने वेदों का विस्तार और वर्गीकरण किया है, इसलिए यह केवल एक पदवी है।
0: कृष्ण द्वैपायन की बात सुनकर जिज्ञासु मुनि कहते हैं, सत्य कहा आपने, वेदों का विभाजन करने के कारण आज से संपूर्ण आर्यावर्त आपको महर्षि वेद व्यास के नाम से पूजेगा। आपका यह अवदान आने वाले युगों तक मानव जाति का मार्ग आलोकित करता रहेगा। वेद व्यास उस मुनि की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और अपने चारों वेदों की संहिताओं को स्पर्श कर मानवता के कल्याण का ध्यान करते हैं।

0: हिमालय की विशाल गोद में स्थित बद्रिकाश्रम चारों ओर बर्फ से ढकी गगनचुंबी चोटियां से घिरी हुई है। चीर और देवदार के वृक्षों के बीच बद्रिकाश्रम की पवित्र भूमि पर बेर के वृक्षों की घनी छाया है। महर्षि वेदव्यास एक विशाल शिला पर समाधिस्थ बैठे हैं। उनके चेहरे पर परम तत्व का अलौकिक तेज है और उनके समीप पहल और जैमिनी हाथ जोड़कर खड़े हैं। पहल बहुत ही धीमे स्वर में गुरु को संबोधित करते हुए कहते हैं, जैमिनी देखो गुरुदेव के मुखमंडल को, इस कपकपाती ठंड और एकांत में भी वे अद्वैत तत्व के चिंतन में कैसे लीन है। पहल की बात सुनकर जैमिनी भी गौर से गुरु के चेहरे को देखता है और कह उठता है, सत्य कह रहे हो पहल, इस बद्रिकाश्रम की पावन वायु और हिमालय की यह एकांत निरवता ही गुरुदेव की उच्च उद्भावनाओं के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। उन दो शिष्यों की बात सुनकर तभी महर्षि वेदव्यास धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी आंखों में असीम शांति है और बड़े ही शांत और गंभीर स्वर में वेदव्यास कहते हैं,
1: पुत्रो सत्य और ज्ञान की खोज के लिए चित्त की एकाग्रता परम आवश्यक है। इस बद्रिकाश्रम के शांत सहचर्य ही मुझे उस परम सत्य अर्थात ब्रह्म सूत्र की आंतरिक प्रेरणा प्राप्त हो रही है।
0: कुछ दिनों बाद व्यास जी भोजपत्र पर सूत्र लिख रहे हैं और वही दोनों शिष्य उनके सम्मुख बैठे हैं। पहल कहता है, ऋषिवर आपने जो यह ब्रह्म ज्ञान का विधायक ग्रंथ तैयार किया है यह संपूर्ण दर्शन जगत की अनमोल निधि है। इस महान सूत्र ग्रंथ को किस नाम से जाना जाएगा गुरुदेव?
1: यह अद्वैत तत्व की प्रतिष्ठा करने वाला ब्रह्म सूत्र है जो मानव को उसके वास्तविक स्वरूप का बोध कराएगा।
0: गुरु की बात सुनकर जैमिनी कहां शांत रहने वाला था, वह भी पूछ बैठा, गुरुदेव चूंकि आपने ज्ञान की यह सर्वोच्च रचना इस पवित्र बद्रिकाश्रम की भूमि पर बैठकर पूरी की है, इसलिए इतिहास में आपके इस चिंतन को बद्रायन सूत्र के नाम से लोक विश्रुत किया जाएगा और इस पावन भूमि के स्मारक के रूप में संसार आपको महर्षि बद्रायन के नाम से भी सदैव पूजेगा।
1: स्थान तो केवल निमित्त है पुत्र।

0: मित्रों, महत्वपूर्ण तो वह ज्ञान है जो लोक का कल्याण करे।
1: दोनों शिष्य श्रद्धा पूर्वक गुरु बदरायन के चरणों में मस्तक होते हैं और बद्रिकाश्रम की वादियों में वेदांत के सूत्रों की गूंज बिखर जाती है। हिमालय की बर्फीली घाटियों में व्यास जी का विशाल गुरुकुल, उत्तरापथ हिमालय की सुंदर तलहटी में महर्षि वेद व्यास अपने 5 मुख शिष्यों पैल, वैशंपायन, जैमिनी, सुमंतु और अपने पुत्र सुखदेव के साथ बैठे। चारों ओर वेद मंत्रों की गूंज है। व्यास जी सभी को अलग अलग दायित्व सौंपने के लिए तत्पर हैं। तभी वे गंभीर और करुणामयी वाणी में कहते हैं,
0: प्रिय शिष्यों और पुत्र सुखदेव, मैंने अपनी बुद्धि और तप से वेदों का जो सरलीकरण और संपादन किया है, अब उसे संसार के कोने कोने तक पहुंचाने का समय आ गया है। यदि यह ज्ञान केवल मेरे तक सीमित रहा तो हमारा यह श्रम व्यर्थ हो जाएगा।
1: गुरु की बात सुनकर उनका परम प्रिय शिष्य वैशंपायन हाथ जोड़कर कहता है,
2: गुरुदेव, हम आपकी इस दुष्कर कार्य और ज्ञान यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह सुदृढ़वर्ती हैं। अब हमें आज्ञा दें, हमें क्या करना है?
0: बैल, तुम ऋग्वेद के मर्म को आत्मसात कर चुके हो, इसलिए आज से तुम इसके संरक्षण और प्रचार का दायित्व संभालोगे। वैशंपायन, तुम्हें यजुर्वेद की संहिताओं को समाज में स्थापित करना होगा।
1: पहल गुरु की बात सुनकर विनम्रता से सर झुकाकर कहता है,
2: आपकी आज्ञा सिरोधार्य है गुरुदेव। मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी ऋग्वेद की ऋचाओं की शुद्धता को अक्षुण रखूंगा।
1: शाम के समय गुरुकुल का प्रांगण और व्यास जी अपने पुत्र सुखदेव और शिष्य सुमंतु तथा जैमिनी को भी निर्देश दे रहे हैं। वेद व्यास जैमिनी को संबोधित करते हुए कहते हैं,
0: जैमिनी, तुम सामवेद के मधुर गान का प्रसार करो और सुमंतु, तुम अथर्ववेद के रहस्यों को जन कल्याण के लिए सुलभ बनाओ और पुत्र सुखदेव, तुम्हें इस संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान को आत्मतत्व के रूप में जगत को सौंपना होगा।
1: बहुत ही शांत और वैरागी भाव से वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव कहते हैं,
2: पिताजी, ज्ञान का यह महासागर अब 5 धाराओं में बहकर संपूर्ण आर्यावर्त को पवित्र करेगा, मैं आपको वचन देता हूं।
1: फिर वैशंपायन भी कहते हैं,
2: गुरुदेव, इतिहास गवाह रहेगा कि आपकी इस महान शिष्य परंपरा ने ही हमारी सनातन ज्ञान संपदा को लुप्त होने से बचाया है।
1: 5 उत्तम शिष्य अपने गुरु वेद व्यास के चरणों की धूल माथे पर लगाते हैं और ज्ञान की अटूट परंपरा पूरे भारतवर्ष को आलोकित करने निकल पड़ती है। समय बीतता जाता है और एक दिन हस्तिनापुर का एकांत राजभवन, रात का समय है और हस्तिनापुर का क्रूवंश निर्वंश होने की कगार पर पहुंच चुका है। विचित्र वीर्य दिन रात काम क्रीड़ा में डूबे रहने के कारण टीबी रोग से ग्रसित होकर अकाल मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। राजमाता सत्यवती अत्यंत व्याकुल होकर पहले भीष्म से विवाह और राजपाट संभाल लेने का अनुरोध करती हैं, पर भीष्म अपनी भीषण प्रतिज्ञा के कारण इसे धर्म विरोध मानकर मना कर देते हैं। संकट की इस घड़ी में सत्यवती अपने कौमारी जीवन में जन्मे पराशर पुत्र कृष्ण द्वैपायन व्यास का स्मरण करती है। अचानक कक्ष में दिव्य प्रकाश फैलता है और महर्षि व्यास अपनी माता के सम्मुख प्रकट होते हैं और माता के चरणों में अपने मस्तक को झुकाते हुए उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं,
0: हे माता, मैं आपका पुत्र कृष्ण द्वैपायन आपके स्मरण

0: करते ही उपस्थित हूँ। आज्ञा दें हस्तिनापुर की राजमाता आज इस सन्यासी पुत्र से क्या चाहती है।
1: वेद व्यास की बात सुनकर और साक्षात अपने पुत्र को सामने देखकर सत्वती अपनी आंखों में आंसू नहीं रोक पाती। वह रोते हुए कहती है, पुत्र कुरुवंश का प्रदीप बुझने वाला है, विचित्र वीर निसंतान ही परलोक सिधार गया और भीष्म प्रतिज्ञा से बंधे हैं। इस समय केवल तुम ही इस साम्राज्य को कुलहीन होने से बचा सकते हो। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं कि तुम अपनी दोनों विधवा भावजों को शास्त्र सम्मत नियोग विधि द्वारा संतान प्राप्त करो। माता सत्यवती का आदेश सुनते ही वेदव्यास बहुत ही गंभीर हो जाते हैं। फिर कुछ देर सोचने के बाद कहते हैं,
0: माता आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है, किंतु मैं कठोर तपस्या से लौटा हूँ। मेरा रूप इस समय अत्यंत उग्र जटाधारी और तेज से भरा है। रानियों को मेरी इस तपस्वी अवस्था को सहने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना होगा। माँ
1: ऋषि व्यास एक एक कर रानियों के कक्ष में प्रवेश करते हैं। उनकी जटाओं और तपस्या का तेज इतना प्रचंड है कि साधारण आंखें उसे सहन नहीं कर पाती। उत्सुकता से व्यास जी के कक्ष से बाहर आने पर माता सत्यवती पूछती हैं, पुत्र कुरुवंश की बड़ी रानी अंबिका का नियोग कैसा रहा? क्या हस्तिनापुर को उसका भावी राजा मिल पाएगा? वेद व्यास शांत परंतु बहुत ही चिंतित स्वर में माता को कहती हैं,
0: माता बड़ी रानी अंबिका मेरे चेहरे के अप्रतिम और तेजोमय रूप को देखने का साहस नहीं जुटा पाई। डर के मारे उसने भय से अपनी आंखें ही बंद कर ली। इसी कारण उसका जो पुत्र उत्पन्न होगा वह जन्मांध होगा, उसका नाम धृतराष्ट्र रखा जाएगा।
1: वेदव्यास की बात सुनते ही सत्यवती हताश हो जाती है और अपना सर पकड़ कर कहती हैं, ओह जन्मांध, ये क्या कहा पुत्र तुमने? एक अंधा राजा हसीनापुर का संचालन कैसे करेगा पुत्र? कृपया छोटी रानी अंबालिका के पास जाओ और हमें एक स्वस्थ उत्तराधिकारी दो। व्यास जी माँ की बात को मानते हुए अंबालिका के कक्ष में जाते हैं। कुछ समय बाद जब वे बाहर आते हैं तो उनके चेहरे पर पुनः एक गंभीर भाव होता है और वे कहते हैं,
0: माता छोटी रानी अंबालिका ने आंखें तो बंद नहीं की, परंतु मेरे भयानक और तपस्वी रूप को देखकर डर के मारे उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया। इस भय के कारण उसका पुत्र अत्यंत दुर्बल और क्षय रोग पीलिया जैसी स्थिति से ग्रस्त जन्मेगा। वह कुरुवंश का दूसरा स्तंभ होगा जिसका नाम पांडु रखा जाएगा।
1: वेद व्यास की बात सुनकर सत्यवती और व्याकुल हो जाती हैं और वह गंभीर मुद्रा में कह पड़ती है, नहीं पुत्र नहीं, ऐसा मत कहो। हस्तिनापुर को तो एक पूर्णतः स्वस्थ तेजस्वी और धर्मावतार राजा चाहिए। मैं अंबिका को दोबारा तुम्हारे पास भेजती हूँ, इस बार वह कोई भूल नहीं करेगी। फिर बड़ी रानी अंबिका भय के कारण स्वयं न जाकर अपनी चतुर दासी को व्यास जी के कक्ष में भेज देती है। दासी बिना किसी भय के अत्यंत श्रद्धा और शांत मन से महर्षि व्यास के तेज को स्वीकार करती है। फिर वेद व्यास माता सत्वती के पास आकर संतोष भरे स्वर में कहते हैं,
0: माता इस बार रानी के स्थान पर उनकी दासी ने पूर्ण सम्मान और शांत चित्त से मेरे तेज को ग्रहण किया है। उसके गर्भ से अत्यंत बुद्धिमान नीतिवान और साक्षात धर्माव

0: अवतार विदुर का प्रादुर्भाव होगा। वह आजीवन इस वंश का मार्ग दर्शन करेगा।
1: सत्वती हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, भगवान को स्मरण करते हुए कहते हैं, पुत्र वेद व्यास, तुमने हस्तिनापुर का शासन कुरुवंश के ही रक्त को सौंप कर इस साम्राज्य को बिखरने से बचा लिया। यह देश तुम्हारी इस व्यवस्था और कुरुवंश के साथ तुम्हारे इस घनिष्ठ संबंध का सदा ऋणी रहेगा।

0: कुरु वंश को तीन महान आधार स्तंभ धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर देकर पुनः वेदव्यास बद्रिकाश्रम की ओर प्रस्थान कर जाते हैं और फिर हिमालय की वही शांत गुफा जहां महर्षि वेदव्यास हमेशा ध्यान में बैठे रहते थे, फिर से वे ध्यान में डूबे हुए हैं। उनके सम्मुख भगवान श्री गणेश भोजपत्र और लेखनी लेकर बैठे हैं। व्यास जी लगातार श्लोकों की रचना कर रहे हैं और गणेश जी बिना रुके उन्हें लिपिबद्ध कर रहे हैं। 3 वर्षों का अथक परिश्रम अब अपने पूर्णता की ओर है। जब ग्रंथ पूर्ण होने पर है तब वेद व्यास अपनी ओजस्वी वाणी में श्लोक का उच्चारण करते हुए कहते हैं,
1: धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदर्यंत्र यन्ने हास्ति न तत् कश्चित्। अर्थात, हे भरतवंशियों, मैं श्रेष्ठ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों के विषय

0: में जो कुछ यहाँ महाभारत में है वही अन्यंत्र भी उपलब्ध है, और जो यहाँ नहीं है वह अन्यत्र कहीं भी नहीं है।
1: वेद व्यास की ओजस्वी वाणी में श्लोक सुनते ही श्री कृष्ण श्री गणेश भी अपनी लेखनी रोक देते हैं और मुस्कुराकर कह बैठते हैं, अद्भुत ऋषिवर अद्भुत, आपने इस श्लोक में संपूर्ण ग्रंथ का सार समाहित कर दिया। हे अमित बुद्धि मुने, इस महाकाव्य की सीमाएं सचमुच अनंत हैं।
0: हे विघ्नहर्ता, आपके सहयोग के बिना 3 वर्षों का यह अनवरत लेखन यज्ञ संभव नहीं था। मैंने इस ग्रंथ में केवल राजाओं के युद्ध का वर्णन नहीं किया है, बल्कि इस भौतिक संसार की निस्सारता और मानव जीवन के वास्तविक मूल्यों को स्थापित भी किया है।
1: ग्रंथ पूर्ण होने पर गुरुकुल का प्रांगण, महाभारत ग्रंथ की विशाल पांडुलिपि शिष्यों के सम्मुख रखी जाती है, और एक शिष्य विस्मय से उसे निहार रहा है और वो अपनी भावना को रोक नहीं पाता। वो कहता है, गुरुदेव, यह तो ज्ञान का अगाध महासागर मालूम होता है, पर मेरे मन में एक संशय है। हमारे समाज में जो स्त्री शूद्र या वेद विहीन जन हैं, जिन्हें सीधे श्रुतियों को सुनने का अधिकार नहीं है, वे इस परम ज्ञान को कैसे पाएंगे? क्या वे सदैव अज्ञान के अंधकार में रहेंगे गुरुदेव? उस व्यक्ति की बात सुनकर वेद व्यास बहुत ही करुणामयी स्वर में कहते हैं,
0: नहीं पुत्र, इस संशय और पीड़ा को दूर करने के लिए मैंने इस महाभारत पंचम वेद की रचना की है। जो ज्ञान वेदों के गूढ़ रहस्यों में छुपा था, उसे मैंने आख्यानों और कथाओं के माध्यम से अत्यंत सहज व सरल बना दिया है। यह ग्रंथ एक ही साथ अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और कामशास्त्र भी है। अब समाज का हर वर्ग, चाहे वह स्त्री हो या शूद्र, इसके माध्यम से जीवन के परम कल्याण और मोक्ष का मार्ग जान सकेगा।
1: गुरु की बात सुनकर श्रद्धा से गुरु के चरणों में झुकते हुए वह ही शिष्य कहता है, धन्य हो गुरुदेव, धन्य हो, यह महाभारत रूपी अक्षय वृक्ष संपूर्ण मानवता के लिए युगों युगों तक जीवनदाता बना रहेगा। गुरुदेव जीवनदाता बना रहेगा। व्यास जी अपनी कृति को आशीर्वाद देते हैं और संपूर्ण वातावरण जय महामुनि व्यास के उद्घोष से गूंज उठता है। समय बीतता जाता है, महाभारत का युद्ध भी समाप्त हो चुका है, और उस युद्ध की विभीषिका के बाद अपनों को खोने के शोक से दुखी महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजदरबार में बैठे हैं और बहुत ही विचलित हैं। वे सिर झुकाए हुए हैं। तभी महर्षि वेदव्यास वहां प्रवेश करते हैं। युधिष्ठिर उनके चरणों में गिरकर रोने लगते हैं। रोते हुए रूंधे हुए कंठ से कहते हैं, पितामह, इस युद्ध के बाद धर्मराज कहलाने में भी मुझे लज्जा आ रही है। पापी दुर्योधन अधर्म के पथ पर रह कर भी जीवन भर सुख भोगता रहा, और हम धर्म का पालन करके भी केवल आंसू और विनाश ही पा सके। क्या गुरुदेव यही धर्म का न्याय है? युधिष्ठिर को उठाते हुए अत्यंत गंभीर और शाश्वत सत्यवाणी में वेद व्यास कहते हैं,
0: धर्मराज विचलित मत हो। मनुष्य प्रारंभ में अधर्म से भले ही आगे बढ़ जाए, अपनी आँखों से अपना भला देख ले और शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त कर ले, किंतु अंत में वह मूल अर्थात अपने वंश और अस्तित्व सहित नष्ट हो जाता है। अधर्म का अंत सदा विनाश ही है, सदा विनाश ही है।
1: तो फिर हम सच्चे धर्म को समाज में कैसे

0: पहचाने रिसीवर?
1: राजन, जो धर्म दूसरे के धर्म का बाधक बने वह सच्चा धर्म नहीं बल्कि अधर्म है। धर्म का सार बहुत गूढ़ है, इसलिए बुद्धिमानों को उसी पथ पर चलना चाहिए जिस पर महान और श्रेष्ठ पुरुष गए हों। देश और काल के अनुसार जो आज अधर्म है वह कल धर्म हो सकता है, इसलिए सदा परोपकार और जीव सेवा को ही अपना परम धर्म मानो।
0: वेद व्यास जी ने सभी लोगों को इतने अच्छे उपदेश दिए। कैलाश पर्वत की ओर जाता बर्फीला मार्ग, युधिष्ठिर को उपदेश देने के बाद व्यास जी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने पुत्र सुखदेव को सारा कार्यभार सौंप कर कैलाश की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सुखदेव पिता के पीछे चलते हुए कहता है, पिताजी, आपने संपूर्ण मानव जाति को ज्ञान का महासागर सौंप दिया है, इस संसार के लिए आपका अंतिम संदेश क्या है?
1: पुत्र सुखदेव, मैंने जीवन भर यही सीखा कि धर्म से ही अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति संभव है। अब तुम्हें इस ज्ञान की मशाल को थामना होगा। संपूर्ण संस्कृत साहित्य और यह मानव समाज सदा सत्य और परोपकार के इस मार्ग का ऋणी रहेगा।
0: और इसी के साथ महर्षि वेदव्यास अपने पुत्र को आशीर्वाद देकर शांत कदमों से कैलाश की अनंत ऊंचाइयों में विलीन होने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, और पीछे उनकी अमर वाणी हवाओं में गूंजती रहती है जो आज तक गूंज रही है।

0: तो श्रोताओं, आप सभी लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे कि अभी कुछ देर पहले प्रोफेसर राज जी ने एक बहुत ही रोचक व दिलचस्प कहानी हमें सुनाई, जिसका शीर्षक है वेद व्यास। प्रोफेसर जी, इसका मूल संदेश या केंद्रीय संदेश क्या है?
1: महर्षि वेद व्यास की कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह समाज के कल्याण और मानवता के उत्थान के लिए समर्पित हो।
0: जी,
1: उन्होंने अपने व्यक्तिगत यश की अपेक्षा ज्ञान के संरक्षण और प्रसार को अधिक महत्व दिया। यदि वे वेदों का वर्गीकरण ना करते तो संभव है कि काल के प्रवाह में उनका विशाल ज्ञान सामान्य जन के लिए दुर्लभ हो जाता। यह कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान सबसे बड़ी धरोहर है और उसका संरक्षण प्रत्येक पीढ़ी का दायित्व है। सच्चा विद्वान वही है जो अपने ज्ञान को समाज के हित में समर्पित करे। दूरदर्शिता और संगठन किसी महान कार्य की सफलता का आधार होते हैं। शिक्षा का उद्देश्य केवल स्वयं को श्रेष्ठ बनाना नहीं बल्कि दूसरों का जीवन भी प्रकाशित करना है।
0: एकदम
1: महर्षि वेद व्यास का जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम अध्ययन, चिंतन और ज्ञान वितरण की परंपरा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ज्ञान ही वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर मानवता को सही दिशा देता है। तो गुरु विश्वास, आप देखेंगे कि जो हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं और कई बार हम उन परिस्थितियों में इस तरह से घिर जाते हैं कि हम वो कार्य नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है और कभी भी हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि कोई और हमारे लिए कर दे।
0: आत्मनिर्भर होना
1: जी,
0: चाहिए।
1: जैसे वेद व्यास यदि यह सोचते कि कोई और करेगा
0: जी,
1: किसी न किसी को तो आगे आना चाहिए,
0: पहल करनी चाहिए।
1: तो हमें सबसे पहले आकर समाज के लिए, देश के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि पूरा समाज, देश बदल जाए और उसको एक नई दिशा मिले।
0: जी, एकदम।
1: एक समाज और देश की दशा ही परिवर्तित हो जाए। और आपने भी अपने जीवन में इस बात को जो है देखा होगा, इन परिस्थितियों को देखा होगा। और मॉरिशस में भी कई ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपने कर्तव्यों से पूरे देश की दशा और दिशा ही बदल दी।
0: और पता है प्रोफेसर जी, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होनी चाहिए वह है उत्साह।
1: जी,
0: इसीलिए कहा गया है श्रोताओं, उत्साहो बलवान आर्य, न अस्ति उत्साहात परम बलम, सोत्साहस्य च लोकेषु न किंचिदपि दुर्लभम। अर्थात उत्साह बहुत बलवान होता है और इससे बढ़कर, इससे श्रेष्ठ इस दुनिया में और कुछ नहीं। और जिनके पास उत्साह रूपी हथियार होता है जीवन में, उनके लिए इस संसार में कुछ भी कठिन नहीं। तो वेदव्यास के पास क्या था? उत्साह और ज्ञान
1: जी।
0: और इसके आधार पर उन्होंने एक मास्टरपीस, मतलब एक सर्वोच्च कृति का निर्माण किया। उसका नाम है महाभारत।

0: भारत।
1: जी आपसे एक प्रश्न है गुरु मिश्रा
0: जी, जी हाँ।
1: आप किसी व्यक्ति की सुंदरता देखते हैं या उसका आंतरिक गुण देखते हैं?
0: ये स्वाभाविक है कि मैं आंतरिक गुण ही देखता हूँ, विशेषता यही है, ये इसी की खोज मैं करता हूँ। अब देखिए, बहुत बड़े आचार्य हुए, आचार्य चाणक्य, वे सुंदर तो नहीं थे, कुरूप थे, लेकिन उसके पास क्या था? उनके पास था ज्ञान, और उसी ज्ञान से उन्होंने चंद्रगुप्त जैसे सामान्य व्यक्ति को सम्राट बना दिया
1: जी।
0: और पूरा देश सुंदर बना दिया।
1: और
0: तो कुरूपता नहीं देखनी चाहिए, ज्ञान देखना
1: जी
0: चाहिए।
1: और पूरे देश को सुरक्षित रखा,
0: सुरक्षित रखा।
1: कबीरदास एक बहुत बड़े संत कवि हुए हैं
0: जी,
1: उन्होंने भी कहा है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परत रहन दो म्यान
0: जी। हाँ,
1: यानी हमें व्यक्ति की जाति या उनके बाहरी रंग रूप वेशभूषा को ना देखकर उसके आंतरिक गुण को देखना चाहिए।
0: गुण को देखिए,
1: जिस तरह से हम तलवार की धार देखते हैं, ना कि हम उस तलवार के कवर को देखते हैं, म्यान को, कि वो कितना सुंदर है।
0: एकदम सही।
1: तो आप देखेंगे कि समाज में बहुत लोग ऐसे हैं जो यह सोचते हैं कि मैं सुंदर नहीं हूं, या समाज उनको कहता है कि तुम ये हो, नहीं ऐसा नहीं है।
0: देखिए, मैं तो कहूंगा, भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा है, सभी लोग सुंदर हैं उनकी दृष्टि से, चाहे कोई सांवला हो, चाहे कोई गोरा हो, सभी लोग सुंदर हैं। और अपने जीवन को आप कैसे प्रभावपूर्ण बनाएंगे, वो है कर्म से।
1: बिल्कुल,
0: श्रेष्ठ कर्म करिए और आप देखेंगे लोग आपके बारे में पूछेंगे, अरे यह व्यक्ति तो प्रथम स्थान प्राप्त करते जा रहा है अपने क्षेत्र में, आगे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से कर्म पर ध्यान दीजिए, चेहरे पर ध्यान नहीं, यही मेन है, यही मुख्य बात है।
1: बिल्कुल, और कभी भी हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम समाज हमें किस रूप में देख रहा है।
0: जी हाँ,
1: है ना, अपने रंग रूप वेशभूषा को लेकर हमें अपने आंतरिक गुणों को परिष्कृत करना चाहिए, उसे चमकाना चाहिए और सभी लोगों का भला करना
0: एक
1: चाहिए।
0: एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, दार्शनिक हुए, जिनका नाम था सुकरात
1: जी,
0: सोक्रेटिस के नाम से बहुत लोग उनको जानते हैं, दार्शनिक फिलोसोफर, वे भी कुरूप थे, लेकिन आज उनके विचार चारों ओर फैले हुए हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो कर्म से अपने विचारों से सभी लोगों को प्रकाशित।
1: सुकरात के बारे में कहा जाता है गुरु विश्वा कि वो हमेशा अपने सामने जो है एक दर्पण रखते थे, मिरर रखते थे और उसमें हमेशा अपना चेहरा देखते थे। तो एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी आप तो बहुत ज्यादा सुंदर भी नहीं हैं, तो आप क्यों बार बार अपना चेहरा देखते हैं? तो गुरु सुकरात ने कहा कि एक समय आएगा कि कोई भी मेरे चेहरे की बात नहीं करेगा, वो जो है मेरे कर्म की बात करेगा
0: जी।
1: तो मैं अपने कर्म से, अपने ज्ञान से, अपनी कुरूपता को ही मैं खत्म कर देना चाहता हूँ, इसलिए मैं बार बार देखता हूँ। तो यह है जीवन दर्शन,
0: जीवन दर्शन,
1: और जीवन को जानने और समझने की जो है यह कला है, इसे सबको महसूस करनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा कि वेद व्यास भी जो है बहुत ही काले थे
0: जी,
1: है ना, और वो इतने काले थे कि कृष्ण यानी बहुत काले,
0: श्याम रंग,
1: लेकिन उन्होंने अपने कर्म से क्या नहीं किया,
0: सब कुछ बदल दिया, परिवर्तित कर दिया
1: सब कुछ। वेद हो, महाभारत हो, या श्रीमद् भागवत गीता हो, अद्भुत
0: अनुपम कृति की रचना।
1: तो हमारे प्रिय श्रोतागण, अब समय आ गया है मुहावरे का। तो इस बार जो मुहावरे आपसे पूछे जाएंगे वह है नाक से जुड़े हुए मुहावरे। पहला है नाक ऊंची होना और दूसरा है नाक में दम करना। फिर से सुन लीजिए, नाक ऊंची होना, नाक में दम करना, इसका अर्थ हम आज नहीं बताएंगे, इसका अर्थ आप खुद खोजेंगे। पिछली बार के जो मुहावरे थे उसके अर्थ पर गुरु विश्वा प्रकाश डालेंगे। वह खाने पीने की चीज़ों से जुड़े मुहावरे थे, ऊंट के मुंह में जीरा।
0: जी हाँ, इसका अर्थ है जरूरत के मुकाबले बहुत कम वस्तु का मिलना। उससे संबंधित एक वाक्य है, श्रोताओं इसको ध्यान में रखिए, पहलवान को सुबह के नाश्ते में सिर्फ एक बिस्किट देना ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है।
1: बहुत अच्छा। और दूसरा है पेट में चूहे कूदना।
0: जी हाँ, इसका अर्थ है बहुत तेज भूख लगना। और वाक्य में इसका प्रयोग करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, सुबह से कुछ नहीं खाया, अब मेरे पेट में

0: चूहे कूद रहे हैं। इससे संबंधित चौथा एक छोटी सी कहानी है, कृपया इसका रसास्वादन भी कीजिए। रवि एक मेहनती छात्र था। वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर विद्यालय जाता था। एक दिन परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होने के कारण वह नाश्ता करना भूल गया। दोपहर तक पढ़ाई करते करते उसे बहुत तेज भूख लगने लगी। उसने अपने मित्र से कहा, सुबह से कुछ नहीं खाया, अब तो मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। मित्र ने मुस्कुराते हुए अपना भोजन उसके साथ बांट लिया। भोजन करने के बाद रवि को नई ऊर्जा मिली और उसने मन लगाकर पढ़ाई की। उस दिन उसने सीखा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए समय पर भोजन करना अति आवश्यक है। मेहनत के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी सफलता की कुंजी है।
1: सुंदर और छोटी सी कहानी रचने के लिए आपको हृदय से आभार गुरु विश्वा,
0: धन्यवाद।
1: अब श्रोताओं के लिए आमंत्रण संदेश भी है। हमारे प्रिय श्रोतागण, हर पुस्तक, हर शिक्षक और हर ज्ञानवर्धक अनुभव हमारे जीवन को नया दृष्टिकोण देता है। ज्ञान जितना बांटा जाता है उतना ही बढ़ता है और समाज को समृद्ध बनाता है। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा गुरु, शिक्षक, पुस्तक या प्रेरक व्यक्तित्व तो रहा है जिसने आपके विचारों और जीवन को नई दिशा दी हो? क्या आपने कभी अपने ज्ञान या अनुभव से किसी अन्य व्यक्ति का मार्गदर्शन किया है? अनकही एक कहानी आपको आमंत्रित करता है कि आप अपनी ऐसी प्रेरक कहानियां हमें लिखकर भेजें जो शिक्षा, ज्ञान, गुरु परंपरा, संस्कृति और मानवीय मूल्यों से जुड़ी हों। आपकी चुनी हुई कहानियां हमारे रेडियो कार्यक्रम में प्रसारित की जाएंगी और आगे चलकर एक पुस्तक का हिस्सा ही बनेंगी। तो आइए, महर्षि वेद व्यास से प्रेरणा लेते हुए हम यह संकल्प लें कि ज्ञान अर्जित करेंगे, उसे सुरक्षित रखेंगे और उदारतापूर्वक समाज के साथ साझा करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां भी हमारी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत से लाभान्वित हो सके। अपनी रचनाएं भेजिए professorrasekhar@gmail.com पर। हमसे जुड़े रहिए, सुनते रहिए, लिखते रहिए और अपनी सोच को स्वर दीजिए, क्योंकि कौन जानता है कि आपकी प्रेरक कहानी किसी के जीवन में ज्ञान का नया दीप प्रज्वलित कर दे। धन्यवाद, नमस्कार।
0: प्रोफेसर राज जी, बहुत बहुत धन्यवाद इन महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए। श्रोताओं, कहा गया है, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्ला अरविंदाय तपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। अर्थात, हे विशाल बुद्धि वाले महर्षि वेद व्यास, आपको मेरा सादर प्रणाम है। आपके नेत्र पूर्ण रूप से खिले हुए कमल के दलों के समान विशाल और सुंदर हैं। आपने महाभारत रूपी ज्ञान तेल से परिपूर्ण ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित कर संपूर्ण मानवता के लिए सत्य, धर्म और विवेक का प्रकाश फैलाया है। महर्षि वेदव्यास अपनी अनुपम कृति के माध्यम से मानव को यह शिक्षा दे रहे हैं कि ज्ञान के दीप से जीवन को प्रकाशित करते हुए मानव कल्याण के मार्ग पर हमेशा अग्रसित होना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, अब हम अपने कार्यक्रम के अंत तक आ पहुंचे हैं। अब विश्वानंद और प्रोफेसर राजशेखर को आजा दीजिए। अगले सप्ताह एक ऐसी ही रोचक व शिक्षाप्रद कहानी लेकर आप लोगों के समक्ष हम उपस्थित होंगे। आप सभी लोगों ने हमें ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुशः धन्यवाद और नमस्कार।

0: हुआ तेल था। ये पाइपलाइन काम नहीं कर रहा था। पोर्ट इमरजेंसी सर्विस की टीम 24 घंटे तैनात है, जिसकी वजह से इस रिसाव पर नियंत्रण पाया जा सका। हाइड्रोकार्बन के रिसाव को रोकने के लिए 300 मीटर लंबे अब्सोर्बेंट बैरियर तैनात किए गए हैं। एक क्लैंप ने पाइपलाइन पर रिसाव को पूरी तरह से रोक दिया। तेल जेटी पर लंगर डाले हुए जहाज एमवी ऑप्टिमस भी हाइड्रोकार्बन से प्रभावित हुआ था। समुद्र के इस विशालकाय जहाज को रवाना होने से पहले भारी तेल के सभी निशानों को हटाने के लिए एक गहन सफाई से गुजरना होगा। पर्यावरण मंत्रालय के डिविजनल एनवायरनमेंट ऑफिसर लुकमान माको कहते हैं, मंगलवार से लीकेज रुक गया, उसकी मरम्मत की गई, अब बाकी के तेल की सफाई की जा रही है। जहाज की सफाई करना बाकी है, पर्यावरण पुलिस इस पर जांच करेगी, हम भी फॉलो अप करेंगी। सफाई के इस अभियान के लिए लगभग 15 लोगों को जुटाया गया था, जो 12 घंटे तक चला। ये अभ्यास आज बुधवार दोपहर 2 बजे समाप्त हुआ। नेशनल एनवायरमेंटल लेबोरेटरी द्वारा पानी के नमूने मिल गए हैं, विश्लेषण चल रहा है।
1: देश का सबसे बड़ा सड़क मूल ढांचा M4 के निर्माण कार्य इस साल के आखिर से शुरू किए जाएंगे। 30 किलोमीटर लंबी ये सड़क उत्तर और पूर्व तथा हवाई अड्डे को जोड़ेगी। भारत सरकार की मदद से 30 महीनों में ये परियोजना पूरी होगी। मध्य पूर्व के तनाव के बावजूद एमिरेट्स मॉरिशस समेत अपनी गतिविधियां जारी रख रही है और निवेश करती जा रही है। आज इस विमानन कंपनी के एक डेलीगेशन ने पोर्टवी में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने सचिव सागर राम गुलाम हवाई अड्डे पर एक एमिरेट्स लाउंज को खोलने के सिलसिले में बात की। आते सितंबर में उद्घाटन किया जाएगा। करप्शन के खिलाफ संघर्ष में महारत बनता एक जरूरी पहलू है कल पोर्टवी के ट्रेजरी बिल्डिंग में सऊदी अरब की ओवरसाइट एंड एंटी करप्शन अथॉरिटी के डेलीगेशन ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से रस्मी मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के बीच इस सेक्टर में सहयोग मजबूत करने की संभावनाओं पर बातचीत हुई। ज्यादा जानकारी वीर हिमांसी बुरन के साथ।
0: सऊदी अरब के ओवरसाइट एंड एंटी करप्शन अथॉरिटी के प्रतिनिधिमंडल ने, जिसके नेतृत्व उनके अध्यक्ष माजिन बिन इब्राहिम अल कामुस कर रहे हैं, प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सहयोग को और मजबूत करने पर विशेष रूप से चर्चा की। इस संगठन के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करना सबसे महत्वपूर्ण बना हुआ है। डॉक्टर नासर अबाल खैल बताते हैं,
2: इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इज इंस्ट्रूमेंटल इन द फाइट अगेंस्ट करप्शन।
0: भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी लक्ष्य के साथ ओवरसाइट एंड एंटी करप्शन अथॉरिटी तथा FCC के बीच एक प्रोटोकॉल संधि पर हस्ताक्षर किए गए। हमें आशा है कि इससे दोनों संस्थाओं की मदद होगी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में और सूचनाओं के आदान प्रदान में।
2: Not only on preventing corruption, but also on exchanging intelligence.
0: ग्लोबी नेटवर्क के सदस्यों के रूप में सऊदी एजेंसी और फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय के तत्वावधान से सहयोग कर रहे हैं।
2: With the political support,
0: सऊदी अरब और मॉरिशस के राजनीतिक समर्थन की बदौलत से हमें विश्वास है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में मदद कर सकेंगे। द्विपक्षीय संबंधों या बहुपक्षीय संबंधों के मद्देनजर ये कदम उठाए जा सकते हैं। इस दौरे के दौरान क्रिप्टो करेंसी से जुड़े अपराधों की जांच पर भी चर्चा की गई।
1: सऊदी डेलीगेशन का मॉरिशस दौरा आज ख़त्म हुआ। अरब सल्तनत की डेलीगेट सकारात्मक है। आज मिशन के मेंबरों ने पर्यटन मंत्री गिशाओ जवाल से मुलाकात की। सऊदी और अरब मुल्कों के लिए मॉरिशस को एक मंजिल के तौर पर और ज़्यादा उभारने के लिए डेलीगेटों ने अपनी तसल्ली जताई है। ज़्यादा जानकारी करुणा लालू के साथ।
3: मॉरिशस में हफ्ते भर का प्रवास, जिसके दौरान कई लग्जरी होटलों और पर्यटन स्थलों का दौरा किया गया। पर्यटन सेक्टर के कोई 10 पेशेवरों के प्रतिनिधिमंडल ने इस बुधवार को पर्यटन मंत्री गिशाओ जवाल से मुलाकात की। डेलीगेशन ने मॉरिशस में पर्यटन संभावनाएं खोजने के अपने मिशन का जिक्र किया।

0: Russien et aussi par l'harmonie qui régnait dans nos pays.
1: सऊदी अरब और मॉरिशस पक्षों के बीच बातचीत के दौरान मॉरिशस में सऊदी अरब और खाड़ी देशों से आने वाले पर्यटकों में वृद्धि का जिक्र किया गया।
0: Quand je arrive en Maurice, c'est dans le low season pour nous, qui est très important, qui nous gagne dans le low season au début de l'année, c'est-à-dire à partir d'avril, mai, juin, juillet, où capable de meubler sa low season comme on a fait l'année dernière, quand nous gagnons une saison record, nous allons dire avec 1 436 250 touristes.
1: मॉरिशस के लिए पर्यटन एक अहम स्तंभ है, ऐसे में सऊदी अरब और खाड़ी देशों से उच्च कोटि के पर्यटकों का स्वागत करना जरूरी रहता है, जो आरामदेह होटलों के लिए खर्च करने की क्षमता रखते हैं।
2: जैसे टिशोगु ने इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन के नए अध्यक्ष की हैसियत से स्टेट हाउस रेज्वीमी गणराज्य के राष्ट्रपति के सामने शपथ ली, उनकी 4 सालों की कार्यावधि होगी। पूर्व अटॉर्नी जनरल ने अपनी नई जिम्मेदारियों की प्राथमिकताओं को भी आम किया। और गैर कानूनी तस्करी, अवैध मछली मार और समुद्री प्रदूषण, समुद्र के खतरे सरहदों के पार जा रही है, इन सब का सामना एक ही हल के जरिए किया जाना चाहिए। इसी सिलसिले में आज से आते 24 जुलाई तक हिंद महासागर आयोग ने यूरोपीय संघ के सहयोग से ईयू मैरीटाइम सिक्योरिटी वीक का आयोजन किया। पोर्ट में इलाके के राष्ट्र प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय संगठन समुद्री सुरक्षा में सहयोग मजबूत करने के लिए एकत्र हुए। ज़रा जानकारी इस रिपोर्ट में।
3: अपने विशाल समुद्री क्षेत्रों के साथ हिंद महासागर के देश कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध रूप से मछली पकड़ना, समुद्री प्रदूषण। 2025 में इस क्षेत्र में 1100 से अधिक समुद्री घटनाएं दर्ज की गई थीं। ये ऐसे खतरे हैं जो हर देश के भीतर कई सेवाओं और एजेंसियों को सक्रिय करते हैं, लेकिन इनके लिए इलाकाई स्तर पर भी सहयोग की आवश्यकता है।
4: La solution, c'est la coopération, entre les États.
3: हिंद महासागर आयोग के महासचिव डॉक्टर इब्राहिम नोबिया रिशो ने कहा, समाधान है राज्यों के बीच सहयोग। कोई भी देश अकेले इन चुनौतियों का सामना नहीं कर सकता। आईओसी का लक्ष्य है इलाकाई सहयोग को बढ़ावा देना। एक विशाल समुद्री क्षेत्र से घिरे द्वीप राष्ट्र मॉरिशस के लिए ये निगरानी बेहद जरूरी है। ये सीमाओं, समुद्री संसाधनों और समुद्र से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों की रक्षा करने में मदद करती हैं।
5: 2.3 मिलियन किलोमीटर।
3: मंत्री धनंजय रामफल बताते हैं, 2.3 मिलियन स्क्वायर मीटर का हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जिसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। इलाके के सभी संबंधित देशों को सबसे पहले अपने कानूनों को रेगुलराइज करने चाहिए और अपनी संस्थाओं को मजबूत करनी चाहिए। यूरोपीय संघ कई दशकों से समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी क्षमता को मजबूत करने में आईओसी और इलाके के देशों का साथ दे रहा है। ये सहयोग पहले ही परिणाम दे रहा है।
6: Il y a une architecture maritime qui a été créée grâce à la COI à l'Union européenne, où on a 2 centres de coordination, un à Madagascar, autre à Maurice. On voit des résultats, on voit des saisies sur des trafics de drogue ou autre. Je pense qu'il y a un engagement politique de tous les pays de la région, avec notre appui, pour continuer à renforcer ces résultats.
3: कार्यशाला 24 जुलाई तक जारी रहेगी, ताकि राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और परिचालन साझेदारों को अपने कार्यक्रमों और कार्रवाइयों को बेहतर ढंग से समन्वित करने की अनुमति मिल सके।
2: लेखक मुंशी प्रेमचंद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हिंदी स्पीकिंग यूनियन ने प्रेमचंद दिवस मनाया। मौके पर सेयर्श कॉन्स्टेंटिन थिएटर वाकवा में मुंशी प्रेमचंद की लिखी बूढ़े काकी को पेश किया गया। अवसर पर प्रेमचंद के प्रशासक और हिंदी प्रेमी उपस्थित थे। जैसे कि हम बता रहे थे, मध्य पूर्व के तनाव के बावजूद एमिरेट्स मॉरिशस में अपनी गतिविधियां जारी रख रही है और निवेश करती जा रही है। आज इस विमानन कंपनी के एक डेलीगेशन ने पोर्टी में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से रस्मी मुलाकात की। ज़्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में।
3: पोर्टलुई में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और एमिरेट्स एयरलाइंस के कई अधिकारियों के बीच मैत्रीपूर्ण मुलाकात हुई। इस दौरान मध्य पूर्व में भू राजनीतिक तनाव से

0: घिरे अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में मॉरिशस और दुबई के बीच विमान सेवाओं पर चर्चा की गई। वेस्ट एशिया इंडियन ओशन एमिरेट्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऐसा सुलेमान अहमद बताते हैं,
1: वी केम हियर जस्ट टू मीट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड जस्ट टू थैंक हिम फॉर ऑल द सपोर्ट इवन विद एवरीथिंग दैट वाज गोइंग अराउंड ड्यूरिंग द जियोपॉलिटिकल इश्यूज। You know, we were always here at the forefront and we've had great support from the island. And we also made sure that, you know, even when the Honorable Prime Minister had called us and asked us to make sure that we do have flights that will come back to the island carrying Mauritian nationals from all across the world, we were there. We made sure that we are committed. We went immediately from the daily flight that we had. Now we have a double daily flight into Mauritius.
0: सर शिव सागर रामगुलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक नए एमिरेट्स लाउंज के जल्द खुलने पर भी चर्चा हुई। ये लाउंज कंपनी की नई प्रीमियम अवधारणा का हिस्सा होगा।
1: One of the new investments will be a new dedicated lounge at the airport. That's going to be the first of its kind, specifically for Mauritius and even for us, for all the network and all the lounges that we own all across the world. This is going to be the new standard. So we're very excited about it. Hopefully September it should be ready.
0: ये निवेश मॉरिशस में अपनी उपस्थिति को स्थायी रूप से मजबूत करने की एमिरेट्स की इच्छा की पुष्टि करता है। इस एयरलाइन ने 2002 में हमारे यहाँ परिचालन शुरू किया था।
2: और आज सतीश वगू ने इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन के नए अध्यक्ष की हैसियत से स्टेट हाउस कजवी में गणराज्य के राष्ट्रपति के सामने शपथ ली। उनकी 4 सालों की कार्यावधि होगी और पूर्व अटॉर्नी जनरल ने अपनी नई जिम्मेदारियों की प्राथमिकताओं को भी आम किया। जरा जानकारी इस रिपोर्ट में।
3: पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन
4: सतीश फोगू की एक प्रमुख जिम्मेदारी होगी पुलिस फोर्स पर जनता का भरोसा फिर से बहाल करना। उन्होंने बताया कि हर साल संस्था द्वारा करीब 750 शिकायतें दर्ज की जाती हैं। इनमें ज्यादातर पुलिस बर्बरता और अधिकार के दुरुपयोग से संबंधित हैं।
3: Et aussi, il y a un manque de respect, de d'écouter. Donc, nous avons été qui m'aillèrent pour faire des choses qui, justement, pour renforcer sa relation entre le public et la police. Et ça, c'est peut-être nous avons été au niveau training, qu'on recrutait même au début.
4: 4 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त सतीश फोगू पूर्व जज देवयानी बिसुंदोयाल की जगह इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन के नेतृत्व का भार संभालेंगी।
2: विदेश में फ्रांस ने जनवरी 2027 से 15 साल से कम उम्र वाले लोगों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाने का कानून पारित किया है। इन प्लेटफॉर्म्स पर नौजवानों को ब्लॉक करने वाला वो पहला यूरोपीय देश बन गया है। इस कानून के तहत सोशल मीडिया पर एक्सेस पाने के लिए फ्रांस में बसने वाले सभी लोगों को अपनी उम्र बतानी पड़ेगी। राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने इस कदम का स्वागत किया है। भारत में शिक्षा प्रणाली के खिलाफ प्रदर्शन के संदर्भ में विपक्ष नेता राहुल गांधी को रिहा किया गया है। छात्र प्रदर्शन कारी संसद के सामने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। परीक्षाओं में लीक संबंधी समस्या के चलते ये स्थिति पैदा हुई है। करीब 2 मिलियन मेडिकल छात्रों को फिर से इम्तिहान देना पड़ा।

देश विदेशी खबरों के बाद आइए मौसम का हाल सुनते हैं। दक्षिण की तरफ पाए जा रहे सक्रिय बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रही है। पूर्वानुमान आज रात और कल सुबह देश की दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल प्लेटों पर बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा होगी। कल दोपहर बाद के समय उत्तरी इलाकों पर बादल छाए रहेंगे और रह रहकर वर्षा होगी। तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा और समुद्र में 2 मीटर तक ऊंची लहरें भी

0: तो इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। इसे आप तक पहुंचाने में हमें फैजान का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। रॉबिन्सन रोड क्यूपिप में, रॉबिन्सन रोड क्यूपिप में 55 साल के 55 ईयर्स ओल्ड के श्री रविंद्रनाथ बख्तावो, श्री रविंद्रनाथ बख्तावो जो बेबी नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े दस बजे उनके घर रॉबिन्सन रोड क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगागा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। नंबर 23 बाउंड्री स्ट्रीट रोजल में 93 साल की 93 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती लक्ष्मीन पुराऊ पैदाशी नाम आकालू और जो लक्ष्मीन लोलुन नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े दस बजे उनके घर नंबर 23 बाउंड्री स्ट्रीट रोजल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोडुगाव की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। रॉयल रोड रिविया जुपस में 38 साल के 38 ईयर्स ओल्ड के श्री नितिन चौधरी जो नीतीश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के दस बजे उनके पिता श्री धर्मानंद चौधरी के घर रॉयल रोड रिविया जुपस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौहाबो रिविया जुपस की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। इम्पास नोत्रदाम माई बोमी सेव मार्क्स सुपरमार्केट के पास 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के श्री ज्ञानदेव पिहारी जो बाबा नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी पिहारी के घर एम्पास नोत्रदाम माईबो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोवालों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन Tomorrow at 11 AM. EDC Balance Road, Plaine-Manyomé, 45 साल के 45 ईयर्स ओल्ड के श्री देवराज पेयती जो शेप नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके भाई श्री देव पेयती के घर EDC Balance Road प्लेन-मानियों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेन-मानियों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। रू लुई लाजर ओकुलेमी 92 साल की 92 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती साबित्रा हीराला जो चाची साबित नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के दो बजे उनके बेटे श्री आनंद हीरालाल के घर रुलवीला से ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगागा की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM। नंबर 24 प्रिंस अल्फ्रेड स्ट्रीट थ्रोंगबोमी 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड के श्री मुगम गोविंदन गुंडन जो नंदा नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के दस बजे उनके भाई श्री धर्माराजन गोविंदन गुंडन के घर नंबर 24 प्रिंस अल्फ्रेड स्ट्रीट थ्रोंगबो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्रोंगबो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: Club Center, 95.5. North, South, 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड गर्ल्स, डियर ऑडियंस, आप सभी को अजय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार। शाम के 6:30 बज रहे हैं। वेलकम टू योर म्यूजिकल वर्ल्ड और इन फ्री रेडियो मनोरंजन एमबीसी का म्यूजिकल चैनल 94.6 and 98.2 FM। जी हाँ, रेडियो मनोरंजन पर हमारा आपका साथ है अभी से लेकर रात के 11 बजे तक। अभी से लेके रात के 7 बजे कुछ भावगीत, नई सोच सेगमेंट में, उसके बाद दिलों की आवाज़ 7 बजे से रात के 9 बजे तक, और रात के 9 बजे से 11 बजे तक भोजपुरी तड़का। सो आशा करते हैं कि आप लोग हमारा साथ ज़रूर देंगे। आज है बुधवार, बुधवार 22 जुलाई 2026। आशा करते हैं आज का दिन अच्छा रहा आप लोगों के लिए। तो चलिए कुछ भावगीत हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं कि हर इंसान जब इस दुनिया में आता है तो वो अपनी तकदीर अपने साथ लाता है। तकदीर में जो लिखा होता है वही होता है। इंसान लाख कोशिश कर ले पर अपनी तकदीर को 100% तो नहीं बदल सकता। हाँ, कोशिश कर सकता है अपनी तकदीर को बदलने के लिए थोड़ा बहुत, पर जो तकदीर में होता है वही होकर रहता है। इंसान बेबस है अपनी तकदीर के आगे।

किसी ने क्या खूब कहा है कि ये जिंदगी एक ख्वाब है, कुछ भी सच नहीं है यहाँ पर, जो भी हम देख रहे हैं वो एक सपने के समान है, मोह माया का ये संसार। क्या ढूंढते हैं यहाँ पर हम, क्या मिलता है यहाँ पर, रिश्ते नाते, ये दुनिया ये संसार सब झूठे हैं, जिंदगी बस एक ख्वाब है और कुछ पल की इस ख्वाब को जीते हैं और बस यह ख्वाब एक दिन समाप्त हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए।

0: सच है क्या, सब सच है।
1: एक पुरुष के लिए उसके लिए एक बहुत ही बड़ा दिन होता है जब वो जीवन में पहली बार पिता बनता है, पापा बनता है। और बेशक घर में जब बच्चे का आगमन होता है तो कितनी खुशियां होती है, सभी लोग खुशियां मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। और ये तो भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है कि जो है लोग पेरेंट्स बनते हैं। माँ बाप बनना जो है भगवान की एक देन है और इस देन को अपनाना चाहिए।

जो जन्म लेता है यहाँ पर उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई भी मृत्यु से बच नहीं सकता। पर हम सभी जानते हैं कि मृत्यु तो एक दिन आनी है, परंतु मरने के डर से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। जीना पड़ता है, अगर अपने लिए ना सही तो औरों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए हमें जीना पड़ता है। सो ये मत सोचिए कि मौत एक दिन आनी है तो कैसे जिया जाए, बस आपको जीना है, जब मौत आएगी तब देखा जाएगा। अभी जिंदगी को जी भर के जी लीजिएगा।

कौन सा वो इंसान है जिसे पैसे नहीं चाहिए? हर किसी को चाहिए पैसा। पैसा है तो सब कुछ कर सकते हैं, अगर कोई बीमार है तो उसका इलाज करा सकते हैं। पैसा है तो आप उच्च शिक्षा कर सकते हैं। पैसा है तो आप बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकते हैं। पैसा है तो आप एक घर खरीद सकते हैं। पैसे की बहुत अहमियत है और पैसा ज़रूरी है जीने के लिए। और पैसे को हम लक्ष्मी भी कहते हैं और पैसे का हम स्वागत करते हैं। और अकलमंद इंसान वो है जो पैसे का सदुपयोग करता है। पैसा कभी हमारे हाथ में है, कभी आपके हाथ में है, और कभी कभी ये पैसा समाप्त हो जाता है। जब पैसा समाप्त हो जाता है तो हम रोते हैं, विलाप करते हैं, पर पैसा जो है बड़ा ही चंचल होता है। इसलिए कहते हैं लक्ष्मी चंचला होती है।

आवाज के नेक दोस्तों, इसी गीत के साथ ही भाव गीतों पर आधारित प्रोग्राम नई सोच यहीं पर समाप्त होता है। दो मिनट में यह प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा और हम बढ़ेंगे अगले प्रोग्राम की ओर। अगला प्रोग्राम होगा दिलों की आवाज, जहां पर आप फोन करके अपनों के नाम गीत मांग सकते हैं और टिकटॉक पेज पर भी आप अपने कमेंट्स भेज सकते हैं, गीत का डेडिकेशन कर सकते हैं। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, सुनते रहिए प्यार से ऑरियन फ्री एमबीसी रेडियो मनोरंजन।

0: continuous music. RM3.
1: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज.
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइस एंड गर्ल्स, डियर ऑडियंस, आप सभी को अजय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो. यस, नाउ इट्स डेडिकेशन शो, दिलों की आवाज. हमारा दिल आपके पास है, आपका दिल हमारे पास है, क्या बात है. अब दिल दिल से बातें करेंगे, हैं कि नहीं. यस, एंड यू नो यू हैव टू सेंड, यू कैन कॉल अस इन 4028070, या फिर हमारे टिकटॉक पेज पर आप गीत मांग सकते हैं. ये पहला गाना, जी हाँ, दिखते ना फिल्म का नाम है दादला, और ये गीत हम चलाएंगे रजनी महाबीर के नाम, सतीदेव यादव, यह गीत आपके नाम भी, दिलवंती सनातन, यह गीत आपके नाम, और यही गाना अरुणा के लिए, संतोष लामा, और राइट, और ये गीत अरुणा आपके पूरे परिवार के लिए, गणपत, लवीश, भावीश, आप सभी लोग हैं प्लेन मायों से. ऑलराइट, योहान, यह गीत आपके दोस्त प्रवीण के नाम, आप मॉरिशस में. सो प्रवीण, हैप्पी बर्थडे, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद है. यह गीत हम चलाएंगे फरीदा के नाम, खुशबू, यह गीत आपके नाम भी, अखिलेश दोनों, आप रहते हैं फ्लोरियाल, अखिलेश दोनों, यह गीत आपके नाम भी, बहुत बहुत प्यार के साथ. भानु तारू, यह गीत आपके नाम, और यही गीत हम चलाएंगे अनिष्टा राम तोहल के नाम, दानुष बाबना जी, यह गीत आपके नाम भी, फिर क्लोजिया लिबास, यह गीत आपके नाम हम चलाएंगे. दानुष बाबना, हेलो, होप यू एंजॉइंग द शो. नीतीश बिगन, और आपके बच्चों के ये भी, यह गाना ललित मोहन भट्ट, यह गीत आपके नाम भी, नीतीश बिगन काटकोपो से है. अरुण कुमार, नदानी जगरू, ममजिल शान गुडलैंड से, यह गीत आपके नाम भी जाएगा, और यह गीत हम चलाएंगे विजयंती जदुनंदन के नाम. ऑलराइट, लवना, यह गीत इंद्रानी बिगू के नाम, आप सब बिगू परिवार के जो पहुंचाक रहते हैं. तो चलिए एक साथ सुनते हैं यह प्यारा सा गाना, फिल्म का नाम है लाडला.

धक धक दिल धक रहा है मुझको प्यार दे। जहाँ बहुत ही प्यारा सा गाना था फ्रॉम द मूवी लाडला, और अगला गीत है ऐसी दीवानगी, फिल्म दीवाना का गाना। दोस्तों हम वैसे तो रोज़ रेडियो पर हम बहुत सारे गाने चलाते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि एक गीत को लिखने में कितना समय लगता है? जी हाँ, शब्द, उसमें शब्द डाला जाता है, संगीत डाला जाता है, राग ताल सुर मिलाया जाता है, और गीत के लिखने वाले होते हैं गीतकार, उसे हम अंग्रेज़ी में लिरिसिस्ट कहते हैं, और फिर संगीतकार म्यूज़िक कंपोज करता है, फिर गायक, जी हाँ वो भी गाता है। सो कभी कभी एक गीत बनने में एक सप्ताह, कभी दो महीने, कभी तीन महीने लग जाते हैं एक गीत बनाने में, क्या बात है। तो चलिए सुनते हैं अगला गाना, ऐसी दीवानगी। ये गीत देवब्रज सार के नाम, वनिश्री बंदुआ यह गीत आपके नाम भी हम चला रहे हैं। यही गाना चलेगा सन के नाम, कविता यह गीत आपके नाम भी, प्रभा यह गीत आपके पति और बेटे के नाम, और सन यह गीत हम चला

0: आएंगे आपके पूरे परिवार के लिए। फिर यही गाना जीएस के नाम पार्वती नोयन, यह गीत आपके नाम भी रवि बंगारू, हेलो जी, यह गीत आपके नाम हाय मिंता, कृष्णा थापा, होरीलाल दिनु कैसे हैं आप, शुभ नमस्कार भाई जी, ये गीत आपके नाम, आपकी पत्नी, आपकी बेटी, बहू और सब दिनु परिवार के नाम प्रमोताबा। अंजुलि, यह गीत आपके नाम, हाय नीलिमा, यह गीत आपके नाम खासम खास बहुत प्यार के साथ। और सुदेश जसवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है सुदेश जसवा, सो गीत आपके नाम भी। और यही गाना हम चलाएंगे इन सब दोस्तों के नाम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खजोले से है कलकत्या परिवार, फिर जिराखंड परिवार, परिवार महाराणा प्रताप खजोले थोब्रिज से, हरकु परिवार, चाचा आत्माराम और चाची प्रभावती के लिए। चाची प्रभावती नोवेल फोन से हमारा साथ दे रही है। और अभी एक कॉल है, चलिए उस कॉल को लेते हैं। हेलो हेलो, हम आपको सुन रहे हैं। हेलो,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, आपका नाम?
1: मैं सीता हूँ, पैदे लास्कर।
0: हाँ सीता जी, आपका स्वागत है, बोलिए।
1: हाँ, मुझे ये गीत पसंद है।
0: कौन सा?
1: दिल में तेरे याद सनम, लब पे तेरा नाम, तेरे सिवा मुझको किसी और से क्या काम।
0: फिल्म का नाम क्या है?
1: मुझे तो याद नहीं, तुम खोजो।
0: गीत कैसे हैं? दिल में तेरे,
1: दिल में तेरे याद सनम, लब पे तेरा नाम, तेरे सिवा मुझको किसी और से क्या काम।
0: क्या बात है, शाबाश।
1: हाँ।
0: आप बहुत अच्छा गाती है।
1: हाँ।
0: और ये गीत किसके लिए आप चलाएंगी?
1: हमार भाई।
0: ओके।
1: हमार भाई, हमार बहिन लोग कहते हैं।
0: हाँ, वो लोग अभी हमें सुन रहे हैं।
1: तोहरों खातिर मांग दुआ था।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हो सकता है, हो सकता है तुम्हें भी खुशी मिल जाए, ये डरावना डरावना बात करके आदमी को डरा देते हो।
0: जो संडे का प्रोग्राम चलता है। ऐसा भी होता है,
1: इसलिए मैंने खुशी के बात मांगा।
0: प्रोग्राम ही ऐसा है, ऐसा भी होता है। आप सुनते हैं हर संडे को?
1: रोज सुनता हूँ।
0: नहीं, वो प्रोग्राम चलता है केवल
1: संडे। मुझे प्यार है गीत से बहुत।
0: ओके ओके, आपको गीत से बहुत प्यार है। सो चलिए हम आपके नाम करेंगे अगला गाना, ठीक है? बहुत धन्यवाद आपने फोन किया। हाँ, ऐसा भी होता है, प्रोग्राम चलता है संडे को शाम के 3 से 4 बजे, जहाँ पर हम डरावनी अद्भुत सनसनी खबरें चलाते हैं। ओके, तो चलिए एक साथ सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। फिल्म का नाम है दीवाना, ऐसी दीवानगी।

कहते हैं इसमें ना टकला गीत ये मेरा दिल तो पागल फ्रॉम द मूवी गर्दिश और यह गाना हम चलाएंगे सुनाल तिलक के नाम श्यामा महिराली यह गीत आपके नाम भी गुराब जी फिर यही गीत विष्ट के नाम और आप कहते हैं कि यू एंजॉइंग द म्यूजिक एंड एंजॉइंग द हॉलीडेज विद योर फैमिली मेम्बर्स ऑलराइट विष्ट एंजॉय दिस म्यूजिक और फिर यही गीत हम चलाएंगे एक महिला के नाम उनके भाई उत्तम जो है बीमार है अस्पताल में सो महिना हम दुआ करते हैं कि आपका भाई उत्तम जल्द ठीक हो जाए वी विश हिम गुड रिकवरी और सभी श्रीनाल तिलक की ओर से सभी टीचर और स्टूडेंट के नाम अगला गीत विष्ट की ओर से गर्दिश का गाना बाबूलाल और पात्रिशो परिवारों के नाम ऑलराइट और यही गाना हम चलाएंगे ओके श्रीनाल की ओर से भाई श्रवण भाभी कृति अभिनव कियान नव्या एंड द होल तिलक फैमिली जो हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं थैंक यू जी यह गीत हम चलाएंगे जिया के नाम हाय जिया फिर राधा गजाधर हमारा साथ दे रहे हाय मधु जी शोभा दुखी और विसन हमारा साथ दे रही है ऑलराइट सो दोस्तों आजकल स्कूल के छुट्टियां हैं बच्चे घर पे हैं सो आप लोग जानना चाहते होंगे कौन सी मूवीज सिनेमा घरों में चल रही है सो दो तीन मूवीज है एक है वेलकम टू द जंगल दूसरा है अल्फा और तीसरी मूवी है धमाल चार सो बच्चे परिवार सहित इन तीनों फिल्मों को देख सकते हैं वेलकम टू द जंगल अल्फा और धमाल चार वाओ कॉमेडी से भरपूर एंड वेलकम टू द जंगल जी हाँ ये फिल्म भी बहुत अच्छी है अल्फा इज ए एक्शन पैक मूवी यस सो इट डिपेंड्स अगर आपको एक्शन पैक मूवी अच्छी लगती है या आपको कॉमेडी की फिल्में अच्छी लगती है सो बच्चों को ले जाइए स्कूल की छुट्टियां हैं उन्हें फिल्में दिखाइए सिनेमा घरों में अभी के लिए हो जाइए प्यार सा गाना फ्रॉम द मूवी गर्दिश

0: इस समय आप और एम्प्री रेडियो मनोरंजन से सुन रहे प्रोग्राम दिलों की आवाज यस 4028070 पर फोन कर सकते हैं या हमारे टिकटॉक पेज पर एसएमएस कर सकते हैं और अभी रात के 4:30 बज रहे हैं वेलकम टू माय शो योर मस्त इवनिंग शो दिलों की आवाज ऑन 94.6 98.2 FM पर दोस्तों हर किसी को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए रोज़ाना कसरत करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जी का सेवन करना चाहिए क्योंकि आजकल बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त है हमारे लोग और सुबह अगर आपको मौका मिले तो जाइए जॉगिंग के लिए मॉर्निंग वॉक के लिए बहुत अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए अगला गाना ओ मेरी जान फ्रॉम द मूवी फिल्म का नाम जान तेरे नाम ऑलराइट सो जान तेरे नाम फिल्म का गाना हम चलाएंगे कुछ ही समय में अभी एक फ़ोन है चलिए हम फ़ोन कॉल लेते हैं अनिता जी प्रीकॉम फ्लाग से हाय अनिता जी हेलो ओके कोई बात नहीं सो अनिता जी प्रीकॉम फ्लाग से है और बेशक हमारा साथ दे रही है थैंक यू हमारा साथ देने के लिए और इस समय बहुत सारे लोग हमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं टिकटॉक पेज पर और रेडियो मनोरंजन थैंक यू हमें देखने के लिए हमें सुनने के लिए भी और अनिता जी यस ऑलराइट प्रीकॉम फ्लाग से लेट मी टेक द कॉल हेलो
1: नमस्ते प्रताप जी
0: नमस्ते अनिता जी कैसे हैं आप
1: हम ठीक है और आप कैसे हो
0: एकदम ठीक ठाक और अभी
1: ब्यूटीफुल प्रोग्राम
0: थैंक यू सो स्वीट ऑफ यू
1: हमें बहुत अच्छी लगती है हमें रोज इंतजार करती हूँ कि कब आएंगे ये प्रोग्राम
0: सैटरडे को भी सैटरडे को सुनती है ना सुबह सुनती है
1: सैटरडे सुबह को शाम को
0: और वो जो संडे को आता है ऐसा भी होता है
1: जी हाँ हमें बहुत अच्छी लगती है प्रोग्राम सुनने के लिए रेडियो नहीं तो हम कुछ भी नहीं
0: हाँ अगर आप हैं तो रेडियो है आप नहीं तो रेडियो नहीं है ना
1: ओके थैंक यू सभी आपकी तरह बात करती तो बहुत अच्छी होती
0: कितनी अच्छी बात होती अगर हर लोग प्यार से एक दूसरे से मिलते थे ना
1: जी हाँ रेडियो के माध्यम हम आपको जानते नहीं आप तो हमको जानते हैं लेकिन रेडियो
0: रेडियो के माध्यम से एक दूसरे को जानते हैं
1: एक बड़ी परिवार है
0: हाँ एमबीसी परिवार ही तो है कितने सालों से 25 साल हो गए रेडियो में काम करते करते 25 साल
1: सच्चे
0: तब मैं 18 साल का था व्हेन आई जॉइन एमबीसी
1: लेकिन हमें

0: आपकी प्रोग्राम, जब आप कैसे कहती है मनोरंजन प्रोग्राम, तब हम आपको जानती है। पता नहीं
1: पहले आप नहीं सुनते थे ताल एफएम पर, शुगर एफएम, ताल एफएम?
0: हाँ नहीं, हाँ मैं बेस एफएम,
1: हाँ
0: बेस एफएम और क्या रेडियो मॉरिशस,
1: हाँ तो ये सभी चैनल एक ही है, यही एमबीसी का है, मुका का।
0: हाँ हाँ, लेकिन कभी शायद हमने आपको रेडियो पर सुनी थी।
1: हाँ शायद,
0: हाँ रेडियो पर आप काम करते थे तो हम, लेकिन अब हम बड़ी परिवार हो गई। हाँ तो एक गाना चला दीजिएगा हमारे लिए।
1: ओके, एक बार प्यास
0: गाना। आगे नहीं आ रही है, हम एसएमएस करेंगी। ओके
1: ओके, एसएमएस कीजिएगा। थैंक यू,
0: आपको बों कुकार।
1: थैंक यू जी, सो स्वीट, बाय बाय। तो ये जनता जी फ्लिको फ्लैग से, और अगला गाना है फिल्म लम्हे का गाना। ऑलराइट, यस कभी मैं कहूँ, यस राधा गजाधर, हेलो दिस गाना फॉर यू, शोभा दुखी। और फिर यही गाना हम चलाएंगे बानु सुखिया जी के नाम, अनिता पटौब, यही गीत हम चलाएंगे आपके नाम। और दी हमारा साथ दे रहे हैं, पी के मंडल भी है हमश, और यही गाना हम चलाएंगे यस अभी के नाम, हेलो अभी, इस गाना फॉर यू, देवन नदीवाला। हाय देवन नदीवाला, कैसे हैं दोस्त? और माया राम दोस्त भी हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू हमें सुनने के लिए और टिकटॉक पर हमें फॉलो करने के लिए। हाय सत्या जी, यस सत्यम सोहराय भी हमारा साथ दे रहे हैं, और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए टिकटॉक रेडियो मनोरंजन पर और रेडियो पर सुन रहे, घर पे है, खाना तैयार कर रहे है, बच्चों की देखभाल कर रहे है, या परिवार आपके यहाँ आए हुए है, या इस समय आप सफ़र में हैं, कहीं जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, या कहीं से वापस लौट रहे हैं। सो अगला गीत आपके नाम राम भरोस मीना, हेलो जी, ये गीत आपके नाम भी जाता है, बहुत ही प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी लम्हे।

कि नहीं हर कोई में कोई ना कोई क्वालिटी जरूर होती है सो अपने आप को कभी नीचा ना समझे आप में भी बहुत सारी क्वालिटीज है आप में भी वो क्षमता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं लोगों को कहने दीजिए लोगों का काम है कहना बट यू नो दैट यू आर राइट दिल का हाल सुने दिल वाला छोटी सी बात में मिर्च मसाला कह के रहेगा कहने वाला यस फिल्म 420 का गाना मचलने वाला है लहराने वाला है गीत हम चलाएंगे मुसाफिर ललिता नेऊ रामगतिया मंजुला विशाल मंडप इटली में है उनकी पत्नी उनकी बेटी और मॉरिशस में उनकी माँ और बहन है मंडप परिवार के नाम अगला गीत और ये गाना हम चलाएंगे संजय हरिचंद उनके परिवार के नाम कुणाल हीराल एंड हिज फैमिली पूर्णिमा फकीरा आपके नाम सुमन ग्रुप किशोर खिमिया और उनके से परिवार के लिए और सब भोजपुरी प्रेमी के लिए और सभी म्यूजिक लवर्स के नाम जो मैं सुन रही है और जितने भी लोगों को बॉलीवुड गाने पसंद है सो यह गीत आपके नाम भी दिल का हाल सुने दिल वाला बहुत ही प्यारा सा गाना है यस मन्ना दे और साथियों की आवाज़ों में आशा करते हैं कि आपको पसंद आ जाए यस टिकटॉक पे अभी काम नहीं कर रहा है आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट कोई बात नहीं आप हमें रेडियो पर सुनिए और हमारी फ्रीक्वेंसीज है 94.95 और 96.2 FM या फिर लॉग कीजिए इंटरनेट पर www.mbcradio.tv फिर लॉग करें लिसन टू रेडियो मनोरंजन दिल का हाल सुनाते हैं आपको और यही प्यारा सा गीत हम चलाएंगे उन सभी लोगों का नाम जिस समय भोजन करें बोन एपेटी सुरुचि शुभ आहार आपको और ये प्यारा सा गीत आपके नाम

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एम बी

0: रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
1: और आखिरी तारीख है 26th of July, तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
0: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वंदे आजी। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस,
0: डोंट मिस इट।
2: जिस मौका को अपने हाथ से न जाने दे, बी वन डे आजे। सो फटाफट एक वीडियो बनाए, व्हाट्सएप पर भेजे। द डेडलाइन, द क्लोजिंग डेट इज 26 जुलाई, संडे 26 जुलाई तक आप भेज सकते हैं किसी भी भाषा में, तमिल, तेलुगु, मराठी, उर्दू, मंडारिन, भोजपुरी, कोई भी भाषा हो, भाषा का कोई बॉर्डर नहीं है बेशक। सो एक दिन के आप आजे बन सकते हैं। यस, घड़ी में रहते समय रात के 8 बज रहे हैं। दिनों की आवाज़, योर मस्त इवनिंग शो हमारे साथ अजय प्रताप सिंह के साथ रात के 9 बजे तक। और 4028070 पर फ़ोन कर सकते हैं, योर मोस्ट वेलकम। अगला गाना फिल्म सोल्जर का गाना है और ये गाना हम चलाएंगे गणेश वरुण के नाम, उनकी पत्नी और 3 बच्चों के नाम, कमला जी ने उनकी प्यारी सी पोती आरोही, मुकेश गंगा, गुरुजी गंगा जी के नाम आप मोहतबा से है, उदय दली राम जी वेजपुर से, किशन गुरियाप, प्रीतम राज जी मीरा, आशा जानू कटेज से, शुभम आरती और जीजा जी, ये गीत संगीता अमीरन के नाम और उनके पूरे परिवार के लिए। खॉम्बे से रतन निहाल है और उनके पापा विजय, पत्नी करुणा, खजूरी से चाची ललिता कुशल, चित्रा जी है मौदा बी एस, उनके पति ज्ञान, सब विश्राम परिवार के लिए। तो चलिए एक साथ हम सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, मेरे ख्वाबों में जो आए। यस, अलका याग्निक की आवाज़ में। और कहते हैं दोस्तों कि बच्चों से घर की रौनक होती है, बच्चों से घर में हलचल होती है, अगर बच्चे ना हो घर में तो खुशियां भी नहीं होती। सो बच्चों का होना घर में बहुत अच्छी बात है। सो आजकल तो बच्चे स्कूल की छुट्टियाँ में हैं, अगर आप नाना नानी हैं, दादा दादी है, आपके यहाँ बच्चे आए हैं, तो उनसे नाराज मत होइए। बच्चों का काम है थोड़ा बहुत धमाल करना। अरे भाई, अगर बच्चे धमाल नहीं करेंगे तो क्या हम धमाल करेंगे? ऐसे में कहेंगे ओए हो जाए करक चाय। जी नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, जस्ट किडिंग। चलिए सुनते हैं प्यारा सा गाना, फिल्म का नाम है सोल्जर।

कहते हैं दोस्तों कि सुखी और संपन्न परिवार वो है जहाँ पर परिवार का हर एक सदस्य एक दूसरे को समझता है, और सुखी परिवार वो है जहाँ पर प्यार है, अपनापन है, और जहाँ पर लोग एक दूसरे का कदर करते हैं, उसे हम हैप्पी फैमिली कहते हैं। और हम भी एक हैप्पी फैमिली की तरह है आप लोगों के साथ, हैं कि नहीं। रात के 8:06, अगला गाना फिल्म प्यार का तराना का एक बहुत ही लवली सा गाना है, और यह गीत जो है हम चलाएंगे इन सब दोस्तों के नाम। यस, गौबी के रतन निहाल, उनके पापा विजय, फिर करुणा, त्रयोले से ललिता, कुशल जी, चित्रा की ओर से उनके भति ज्ञान, सब विश्राम परिवार, अनिता जी मौदालबिया से, अनिता फिकॉफ्लाक से है, आफेज लाविनिया सैंपिया से, संगीता मिरन लाहौजा से, उनके भाई दान आजी, उनकी माँ वंशिका, रक्षिता, हेमा, शांति और सब अमीरन और मोहन परिवार के नाम यह गीत जाएगा। बहुत ही प्यारा सा गाना, यह सुलता जी की आवाज़ में, फिल्म का नाम है प्यार का तराना।

0: अच्छा होता जो मैं पियानो होता, तुम सुरों से खेलते मैं लहराता गाता। क्या बात है, क्या बोल है। यस, नेक्स्ट गाना फिल्म दुश्मन से लिया गया, आवाज दो हमको। कहते हैं दोस्तों कि जीवन में काम करना अति आवश्यक है। काम करने से आमदनी मिलती है और अपने परिवार की देखभाल करते हैं। काम नहीं तो नो रिस्पेक्ट। यस, अगर काम है तो सभी लोग आपका आदर सम्मान करेंगे। काम बहुत आवश्यक है। अगर भगवान 2400 घंटे काम करता है तो फिर हम मनुष्य क्या चीज़ है। हमें भी काम करना चाहिए। काम, वर्क इज़ वर्शिप। और जब हम काम करते हैं तो आलस्य से बचते हैं एंड वी कीप आवर सेल्फ एक्टिव एंड बिजी, है कि नहीं। अगला गीत एक दोस्त हैं, उनसे मिलेंगे। हेलो
1: प्रताप बेटा, नमस्कार।
0: नमस्कार, आप कौन?
1: मैं गायत्री बोल रही हूँ, पिछले सैंपिया से। पहली बार आपसे बात कर
0: रहे हैं। अहो भाग्य हमारे कि आप हमसे बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बोलिए।
1: हाँ जी, मैं एक गीत की फरमाइश कर सकती हूँ?
0: हाँ बोलिए।
1: गीत पुरानी है। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा।
0: ये किसने गाया है या कौन से फिल्म का गीत है?
1: ये तो फिल्म मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन
0: थोड़ा सा गा दीजिए।
1: ये रातें, ये मौसम,
0: नदी का किनारा, ये चंचल हवा। बहुत ही प्यारा सा गाना। और ये गीत आप किसके नाम करना चाहेंगे?
1: हाँ, ये गीत मैं मेरी छोटी बहन अमृता है, काठमांडू के रहने वाली है वो, और उनकी बेटियां हैं,
0: हाँ,
1: नेहा, क्षिति, दिव्या, और बेटे हैं सुधीर, कमलेश, और बहू है सुधा।
0: ओके जी, सो आपने फोन किया।
1: और आपके लिए बेटा, आपको पसंद आए तो
0: जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और इस मनोरंजन कार्यक्रम को जितने लोग सुन रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, जिनको ये गाना पसंद आए सबके लिए।
0: ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उन सभी को याद किया। और हम तो रोज अपनी दुआओं में हमारे लिसनर्स यानी कि आप लोगों को याद करते हैं। दुआओं में हम याद करते हैं आप लोगों को कि आप लोग जहाँ भी रहे सदा

खुश रहे सलामत रहे एंड अबीर के लिए हो जाएगा ना आवाज दो हमको हम खो गए ये गीत हम चलाएंगे वीना कुबसामी के नाम जी हाँ वीना कुबसामी में बैग से है लेखराज रघु आपकी पत्नी तीन बच्चों का नाम सुलमा दुखित जी विश्वानी बाबूलाल लाहौजा से सब बाबूलाल परिवार के नाम इंसासी बनुमान जी यह गीत आपके नाम भी सब सीनियर सिटीजन लोगों के नाम स्पेशली और बहुत सारे दोस्त हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिवेरी सॉन्गी से प्रवीण बुधन हैं उनके मम्मी पापा और सब बुधन परिवार के लिए अगला गीत जाएगा और यही गाना हम चलाएंगे स्टीव माना राज मन्ना संजीव चिबू नानो उलोंग श्याम मंगल राजा और प्रवीण भैरव के नाम तो चलिए एक साथ सुनते हैं ये प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी दुश्मन

0: सर।
1: नमस्कार।
0: कहिए क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें

दोस्तों कुछ ऐसे गीत होते हैं जो हमेशा सदाबहार होते हैं। कल भी एक गीत सदाबहार था, आज भी है और आने वाले कल में भी यह गीत हमेशा सदाबहार रहेगा। पुराना मंदिर का ये गाना, जी गीत हम चलाइए। इस समय रीता, उनकी बहन अमृता और रेणुका के नाम अनुष्का के नाम भी, और यही गीत हम चला रहे हैं। मॉरिशस में जितने परदेसी लोग काम करें, जैसे कि नेपाली लोग हैं, बंगाली लोग हैं, मलगासी लोग हैं और भारतीय मूल के लोग हैं, जिस समय काम करें, बोंकुआज कहते हैं आप लोगों को, और ये गीत आपके नाम वो बीते दिन याद है।

लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइस एंड गर्ल्स, डियर ऑडियंस, आवाज ही देंगे दोस्तों, एक आंख मारूं फिल्म तोहफा के इस गीत के साथ ही दिलों की आवाज। ये प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होने जा रहा है। 9 बजे होगा अगला प्रोग्राम भोजपुरी तड़का, सुनते रहिए प्यार के साथ MBC रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन।

0: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
1: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ, तो फिर ये है आपका मौका।

0: MBC Radio presents One Day RJ.
1: Open to all Mauritians. बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
0: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
1: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
0: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
1: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
0: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस।
0: डोंट मिस इट।

रात के 9:25 हुआ था और तू सुना तो रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन, रेडियो मॉरिशस 719 किलो हर्ट्ज़ और रेडियो मनोरंजन 94.95.2 और 98.2 एफएम पर एम एफ एम दोनों पर चलाता ही प्रोग्राम। और बेशक हमने यहाँ तो के साथ देवती जा भोजपुरी तरह का कार्यक्रम में मन करता को भोजपुरी गीत सुने की तरह नंबर वक मैया का जहोदे विद सैंक पर अगला गाना अंजू की आवाज़ में अप एंड डाउन गीता चरावती सा चाची ललिता कुशल के नाम रहे रंथियोली चाचा आत्माराम फिर चित्रा और ज्ञान विश्राम हौदालबे के हवंजा फिर कमला दिनू कर चीजों फो आरोही खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ है गीत साइरन की ओर से कर नेफ्यू माधव के नाम और माधव अपन चाचा जान से बहुत प्यार करेलन है गीत साइरन की ओर से कर पत्नी रानी बेटी परी और सब परिवार खातिर है गीत रेणुका की ओर से अमृता और रीता खातिर और है गीत चली जितना कोई विराट के उनकी सुनता चाहे तू घर पे हुआ घर से बाहर हुआ या विदेश में हुआ हमने की सुनत हुआ था गीत तोहर नाम अप एंड डाउन अंजू की आवाज़ में

बुध के रात है तो कैसे गमत नहीं हो, कैसे जलसवा नहीं कर अब सर अमित जलसा सब मजा कर ले मेरी जान, फिर से ना होगा जवान। बुरा बुरा मत करो, बुरा है शैतान। गांधी जी के तीन को बंजर जाने ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। तो सबको अगर तीन को चीज जो नहीं फॉलो करी तो दुनिया एक जोरी पास ही चाहिए कि अगला गीत मजा कर ले मेरी जान। लाल के आवाज़ में है गीत चरावती सा, खास हम खास बिना की ओर से को दुगो बेटा आपका घर वाला आपका सब परिवार के नाम। और है गीत हमने चरावती सा कनाडा के रहे वाला दीपा तिवारी दुखित के नाम, कर पति केविन बेटा और सब तिवारी और दुखित परिवार के नाम। साथ में है गीत चरी शोभा जी के नाम वाकवा से प्रेमिला का तो भोन से वन। और है गीत चरावती सा खास हम खास स्वीति और स्वीनी का तेर। और है गीत हमने चरावती सा सब भोजपुरी प्रेमी के नाम, सब चाचा चाची दादा दादी नाना नानी सब पुरानिया लोगन के नाम जो अभी रात के मन की सुनता मचा कर ले मेरी जान।

रात के 10 बजे तक और तुसनो तो भोजपुरी दरका प्रोग्राम रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर। और अब हमने तो लोग के सुनाओ जाए को जोलीसन कहानी। कहानी के शीर्षक है, कहानी के शीर्षक है लालची पत्नी। हाँ, लालची जो पत्नी लालच करे रहा और हर्ष कौन ची हो रहा था। बहुत समय पहले की बात है, छोटा सन गांव में मोहन और पत्नी

पत्नी राधा रहत रहल तब मोहन बहुत मेहनती और ईमानदार किसान रहल पर राधा बड़िए गुरमा बड़िए लालची औरत रहल वो हमेशा बोलत रहल हमनी के धन चहला हमनी के घर चहला हमनी के सोना चांदी चहला ओके कबो कोनो चीज बसवे नहीं हुई। एक दिन मोहन के नदी किनारे एगो जादुई साधु मिलल उस साधु चमत्कारी घड़ा दिलक और बोलक मोहन के कि उचित और आवश्यक वस्तु तू मंगब ते घड़ा थोड़ा धे पर लालच करब त देखिया कौन ची होई। तो शुरू में पति पत्नी अनाज मंगलक कपड़ा मंगलक घर के जरूरी सामान मंगलक घड़ा से त वो लोग के जीवन सुखी हो घड़ा लोग के दिलक लेकिन राधा के लालच बढ़ते गल उ सोना मंगलक हीरा मंगलक और ढेर कुछ महल सब मंगलक फिर भी ओकर मन नहीं भरल। अंत में उ बोलक हमके एगो राज्य के रानी बना दे तो जैसे ही वो इच्छा करलक घरे से तेज प्रकाश निकलल और वो घड़ा गायब हो गल और उसका सारा महल धन सब पल भर में गायब हो गल। मोहन और राधा फिर से अपन पुरानी झोंपड़ी में रहे लगा। राधा अपन गलती पर पछतावा करलक और वो समझ दिला कि लालच के फल बहुत बुरा होला। तो ये कहानी के शिक्षा मोहाल कौन चाहिए कि लालच के अंत हमेशा बुरा होला। जिंदगी में चहला हमने की ढेर चीज पर लालच नहीं करिए जी गुरमा करब लालच करब तो सब कुछ खो दी बजा। ऐसे में सुनब जाएगो बहुत ही प्यारा संगीत मंगा द सोना के हरवा विशाल बिशेसर लाफलोरा से हवन ओकर धर्मपत्नी ओकर बेटा और सब बिशेसर परिवार के नाम गीत जाते और विशाल इस समय मिसेस निकल के घर ही जाता बन होत बोलते सब बन होते और है गीत विशाल बिशेसर खासम खास तोहर खाते तोहर पत्नी तोहर लड़का तोहर सब परिवार के नाम मंगा द नौला के हरवा। और ढेर कोई हमने की टिकटॉक पेज पर अभी देखा था रात के समय रेडियो मॉरिशस के तैसिन शोभा दुकोरन हेलो फिर राइजिंग स्टार हेमा फिर हवन शरद बबीता बुलाकी मोतिया विनेश शालिनी हेमंता राणा और शामिला के साथ देवोटन कृष्णा जीता नमस्ते हम अच्छा है तू कैसे हो भैया राज ठाकुर वैष्णव प्रीति कृष्णा जीता सिल्वीना तो जितना कोई अभी हमने की रात के देखा था टिकटॉक पेज पर रेडियो मॉरिशस के है गीत खासम खास दिलों के नाम भी बहुत बहुत प्यार के साथ और है गीत हमने चलाओ तैसा कलकतिया परिवार जो नये नियोले जीरा खान परिवार हरकू परिवार थियोले से अवन चाचा माराम चाची प्रभावती से और है गीत संगीता मीरन सब मोहन परिवार कर्मा दान आजी बहन शांति हेमा रन वंशिका रक्षिता और जितना भी रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन के श्रोता में सुनता है गीत लोग के नाम मंगा द नौ लाख के हरवा।

मंगादा मंगादा हमर 9 लाख के हरवा इतना मांगा के हार काश थोड़ा कोई इतना मांगा के हार दे दी तो जीवन भर तो कर गुन गई बा हाँ कि नहीं और अब हमनी तो के बताओ अब जो अदरक है जो अदरक है ओकर कौन तत्व है ओकर वर्चूज कौन छ अदरक जैजाम जिंजर तो अदरक जो है को प्रसिद्ध मसाला और औषधीय पौधा है एक वैज्ञानिक नाम है जेंजिबेया जेंजिबेया ऑफिसिनाली और अदरक में ढेर मना पौष्टिक तत्व है विटामिन बेसिस विटामिन से पोटाशियम मैग्नीशियम फॉस्फो फाइबर है और अदरक के प्रमुख सक्रिय यौगिक जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और सूजन रोधी गुण बा ये डाइजेशन में मदद करेला गैस उपच और पेट फुलाई से बचावेला और उल्टी जो नदमी की धीरभूमि लगेला तो लोग अदरक खाला तो लोग उल्टी ना होला सर्दी जुकाम से हमने के राहत पहुँचावेला और हमने के इम्यून सिस्टम के स्ट्रॉन्ग बनावेला हमने के हृदय हमने के लेके खातिर अच्छा है अदरक और रक्त संचार खातिर अच्छा है ब्लड प्रेशर जो कि हाई बी पी रहेला उसे की अदरक खाए रोज के गो पीती बोतल अदरक खाए हाँ और गुड़ थोड़ा तीता रहेला पर का करबा परेला खाए के तो अदरक ढेर मना तरीका से कर उपयोग होला अदरक के चाय बनेला अदरक वाली चाय सब्जी में कर प्रयोग होला दाल मसाला में काढ़ा में अचार में चटनी में सूप और अन्य व्यंजन में भी और ढेर अधिक मात्रा में खाइबा तो मुँह में जलन होला पेट में जलन भी होला तो ढेर अदरक नहीं खा के एक छोटा सा टुकड़ा सकबा खाएबी जैसे लीविया करता तो और एक हमने के खून पतला करेला अच्छा है अदरक खाल पर ढेर नहीं खाइया तो जानी जा सकी गु उतना उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं रहेला पर अदरक जो है बहुत अच्छा है हमने के इम्यून सिस्टम के हमने के डाइजेशन के अच्छा है और हमने के शरीर के मजबूत बनावेला और अगला गीत धनाजी नावजी गाइले वन मोट का पानी है गीतवा चलावते सब सीनियर सिटीजन लोग के नाम हम की दादा दादी नानी चाचा चाची लोग खातिर साथ में धीरमा संगतिया वन मोहताबा से स्टीव मना राज मना संजीव चिबुक नानो लोंग श्याम मंगल प्रवीण भैरव राजा रिवेली जोंगी की प्रवीण बुधन उकर माता पिता सब बुधन परिवार के नाम और हे गीत वीना कुपुस्वामी खातिर मे बैग सेवन लेखराज रघु कर तीन गो लड़का कर पत्नी सुलमान दुखी तो कर शोहर लाखोजा से विश्वानी बाबूलाल और कर पति और सास से बनवानी हमने की संगत यावन जो नक्सल

लगातार रेडियो पर हमने के साथ देती रहे लन है गीत और नाम गणेश वरुण है गीत और नाम कमला दिनू करछी नौ फारोही मुकेश गंगा उदय धनी राम किशन गुड़िया प्रीतम राज जिमी लाग बेचपुर से सब बच्चन

ईसा खासम खास ईसब श्रोता के नाम जो नाम की देखा था वन टिकटॉक पर बीना भैरव और घरोला कर दुगो बेटा और अरुणा सब गणपत परिवार जन प्लान मायो से वन जमाने गीत और नाम मेधा सुकन पोल मविन शामिला हेमा बाबिता और हई गीत चली बिजाई के नाम बिजाई के नाम और राइट और अभी सुनीता भी उनके साथ देवत वन सुनीता वन थ्रियोले से और बेशक जितना कोई नींद नहीं लगा था फिक्र नहीं करिया अभी और 50 मिनट ले हमने तिलों के साथ रहा जा रात के 11 बजे ले रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर प्रोग्राम है भोजपुरी तर का जहाँ पर ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट भोजपुरी गीत चलाई ला सकता चल अभी धनाजी नाव जी के गीत चलाओ सब मोटका पानी आजकल उतना पानी नहीं बरस सकता पर प्रार्थना करब सा कि पानी बरसे कह के पानी चेहरा में जलाशय खातिर और देमिल वैंसैंग से देमिल वैंसिस ले उतना पानी नहीं बरस अलबा कहे कि सिक्लोन उक्लोन नहीं अलबा तो वो खातिर चेहरा प्रार्थना करे कि जमी पानी बरसे और चारों ओर हरियाली हरियाली शमीला बोलता है वो गीत चलाए के गोर की सवर की खोचब जाबी है गीत और ज्योति लोबिन भी उनके साथ देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद हमने के टिकटॉक पर फॉलो कराता हुआ और रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन सुनते हो जितना कोई खुशिया भोजपुरी गीत सुने के है गीत तो लोग नाम मोटका पानी

जरा बच के रहिए जा संगतिया लोग, गई दुनिया में सब कोई थोड़ा नहीं चाहला, कुनो कुनो व्यक्ति से तो और खुशी दिखल नहीं जाला। ये कहती रे अपन दिल की बात अपन घर की बात सब कोई के नहीं बताइया बताइया जेके तू कॉन्फिडेंस करेला ओकर से सगो बोले कहे के आजकल ढेर मोबाइल में बाप है दुनिया में बच के रहना अरे बाबा बच के रहना अरे। और इस समय ढेर कोई हमके साथ होता रही द्वेश दत्तू हवन सेंट ओबेस एस एस के स्टूडेंट गाद से थ्रूज में और पढ़ाई करे रहना और हमके साथ होता था अंत रिद्वेश दत्तू है गीत हर खातिर और गाद से थ्रूज सेंट ओबेस एस एस एस कॉलेज के सब संगत यालों के नाम और आस्था हमके साथ होता था। हेलो आस्था और संजय यादव सुनीता राजन भी हमने के साथ देवा था। वन अब एगो गीत चलाओ अब से गीतवा में सब कोई के चेहरा हमारे संगे गावे के और नाचे के कहेगी प्रोग्राम है मस्ती करे के नाचे के गावे के धमाल करे के स्कूल के छुट्टी बा पोवेसे जरे सब कोई घमट करता था चला हमने घमट कर से अली संगे संगे गया जाए जोड़ी छोकरी से प्यार करीरा कुणाल हिलाल की आवाज़ में

0: कैसे बदला बुके कैसे समझा बुके कोई ना कोई बताए दे हमको छोकरी से प्यार करी लज कर खातिर हम रोज जी कैसे बदला बुके कैसे समझा बुके कोई ना कोई बताए दे हमको फोन लगावा
1: एसएमएस करा
0: एसएमएस करा

जोली छोकरी से प्यार करीरा सब जोली छोकरी खाते रहेगी तो अच्छा लगा एहे सब जोली जोली मामजेल खाते सब जोली मादाम लोग खाते आहा जोली छोकरी से प्यार करीरा रोबर्ट गीत और खाते हाय नॉनसेंस

संगठन लोग तो कभी विदेश गलवा अगर नहीं गलवा तो एक दिन जरूर जाइए घूमे थे मना जोरी जोरी देश पर जैसे दुबई भारत बैंकॉक चाइना सिंगापुर दुबई और कनाडा ये सब जो देश अब बड़ी ये जोरी बा तभी लड़का लोग कौन से में बाप अगर माँ बाप लोग कौन से ले सक बसर पर लड़का के लेके जाए घूमे दुबई बड़ी जोरी बा है एकदम चकाचक देश और बहुत धनी देश है दुबई कनाडा भी बहुत धनी देश है सुंदर देश है और अभी अगला गीत चली मार ताली मार हम संगे मार ताली मार है गीत अनिता लाल जी के नाम हो मॉडल बेस से अनिता अफ्रीकन फ्लैग से आफेज लावेनिया से पी से और संगीता मीरन हो नागोजा से और भाई दान अजी और माँ कास्तेल रहेरन वंशिका रक्षिता हिमा और शांति खातिर मैं जबीन प्लान बेस से रोजीदा हाइडन से वन उनके साथ वतवन प्रवेश के जन्मदिन बात प्रवेश हैप्पी बर्थडे अगला गीत आशा की ओर से कोई सब संगतिया के नाम जो इन काम करें को सुबह मौसम है सुबह मौसम के नाम नहीं बोला वरना रिक्लाम हो जाए दिल कुमार श्रेष्ठ है गीत और नाम और लक्की वुमन ने गीत और नाम रॉबर्ट है गीत और खातिर तो और संगतिया खातिर अंदा रुगा है गीत और नाम ननसो आशा गीत और खातिर और दत्तु रिद्वेश है गीत और नाम और जितना कोई अभी हमने की रात के सुना था तब बेशक है गीतों के नाम ये वक्त ढेर कोई नाइट शिफ्ट में काम करते हवन हमने की पुलिस ऑफिसर हवन ला पुलिस लोग और पुलिस पोस्ट एम्बेसी में यहाँ पर ला पुलिस लोग बा साथ में डिफरेंट स्टेशन में ला पुलिस लोग काम करता है SMF लोग SSU के लोग फिर दमकल विभाग फायर सर्विसेज मेट्रो स्टेशन गौत कोट लोग काम करा था और गौत शूम लोग काम करा था प्रिजों इस सब में और कॉल सेंटर में अस्पताल क्लिनिक में डॉक्टर नर्स FME लोग काम करा था तो जहाँ कहीं भी लोग काम करते हैं इस समय हमने बोला सब बों को आज और है गीत तो लोग के नाम मार ताली मार ताली हमर संगी मार ताली मार हमर संगी है गीत छाया लक्ष्मण जी के नाम और सब परिवार के नाम छाया लक्ष्मण कहाँ से हुआ नहीं बोला कहाँ से हुआ काफ़ी नए छाया लक्ष्मण है गीत और खातिर और तो सब परिवार खातिर कुमार श्रेष्ठ है गीत और नाम फिया दुबोरी है गीत और खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ अंजल दर्शनी है गीत तोहरो नाम

संगतियारों की दुनिया में सब कुछ पाए कि मुश्किल बा नामुमकिन है कोई नहीं से कि बड़ी सौ पूसाओं के सब कुछ मिल बा दुनिया में भगवान जब विदा कर रखबा तब कोनो न कोनो चीज अधूरा छोड़ दे रखबा सबके जीवन में तो सब कोई कब कब प्लानिंग होला कि हमारे लगे हाई नहीं बा हमारे लगे हाउ नहीं बा कम से कम अभी बोलब सा तोहर लगे रोटी कपड़ा मकान बा दुगो हाथ बा दुगो गोर बा एगो भेजा दे रख भाई भेजा से सोचते ऐसा तो बेशक प्लेयर नहीं हो या भगवान से खाली झगड़ा करी रहा सा कि भगवान तुम निके है नहीं दिला भगवान तुम निके हाउ नहीं वो सोचा भगवान हम की कौन सी दिलाक बा है भगवान हम निके अच्छा स्वास्थ्य दिलाक बा काम करा थे ऐसा अपन परिवार के पोसा थे ऐसा हम निके लेकर हम निके आँख के सामने बा ये जरूरी है हाँ कि नहीं तो सब कोई के सब कुछ नहीं मिल रहा दुनिया में वो चाहे डॉक्टर हो इंजीनियर हो हाउ जन व्यक्ति के लोथरी मिलल बा है मिलियनेयर हो ओकरो जिंदगी में कोनो न कोनो कमी बा तो हर इंसान के जिंदगी में कोनो न कोनो कमी रहेला मौकमो रहेला है कोई नहीं से कि बोली सौ पूसा हैप्पी बा 100% झूठ ये बात झूठ है जो व्यक्ति बोली कि हम सौ पूसा के सब कुछ मिलल बा हम नहीं समझते कहे कि भगवान जब हमने की दुनिया में बिजा कर लगबा तक कोनो न कोनो कमी रखे ये खातिर हमें भगवान के याद करी रह सर शायद भगवान इसे बने रहा ताकि हमनियों के याद करब सर सकेला अगला गीत जलसा लाल बा किशोर खिमिया के गावल गीत और है गीत चाहो दे सर कुमार जी के नाम शीला सीताराम है गीत हो खातिर फिर नवीन है गीत हो नाम दिनेश हरी रिवेद जो हम पाओ के सब संगतियालो के नाम वहाँ से हवन छाया लक्ष्मण जी बहुत बहुत धन्यवाद उनके साथ देखा तेर फिर है गीत चली मुसाफिर ललिता नेऊ रामगतिया मंजूला खातिर भी और है गीत हमने चलावत ईसा देविका और चंपा रामगतिया के नाम बहुत बहुत प्यार के साथ भाई काशी हवन मातावा से ओकर बेटा उत्तम काशी ओकर बहू ओकर पत्नी माया और सब काशी परिवार के नाम फिर

Baha Bal Mukun Hawan Sample, Fir Mrs. Dwaka, Fir Chippers, Devika Hawan New Grove, Se, Vidya Hawan Mortawa, Se, Ta Isab Sangatia Lokatir Gitchari, Satme, Hai Gitchari, Rita Kirosekar, Dugubahin, Nam Rita Renuka Katir, Pati Janushka, Saparivar Kinam, or बेशक कई बखत जितना कोई हमने के सुना था रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर और जितना कोई टिकटॉक पेज पर हमने के देखा था गीत तो लोग के नाम भी जलसा लालबा आपका इतना लालबा जलसा चल एक साथ सुन अब जा

गीतन सुन के सब कोई दीवाना हो गलबा इंदिरा जी गीत मांगले वन राजेश उगर जी के नाम और यूजर 98 बोला था हमने कि क्या गीतों में सच्चे बोला तू उनके दीवाना कर दे रे और ढेर कोई ये गीतवन के दीवाना हो गलबा आय हाय हाय हाय बंती चेतमु कैसे बा नमस्ते सुस्वागतम अगला गीत और खातिर और जिंदगी में इसे हंसते गाते रहिया नचते रहिया गमट करते रहिया काहे कि दो दिन की जिंदगी बा भैया चोला के ठिकाने बाज है सक काल का जनी के रही कि नहीं तो जहाँ ले सकबा हंसिया गैया हमेशा खुश रहिया हाँ कि नहीं तो चला भी सुनब जाएगी तो अगला गीत रोशन सरा सिंह की गावल है भोजपुरी गमट

हाथों में हाथ बिस्वानी दीपा के गावल है गीत के संगे भोजपुरी चरका प्रोग्राम ये बड़ी समाप्त हुआ था। सांच के 6 बजे से अभी लिए हमने के साथ दिला जा बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोगों के फोन कॉल्स लोग के SMS और उनके टिकटॉक पर फॉलो कर ला बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि हमने की तो लोग के साथ अच्छी तरह से बीतल हो और अच्छा लग रहा हमने के साथ देखिए हम तक खूब गमट कर ली तो लोग संगे संगे खूब बतेरी से खूब गमट कर ली सा। ठीक 11 बजे रात के तू सुन बचा अगला प्रोग्राम सुनहरे पल और बाद रात के 12 बजे से कल फजीर के 5 बजे तू सुन बजा नॉन स्टॉप फिल्मी तरह आने और हमने क्या तो लोग मुलाकात हुई अब सामदी के फजीर के 6 बजे से 9 बजे रेडियो मॉरिशस पर और सामदी के सांझ के 5 बजे से रात के 9 बजे रेडियो मनोरंजन पर। तब तक हमने की इजाज़त दो।

0: सुनहरे पल सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ आप सभी लोगों का गिनिशा का प्रणाम और स्वागत है आप सभी लोगों का इस खूबसूरत से सफर में जिसका नाम है सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस। वैसे दोस्तों कुछ लोग कहते हैं ना कि वक्त जो होते हैं कभी वापस नहीं आता, लेकिन मैं कहती हूँ एक अच्छा गीत वक्त को ना ज़रूर वापस लेकर आता है। एक ही पल में हम फिर से स्कूल के दिनों में पहुँच ही जाते हैं, या किसी शाम को, बड़ी खास शाम को, या किसी सफ़र या किसी खुशबू को फिर से हम जी लेते हैं। और इसीलिए तो हम सब पुराने गीतों से इतना प्यार करते हैं। तभी तो गिने चुने नगमे को लेकर हम आए हैं आप लोगों का साथ देने के लिए सुनहरे पल में। गिनिशा का साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है
1: कह

0: कभी तो हंसाए।
1: वैसे आपने सोचा है कि अगर कभी बारिश हो, हाथ में चाय हो और बैकग्राउंड में पुराने बॉलीवुड के गीत, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। बिल्कुल दोस्तों, सच बताइए, इससे ज्यादा खूबसूरत कॉम्बिनेशन और क्या हो सकता है। तो चाहे आज मौसम कैसा भी क्यों ना हो, हम आपके दिल का मौसम जरूर सुहाना बना देंगे और सुनहरे पल में बस बड़े शिद्दत से आपका साथ देंगे। आप भी बने रखें हमारे साथ और बैठ जाइए आराम से हमारा साथ देने के लिए। इन खूबसूरत नगमों के जरिए आपके दिल का हाल हम जरूर बयां करेंगे।

वैसे जिंदगी में नए लोग मिलते रहते हैं। बिल्कुल जी, जिंदगी में तो नए लोग मिलते ही रहते हैं, लेकिन कुछ गीत ऐसे होते हैं ना जो बचपन से लेकर आज तक हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। जब भी दिल उदास हो या खुशी को और बढ़ाना हो, बस एक पुराना गीत चला लीजिए और देखिए कैसे दिल खुद ब खुद हल्का हो जाता है। और आपके दिल को हल्का करने के लिए एक ऐसा गीत हम पेश करना चाहेंगे जो शायद हो सकता है आपके फेवरेट हो। तो चलिए, ये अगला नगमा गिनिशा की तरफ से आपके नाम, आपके उन खूबसूरत यादों के नाम।

सुनते रहते थे। और आज प्लेलिस्ट में हजारों गाने होते हुए भी दिल वही पुरानी मेलोडीज ढूंढता है ना, क्योंकि असली म्यूजिक वही होता है जो सालों बाद भी दिल में उतर जाए। और आज हम वही अनमोल नगमों को लेकर आए हैं आपके लिए सुनहरे पल में।

दोस्तों आज का ये सफर सिर्फ गाने सुनने के लिए नहीं है, ये सफर है अपने बचपन से मिलने का, अपने यारों से मिलने का और उन लोगों को याद करने के लिए जिनके साथ आपने ये गीत कभी गुनगुनाए थे। तो जहाँ भी हैं मुस्कुराइए, आप दिल खोलकर मुस्कुराइए और दिल खोलकर सुनिए और हर गीत को अपनी कहानी का हिस्सा बना लीजिए। हम हैं गिनिशा और आप सुन रहे हैं सुनहरे पल सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर।

अगर ऐसे ही आपको सुनना है, अपनी यादों में फिर से डूब जाना है, तो हम आपको फिर से रेंडेवू देते हैं एक और खूबसूरत सुनहरे पल में, रोज रात को 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, शब्बा खैर और अपना ख्याल रखना।